सुप्रभात। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की तीसरी तिथि, तदनुसार दिनांक 25 जुलाई वर्ष 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:57 होने को है। आइए अब आरंभ करते हैं हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और सख्त सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में संसद भवन परिसर में मंत्रिमंडल की

0: बैठक में इस मसौदे को स्वीकृति दी गई। ये विधेयक अगले सप्ताह संसद में पेश किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
1: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं है, हम लोग को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
0: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर पर वरिष्ठ पेशेवर पदों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एनटीए ने बताया कि ये उपाय एजेंसी के संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा में पहला ठोस कदम है, जिसे प्रोफेसर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुरूप लागू किया जा रहा है। एनटीए ने संविदा आधार पर महाप्रबंधक के 4 पदों के लिए अधिसूचना जारी की है। इनमें से प्रत्येक की प्रारंभिक अवधि 3 वर्ष की होगी। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। प्रतिनिधिमंडल में शामिल सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने दावा किया कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से उनकी 2 मांगों पर सहमति दे दी है। दिल्ली पुलिस ने परीक्षा संबंधी पेपर लीक और अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामले की समिति ने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बल्लारी गुंटक्कल खंड की तीसरी और चौथी रेल लाइन को 1,264 करोड़ रुपए की कुल लागत से मंजूरी दी है। इससे भारतीय रेलवे का मौजूदा नेटवर्क लगभग 46 किलोमीटर बढ़ जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलो भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 से आगे है। टीम ने पहले मैच में 7 विकेट से जीत दर्ज की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का प्रातःकालीन कार्यक्रम वंदना।

कल भविष्य के दीप जलाने चले हैं। ज्ञान, विज्ञान और संस्कार के पथ पर विश्व में भारत का मान बढ़ाने चले हैं। यही युवा शक्ति राष्ट्र की पहचान बने, स्वर्णिम भारत का नव निर्माण करने चले।

मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है, इसे ईश्वर के स्मरण, सत्य, प्रेम और भक्ति में लगाना चाहिए। कबीर के अनुसार केवल सांसारिक मोहमाया में उलझकर जीवन व्यर्थ ना करें, बल्कि परमात्मा के नाम का स्मरण ही जीवन को सार्थक बनाता है। राम भजो रे राम भजो रे, राम भजन बिन जन्म अकारथ जाए रे, ये संत कबीर की वाणी से प्रेरित एक बहुत प्रसिद्ध भजन है।

भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप केवल सुंदर छवि तक सीमित नहीं है। उनका प्रेम, उनकी करुणा, उनकी मधुर मुस्कान, उनका सत्य, उनका धर्म और उनका दिव्य मार्गदर्शन भी है। जब हम कहते हैं कान्हा दिखा दे अपनी सूरतिया, तो वास्तव में हम अपने जीवन में प्रेम, शांति, धैर्य और विवेक का प्रकाश मांग रहे होते हैं।

सूरदास के बाल कन्हैया, तुलसी के श्री राम, एक में वात्सल्य की मधुरता तो दूसरे में मर्यादा की महानता, दोनों मिलकर भारतीय भक्ति साहित्य के दो अमर स्तंभ हैं। सूरदास के काव्य में बाल कन्हैया की नटखट छवि, वात्सल्य और मधुर लीलाएं जीवंत हो उठती है, तो वहीं तुलसीदास के काव्य में श्री राम मर्यादा, धर्म, करुणा और आदर्श जीवन के दिव्य प्रतीक बनकर प्रकट होते हैं। सुर ने प्रेम और वात्सल्य का अमृत बरसाया तो तुलसी ने मर्यादा और भक्ति का प्रकाश फैलाया।

0: अभी सुन रहे थे आप भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। मीडी वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी, और ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है आज का चिंतन। आलेख है ऐश्वर्या भोसले का और वाचिक स्वर है मुकाम सिंह चौहान के।
1: समय का सही उपयोग। समय जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। धन खो जाए तो वापस कमाया जा सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए कहा जाता है कि समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय का महत्व समझ लेता है वह अपने जीवन को सही दिशा दे सकता है। समय का सही उपयोग ही सफलता, सम्मान और सुखी जीवन की कुंजी है। आज के युग में लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास समय नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को दिन के 24 घंटे समान रूप से मिलते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि कोई उन घंटों का सदुपयोग करता है और कोई उन्हें

0: व्यर्थ गंवा देता है। जो व्यक्ति अपने समय को सही कार्यों में लगाता है वह जीवन में आगे बढ़ता है, और जो आलस्य टालमटोल या बेकार की बातों में समय नष्ट करता है वह पीछे रह जाता है। समय हमें अनुशासन सिखाता है। सूरज प्रतिदिन समय पर उगता है और अस्त होता है। ऋतुएं समय के अनुसार बदलती हैं। प्रकृति का हर कार्य निश्चित समय पर होता है। यदि प्रकृति भी समय का पालन करती है तो मनुष्य को भी समय का सम्मान करना चाहिए। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति अपने कार्य समय पर पूरा करता है, दूसरों का विश्वास जीतता है और अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। विद्यार्थी जीवन में समय का महत्व और भी अधिक होता है। यदि छात्र अपने समय का सही उपयोग पढ़ाई, अच्छे विचारों और सीखने में करे तो उनका भविष्य उज्जवल बन सकता है। लेकिन यदि वे मोबाइल, आलस्य या गलत संगति में अपना समय बिताएं तो बाद में पछताना पड़ता है। परीक्षा के समय वही विद्यार्थी आत्मविश्वास से भरे होते हैं जिन्होंने पूरे वर्ष समय का सदुपयोग किया होता है। समय का सही उपयोग केवल पढ़ाई या काम तक सीमित नहीं है, हमें अपने परिवार, स्वास्थ्य और अच्छे संस्कारों के लिए भी समय निकालना चाहिए। जो व्यक्ति केवल धन कमाने में लगा रहता है और अपने प्रियजनों को समय नहीं देता उसका जीवन अधूरा रह जाता है। इसलिए समय का संतुलन भी बहुत आवश्यक है। एक छोटी सी कहानी समय के महत्व को और स्पष्ट करती है। एक गांव में दो मित्र रहते थे। पहला मित्र मेहनती था और हर काम समय पर करता था। दूसरा मित्र हमेशा कहता था, अभी बहुत समय है, बाद में कर लेंगे। कुछ वर्षों बाद मेहनती मित्र सफल व्यापारी बन गया, जबकि दूसरा मित्र अवसर खोकर पछताता रह गया। तब उसे समझ आया कि समय का मूल्य वही जानता है जो उसे सही दिशा में उपयोग करता है। समय का सदुपयोग करने के लिए हमें कुछ अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। सुबह जल्दी उठना, अपने कार्यों की योजना बनाना, आलस्य से दूर रहना और हर दिन कुछ नया सीखना। छोटी छोटी आदतें ही बड़े परिवर्तन लाती है। जब हम हर पल का महत्व समझते हैं तब हमारा जीवन व्यवस्थित और सफल बन जाता है। समय हमें यह भी सिखाता है कि हर क्षण बदलता रहता है। दुख का समय हमेशा नहीं रहता और सुख का समय भी स्थायी नहीं होता। इसलिए कठिन समय में धैर्य और अच्छे समय में विनम्रता बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति समय के साथ चलना सीख लेता है वही जीवन में संतुलन बना पाता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि समय ईश्वर का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार है। इसका सही उपयोग करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता। हमें हर दिन यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने समय को अच्छे कार्यों, सीखने, मेहनत और दूसरों की सहायता में लगाएंगे, क्योंकि समय का सम्मान करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सच्ची सफलता और खुशी प्राप्त करता है।
1: अभी सुना आपने आज का चिंतन। आलेख था ऐश्वर्या भोसले का और वाचिक स्वर थे मुकाम सिंह चौहान के, और आप इसे सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और लीजिए प्रस्तुत है खेती की बातें। आज जानिए सोयाबीन फसल के रखरखाव के विषय में, जानकारी दे रही है संध्या कुठारी।
2: किसान भाइयों राम राम। सोयाबीन की फसल हमारा सबज किसान भाई बहनों ने लगाई रखी और एको समय भी सबको मालूम छे 15 जून से 30 जून तक। और हमारा किसान भाई बहनों के बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी किसान भाई बहनों ने सोयाबीन की फसल लगाई। अब फसल लगाई ये समझ हमारा किसान भाई बहनों ने लगाई उन्हें फसल चाहिए वो काम पोषक तत्व का कर डालना ये सारी बात न हमारा सभी किसान भाई बहनों खरीद रखी होगी। पर अब जब फसल हमारी 20 से 25 दिन की हुई जाए जब हमको खास हो कोई खर पतवार को ध्यान रखना कि खर पतवार का अंदर नहीं होए, अगर हुवेल होए तो अगर दाड़किया मिल जाए तो हम हाथ से निंदई गुड़े कराड़ लेवा नूना खर पतवार का निकाल लेवा। एकासी काय होगी कि हमारी फसल तो अच्छी बढ़वार पर रहेगी और साथ साथ

0: फसल में जो हमने पोषक तत्व डाले वो खरपतवार में नहीं लेना और हमारी फसल में अच्छी होगी। और फसल अच्छी हो एक कारण तो हम सब का मेहनत करान जैसे ही भाई नकदी की फसल छे हमारी सोयाबीन की फसल एकासी हमका आर्थिक जो सहायता मिलज वह सबसे ज़्यादा एक काम हमका मिलज। सोयाबीन आपको बताऊँ कि सामान्यतः या वर्षा आधारित रज और फसल मतलब अपन ना बारिश में भी बोई तो पानी बारिश में जसो आवज वसी हमारी यह फसल बढ़ज। पर आपको बता दूँ कि कभी फूल वगैरह आई रहा हो थोड़ा बहुत फूल फली की अवस्था में हो न बारिश नहीं हुई रहे हो तो हल्की सिंचाई हम कर सकें। एक सिखाया होगा कि एक दाना का जो भराव रहेगा वो अच्छा रहेगा न उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। तो अगर 20-25 दिन की गेप हो जाए ना ऐसा लगे कि भाई पानी बाबा की मेहरबानी नहीं हुई रही पानी नहीं आई रो तो हम हल्की सी सिंचाई कर सकें। एक साथ साथ हमारा जो सोयाबीन का पोषक तत्व अगर हमको देणु हो तो बोरोन 150 ग्राम जो छे 150 लीटर पानी में घोली न प्रति हेक्टर एको स्प्रे करी देवा एकासी भी दाना चमकदार बनज न वजन भी बढ़ज न एकासी हम कवानी कि क्वालिटी जे का कमाज वह बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम हमारी जो फसल बोयल छे जिका हम बड़वार पर चली रही तो एको हम विशेष ध्यान रखा कि हमारी फसल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आव। भाई हूँ सोयाबीन में कीट न रोग भी आई जाए तो ओ को भी प्रबंधन हमको करनो चाहिए। हमारा जो वैज्ञानिक भाई छे समय समय पर हमको दवाई न भी बतावज और कितनी दवाई कितनी मात्रा में कितना एकड़ में हमको काई डालनी वह मारा किसान भाई मैंने से अनुरोध करूँगा कि वह जानकारी ले ना और वो जितनी मात्रा बतावो उना हिसाब से हमको डालनो चाहिए। अब हम कीट न रोग भी ऐसा रह कि रिंग कटर रह सफ़ेद मक्खी आई जाए तंबाकू इल्ली रह सेमी लूपर्स रह हरी इल्ली तना छेदक जो रह वो तनाच में महान छेद करने लगी जाए तो हमारो पौधो कसो बढ़ेगा वो पौधो महाको महान अगर छेद हुई गयो तो नीचा पड़ी जाएगा। तो ऐसी कई सारी जो हमारी इल्ली नन ईच है ये अगर हमारा एक में लगी जाए तो हम एक में हमारा वैज्ञानिक भाई से पूछी ना कितना एकड़ में कितनी दवाई मिलावनी और किस प्रकार से एको हमको स्प्रे करना है। भाई हूँ थोड़ो तो यो भी छे कि हम स्प्रे जब करा तो थोड़ी हमारी जो खेत छे वो में नमी रहे और नमी का साथ साथ उना खेत में अगर नमी नहीं होए तो हम हल्की सी सिंचाई करी ना और जो भी हम जो स्प्रे करा जो कीटनाशक न को होए या हमारो खरपतवार को होए ओका संजा घड़ी कर देवा ताकि रात भर वो उन्हीं दवाई वहाँ ओका में रंजी भी जाए और रात भर में हमारा जो भी ये कीटनाशक छे वो अच्छो प्रभाव डाला और हमारी इल्ली या सफ़ेद छेदक वाली छे या छोटी छोटी इल्ली ने तना में जो चली जाए या माहो छे माहो तो इस समय जब पानी नहीं आते हैं और पानी आने की संभावना भी रहे ओका बीच में माहो जो छे बारीक बारीक बहुत हुई जाए तो इनका हमको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी छे। तो भाई हूँ सोयाबीन बोयो जरूर पर एको रख रखाव करा ताकि अच्छी फसल आवे और हमका अच्छो फायदो भी हो मुनाफो भी हो। आज मारा सभी किसान भाई मैंने सी मकर योज करनो छे।
1: सोयाबीन फसल का रख रखाव इस विषय पर अभी आपने जानकारी प्राप्त की संध्या कोठारी से। कार्यक्रम था खेती की बातें। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:40 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग राजेंद्र कचरू के गायन स्वर में।

एकतनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त

चार प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। ये सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि एक वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदरवाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। ये सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए।

राजेंद्र कचरू के गायन स्वर में अभी सुन रहे थे आप श्री रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

श्रोताओं, आज सुबह 7:20 से सुनना ना भूलिएगा सदाबहार फिल्म से संगीत का कार्यक्रम सुनहरे पल। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 8:30 से, और लोक संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे मनसाराम कुनबी और साथियों के गाए कुछ निमाड़ी लोकगीत। कार्यक्रम का समय होगा सुबह 9:00।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 बजे सुनिए राधिका उमड़ेकर का विचित्र वीणा वादन, राग होगा बिलास खानी तोड़ी। सुबह

10 बजे का समय होगा सिले की चिट्ठी का और सुबह 10:05 से सुना ना भूलिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। हमारे एक अन्य फोन इन कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 11 बजे से जिसका नाम होगा फोन करे गीत सुने। श्रोताओं दोपहर 12 बजे से आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का और महिला कार्यक्रम का समय होगा दोपहर 1 बजे। दोपहर 12:30 सुनना न भूलिएगा कार्यक्रम संग्रहालय से। हमारी दोपहर की सभा में लोक संगीत आपको सुनवाया जाएगा 1:30 से और सुगम संगीत आपके लिए हम लाएंगे 1:45 से। श्रोताओं दोपहर 2 बजे का समय होगा फिल्म संगीत का और चित्रपट संगीत का आनंद ले सकेंगे आप 2:30 से। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी रोज की तरह होगा शाम 5 बजे से जिसमें आज होगी कई सारी रोचक जानकारियां फिल्म संगीत के साथ और साथ ही 5:45 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत। श्रोताओं हमारा विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत सुनना ना भूलिएगा शाम 6 बजे से। शाम 6:30 का समय होगा सुगम संगीत का आज सुनेगा उमेश भट्ट की गायी कुछ रचनाएं।

0: मनसाराम कुनबी और साथियों के गाए कुछ अन्य निमाड़ी लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे। शाम 6:45 से कार्यक्रम होगा लोक संगीत। हमारे कृषक भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम खेती गृहस्थी आपको सुनवाया जाएगा शाम 7:20 से। आज सुनिए बांस उत्पादन से जुड़े उन्नत कृषक शरद भंडावत से बिंदु भाटे की चर्चा, साथ ही बरसात में पशुओं को सांप और चूहे से के काटने से कैसे बचाएं, इस विषय पर डॉक्टर रवि सिकरोडिया से भेंट वार्ता। इस सप्ताह संसद में ये कार्यक्रम सुनेंगे आप रात 8:00। फिल्म संगीत का समय होगा शाम की सभा में रात 8:30। श्रोताओं चित्रगीत सुनाना भूलेगा रात 9:15 पर और रात 9:30 राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका। रात 10:00 का समय होगा संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम का, जो हम रिले करेंगे दिल्ली केंद्र से। अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: इयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्ग प्रकरणेषु परीक्षासु अनुचित साधन प्रयोगस्य च प्रकरणेषु च द्रुत न्यायालयानां स्थापनाय सहैव दोषेभ्यः कठोरदण्ड विधानं सुनिश्चेतुं प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। संसद्भवन परिसरे प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां सम्पन्ने मन्त्रिमण्डलीयोपवेशने एतत् प्रारूप विधेयकम् अनुमोदितम्। सूत्राणाम् अनुसारेण प्रस्तावितं विधेयकम् आगामि सप्ताहे संसदि प्रस्तुतं भविष्यति। अस्मिन् मध्ये परीक्षा परिष्काराणां दिशि महत्वपूर्ण पदक्षेपेण राष्ट्रिय परीक्षाभिकरणेन 47 अधिकारिणः सेवातः निष्कासिताः। अभिकरणेन महाप्रबन्धकस्तरस्य वरिष्ठ व्यावसायिक पदानां तथा संघलोक सेवायोगस्य प्रतिभासेतु इति पटलमा

0: माध्यमेन षोडश युव व्यावसायिकानां नियुक्त्यै आवेदनानि आमन्त्रितानि, विज्ञापनानि अपि प्रकाशितानि। अभिकरणेन विज्ञप्तौ उक्तं यत् एतानि सर्वाणि उपायानि प्रोफेसर के राधाकृष्णन इत्येतस्य अध्यक्षतायां निर्मितोच्चस्तरीय विशेषज्ञ समितेः अनुशंसानुसारं क्रियमाणानि सन्ति। केन्द्रीय मन्त्रिणो जेपी नड्डा, डॉ जितेन्द्र सिंहः च नवदिल्ल्यां सीजेपी इत्येतस्य प्रतिनिधिमण्डलेन सह अमिलताम्। उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्रीनड्डा अवदत् यत् परीक्षा व्यवस्था परिष्कार सम्बद्धाः प्रतिनिधिमण्डलस्य याचनाः प्रशासनेन धैर्येण गंभीरतया च श्रुताः। तेनोक्तं यत् प्रतिनिधिमण्डलेन त्रयः प्रमुखाः प्रस्तावाः प्रस्तुताः। प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभंगस्य निवारणाय कतिपयाः परिष्कारोपायाश्च प्रतिपादिताः। श्रीनड्डा अवदत् यत् प्रशासनं प्रतिनिधिमण्डलेन सह अद्य पुनरेकवारं विचारविमर्शं करिष्यति। नीट प्रश्नपत्रस्य गोप्यता भंग प्रकरणमाधृत्य छात्राणां विरोध प्रदर्शनानि च अधिकृत्य पंचमदिवसे अपि निरन्तरं जातेन कोलाहलेन संसदः उभयोः सदनयोः लोकसभा राज्यसभयोः कार्याचरणं सोमवासरपर्यन्तं स्थगितम्। प्रशासनेन पुनः पुनः आश्वासनं प्रदत्तं यत् तत् नीट प्रकरणे सार्थक चर्चायै सज्जमस्ति। तथापि विपक्षेण केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः त्यागपत्रस्य आग्रहं कुर्वन् स्वविरोधं निरन्तरं प्रदर्शितम्। आर्थिक प्रकरणानां मन्त्रिमण्डलीय समित्या कर्णाटकान्ध्रप्रदेशयोः बल्लारी गुण्टकल रेलखण्डस्य तृतीय चतुर्थ रेलमार्गयोः निर्माणाय आहत्य चतुष्षष्ट्यधिक द्वादशशतकोटि रूप्यकाणाम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् अनया परियोजनया आन्ध्रप्रदेश कर्णाटकयोः मध्ये रेलसम्पर्कः अधिकः सुदृढः भविष्यति।
1: आज अप्रूवल हुआ है गुंतकल से बिल्लारी थर्ड एंड फोर्थ लाइन और उसके आगे फिर होसपेट से हुबली थर्ड एंड फोर्थ लाइन का ऑलरेडी डीपीआर अंडर प्रिपरेशन है। ये करने से नॉर्थ कर्नाटका का एक कंप्लीट इकोनॉमिक कॉरिडोर बनता है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश दोनों को जोड़ेगा। ये एक बड़ा मेजर ब्रिज है वेदावती रिवर पे और उसके अलावा 7 मेजर ब्रिजेस है, 52 माइनर ब्रिजेस है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है।
0: तेन एतदपि सूचितं यत् देशे त्रयाणां रसायनोद्योगिक संकुलानां स्थापनाय भव्य इति भारतोद्योगिक विकास योजना रसायन इत्येषा योजना मन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः रूमानिया देशस्य बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज इत्यनेन विश्वविद्यालयेन डॉक्टर ऑनरीस कौसा इति मानद विद्या वाचस्पति उपाधिना सम्मानिता। अयं सम्मानः तस्याः लोकसेवायां शिक्षा क्षेत्रे सामाजिक समावेशे च विशिष्ट योगदानस्य भारत रूमानिया देशयोः सम्बन्ध सुदृढीकरणे च मान्यता स्वरूपः प्रदत्तः। सम्मानम् अंगीकुर्वती राष्ट्रपतिः एतत् सम्माननम् भारतस्य 1.4 अर्बुदजनेभ्यः समर्पितवती। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
3: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं।

0: हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि दिल्ली में सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद रहेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के अपार समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया। वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को रोमानिया की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। ये सम्मान उन्हें विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता और भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि सम्मान दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था। उन्होंने कहा कि चनाब नदी में जलस्तर बढ़ना 20 से 23 जुलाई के बीच जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में हुई भारी मानसूनी बारिश का परिणाम है। भारत ने कालासागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जलक्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के साथ संपर्क में है। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र की बाब सामे को 3-1 से हराया। इसके साथ ही वो इस प्रतिष्ठित जूनियर टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है।

जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।

जीएसटी काउंसिल ने बीमा पर लगने वाले 18% टैक्स को घटाकर जीरो कर दिया है। ऐसे में जीवन बीमा लेने वालों को अब सिर्फ इंश्योरेंस का प्रीमियम ही भरना होगा और इस पर कोई भी अतिरिक्त टैक्स नहीं देना होगा। ये हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों के लिए बड़ा फायदा है क्योंकि LIC को पहले से ही इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है। वहीं अब GST भी हटने से बीमा लेना फायदे का सौदा होगा।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
3: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
4: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
3: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
5: आकाशवाणी इंदौर।
4: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
6: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर में हमारे भोपाल केंद्र से।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को मिला रिकॉर्ड समर्थन, 30 करोड़ से ज्यादा बार देखा गया, युवाओं का जताया आभार। पेपर लीक मामले में फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में बनेंगे युवाओं के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट। और प्रदेश के 35 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, अगले 4 दिन के लिए कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। ये वीडियो अब तक

0: 20 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला वीडियो बन गया है।
1: थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया है। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।
0: आपको बता दें, अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा था कि सरकार पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई के पक्ष में है। उन्होंने बताया कि सरकार ने 22 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई और 19 तारीख को परिणाम भी घोषित कर दिए गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक से जुड़ा विधेयक जल्द संसद में पेश किया जाएगा। सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों को लेकर सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुधारों के सुझाव भी दिए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। वहीं मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने युवाओं की शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की है। ये कोर्ट भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में स्थापित किए जाएंगे।
1: थैंक यू फ्रेंड्स।
2: माननीय प्रधानमंत्री ने कल जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा की है, ये जो सभी प्रकार के मसलों को तीव्र गति से निराकरण करने के लिए हमारे राज्य ने भी आज 4 नई फास्ट ट्रैक कोर्ट की घोषणा करके उनके आदेश का क्रियान्वयन किया है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर चारों महानगरों में फास्ट ट्रैक कोर्ट हम भी बनाने जा रहे हैं, जहां त्वरित गति से इस प्रकार के प्रकरणों का, युवाओं से जुड़े मसलों का त्वरित गति से निराकरण कराएंगे।
0: कल पन्ना में डॉ यादव ने करीब 185 करोड़ रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35 लाख से अधिक पेंशन हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से 210 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की। सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुखबीर सिंह को नई जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें वर्तमान दायित्वों के साथ आगामी आदेश तक लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्हें खाद्य सुरक्षा आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। दतिया विधानसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच गया है। भाजपा ने आशुतोष तिवारी, कांग्रेस ने घनश्याम सिंह और आजाद समाज पार्टी ने दामोदर सिंह यादव को मैदान में उतारा है। तीनों प्रत्याशी मतदाताओं तक पहुंचने के लिए जनसंपर्क में जुटे हैं। भाजपा केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की सरकार होने को मुद्दा बना रही है, जबकि कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड कल 26 जुलाई को प्रसारित होगा। यह कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। राजगढ़ जिले के नरसिंहपुर में कल प्रभारी मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने करीब 42 करोड़ रुपए की लागत से बनी सांदीपनी शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय का लोकार्पण किया। इस विद्यालय में एलकेजी से 12वीं तक के करीब 1300 विद्यार्थी अध्ययन करेंगे। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया और 7 कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। एक स्वसहायता समूह को 22 लाख रुपए का चेक भी प्रदान किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत अर्जी पर कल विशेष अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आज

इस पर आदेश सुनाया जाएगा। बचाव पक्ष ने महिला और उम्रदराज होने के आधार पर जमानत की मांग की, जबकि सीबीआई ने इसका कड़ा विरोध किया। सीबीआई ने कहा है कि आरोपी जांच को प्रभावित कर सकती हैं। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत एक गुरु एक वृक्ष अभियान चलाया गया। इसके तहत कल प्रदेश भर में 40,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। प्रदेश में कैच द रेन और जल संचय जन भागीदारी अभियान के तहत बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। राज्य सरकार इसे जल गंगा संवर्धन अभियान के रूप में आगे बढ़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर 21 जुलाई से 4 अगस्त तक पेयजल का सम्मान और संरक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। भारत ने पहला मैच 7 विकेट से जीतकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। पहले मुकाबले में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 19 गेंदों में अर्धशतक लगाकर पुरुष टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कम उम्र में अर्धशतक बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया। और अब बात मौसम की। प्रदेश के 35 जिलों में आज बारिश का अलर्ट है, जबकि 20 जिलों में हल्की बारिश होगी। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में मॉनसून का मजबूत सिस्टम सक्रिय है, जिससे बीते 4 दिनों से भारी बारिश हो रही है। विभाग ने अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी है। अब तक प्रदेश में 13 इंच बारिश हो चुकी है, जो कुल कोटे का करीब 35% है। धार के ऐतिहासिक भूशाला को लेकर कल शाम राष्ट्रीय व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ठोस अवशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर नरसिंहपुर और जनपद पंचायत कोटे गांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। झाबुआ पुलिस द्वारा संचालित नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान के तहत जिले भर में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। आगर मालवा जिले में 106 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नव निर्मित 3 सांदीपनी विद्यालयों सुसनेर आगर मालवा नलखेड़ा का लोकार्पण जिले के प्रभारी मंत्री नागर सिंह चौहान आज करेंगे। अशोकनगर राज्य आनंद संस्थान द्वारा जिले के अधिकारी कर्मचारियों के लिए तनाव मुक्त जीवन, बेहतर समन्वय और कार्य क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से प्रशिक्षण आयोजित किया गया। डिंडौरी जिला पंचायत सभा कक्ष में कल जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ती की अध्यक्षता में सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई। गुना जिले में अल्प वर्षा की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने जलापूर्ति व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए, अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत से सजा कार्यक्रम सुनहरे पल।

इस सुहानी सुबह में सुनहरे पल कार्यक्रम लेकर आ गए हैं हम आपके लिए, जिसमें लाए हैं सदाबहार फिल्म संगीत। और पहला गीत इस कार्यक्रम का आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और SP बालसुब्रमण्यम की आवाज़ में। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम के युगल स्वर में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। ये गीत आप सुन रहे थे सदाबहार नगमे कार्यक्रम में।

0: जमाने को दिखाना है। इस फिल्म का ये गाना सुना अभी आपने आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत लिखा था मशरू सुल्तानपुरी ने और संगीत तैयार किया था आरटी परमन ने। सुनहरे पल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। और भी गीतों के साथ लौटेंगे छोटे से अंतराल के बाद।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: सुनहरे पल कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अब सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत द ट्रेन फिल्म से। इसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी परमन ने।

मुकद्दर का सिकंदर, इस फिल्म का गाना सुन रहे थे अभी आप लता मंगेशकर की आवाज़ में। लिखा था अनजान ने और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। इसे आप सुन रहे थे आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से, जहां चल रहा है कार्यक्रम सुनहरे पल।

कंचन मनहर उदास और आनंद की आवाज़ में सुना भी आपने ये गाना, लिखा था इंदिवर ने और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था, फिल्म का नाम था कुर्बानी।

ज़बरदस्त इस फिल्म का ये गाना सुना भी आपने आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल स्वर में। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा, संगीतकार थे आर डी बर्मन। और आपने इसे सुना हमारे सदाबहार फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुनहरे पल में।

0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। कहा, आपसी संबंध और अधिक घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ेंगे। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक जहाज एमवी ओमर्फी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। हमले में एक भारतीय नाविक की मौत। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार वेट पैराभारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की संभावना है। श्री मोदी ने बृहस्पतिवार को एक वीडियो संदेश में पेपर लीक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के प्रावधानों वाला विधेयक संसद में पेश करने की घोषणा की थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के भविष्य के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।
7: सोमवार को बिल तो हम लोग तो तैयारी कर रहे हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि छात्रों को लेकर के जो हम बिल ला रहे हैं तो उसमें कोई विलंब नहीं होना चाहिए, और जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है इस पे कोई रुकावट पैदा करने के लिए कोई हठगंडे अपनाना ठीक नहीं होगा। अब इसको राजनीतिकरण करके फायदा नहीं, हम लोगों को ठोस कदम कैसे उठाना चाहिए छात्रों का भविष्य के लिए, इस पे ध्यान देना चाहिए।
6: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
8: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
6: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
9: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 शामिल हुए।
6: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
10: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जाँच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: भारतीय वायुसेना में अग्निवीर वायु और

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
2: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रीशेप्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज गिवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compass. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
1: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
3: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
4: चेनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
3: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
1: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे, अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोह की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें कारगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरव में संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
1: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्र कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 1,15,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष

0: हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है आक्रोश का असर, NTA से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रूपये जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है कानून बदला कार्रवाई हुई फिर भी CJP टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, NTA में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने NTA पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा, छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक, लोकसत्य लिखता है सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमरीका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और CJP के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: गवर्नमेंट अप्रूव्स NTA पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट, लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Doctor Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of General Manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher level.

0: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में सुन रहे थे अभी आप ये गाना। फिल्म का नाम था दिल का रिश्ता। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: दोस्तों, IVF का पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आसान भाषा में समझे तो इसमें महिला के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु को शरीर के बाहर लैब में मिलाकर भ्रूण बनाया जाता है। इसके बाद उस भ्रूण को महिला के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है ताकि सामान्य गर्भधारण की प्रक्रिया आगे बढ़ सके। ये प्रक्रिया विशेष डॉक्टरों की देखरेख में की जाती है। साथ ही कृत्रिम रूप से कुछ हार्मोन महिला को इंजेक्ट भी किए जाते हैं। श्रोता, विज्ञान ने बहुत प्रगति कर ली है, तो अगर आपके परिवार या जान पहचान में कोई ऐसी समस्या से जूझ रहा है तो उसे IVF अपनाने की सलाह जरूर दें।

शान कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ में सुना भी आपने ये गाना। फिल्म का नाम था कोई मिल गया, संगीत राजेश रोशन का था और बोल थे नासिर फराज के। श्रोताओं, IVF उन दंपतियों के लिए एक विकल्प हो सकता है जिन्हें लंबे समय तक प्राकृतिक रूप से गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए कई चिकित्सीय कारण हो सकते हैं, जैसे फेलोपियन ट्यूब की समस्या, स्पर्म की गुणवत्ता में कमी, एंड्रोमेट्रियोसिस या बढ़ती उम्र से जुड़ी प्रजनन संबंधी चुनौतियां। हालांकि हर व्यक्ति के लिए IVF जरूरी या उपयुक्त हो ऐसा नहीं है। सही सलाह और उपचार के लिए हमेशा फर्टिलिटी विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। और साथ ही दोस्तों, अपने सूनी आंगन और जीवन को बच्चे की किलकारियों से भरने के लिए IVF के अलावा सरोगेसी भी एक अन्य विकल्प है। इसके अलावा आप बच्चा गोद लेकर किसी मासूम की जिंदगी रोशन भी कर सकते हैं, जिससे आपके और उस बच्चे के जीवन में खुशियों के रंग भर सके।

0: चोरी चोरी चुपके चुपके। इस फिल्म का गाना सुना अभी आपने सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज में, समीर के बोल थे, अनु मल्लिक का संगीत था।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: चलो
4: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि आज दुनिया भर में लगभग 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा बच्चों का जन्म आईवीएफ और अन्य असिस्टेंट

रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज की मदद से हो चुका है। ये संख्या हर साल बढ़ रही है और लाखों परिवारों के जीवन में खुशियां ला रही है। एक और दिलचस्प बात यह है कि IVF से जन्म लेने वाले बच्चे सामान्य रूप से जन्म लेने वाले बच्चों की तरह ही बढ़ते हैं और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसलिए ज़रूरत है जागरूकता की, सही जानकारी की और सबसे बढ़कर ऐसे परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान दिखाने की।

प्रोजेक्ट और लव अकासा की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। फिल्म का नाम था गुड न्यूज़। दोस्तों, IVF, सरोगेसी और स्पर्म डोनेशन जैसी प्रक्रियाओं पर बॉलीवुड ने भी कुछ फिल्में बनाई हैं जिससे संवेदनशील मुद्दों पर जागरूकता लाई जा सके। इन फिल्मों में गुड न्यूज़, चोरी चोरी चुपके चुपके, विकी डोनर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल है। ऐसी फिल्में हमें ये संदेश देती है कि माता पिता बनना सिर्फ किस्मत की बात नहीं बल्कि आज विज्ञान भी इस सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, ऐसे विषयों पर खुलकर बात करना समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता दोनों बढ़ाता है।

आयुष्मान खुराना की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये गाना। इसे संगीत तैयार किया था रोचक कोहली और आयुष्मान खुराना ने, और लिखा भी आयुष्मान खुराना और रोचक कोहली ने ही था। फिल्म का नाम था विकी डोनर। श्रोता, वर्ल्ड IVF डे यानी जो कि आज है, हमें याद दिलाता है कि विज्ञान ने असंभव लगने वाले कई सपनों को संभव बनाया है, लेकिन साथ ही यह भी सिखाता है कि किसी भी दंपति की निजी जिंदगी और उनकी चुनौतियों का सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके आसपास भी कोई इस सफर से गुजर रहा है तो उन्हें सलाह से ज़्यादा अपनापन और हौसला दीजिए। और इसी के साथ मुझे यानी तृप्ति रटपटे को अब इजाज़त दीजिए। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 9 बजे हैं और ये समय है हमारे अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने का। अब समय है लोकगीतों के कार्यक्रम लोक संगीत का, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मनसा राम कुनबी और साथियों के गाए कुछ निमाड़ी लोकगीत। आइए करते हैं शुरुआत इस पहले पारंपरिक लोक रचना के साथ।

आसुत हूँ, मेरा किसी से अनुराग नहीं, और देवी से वर पाया है अटल, मम आस की उजड़े बा।

वेदाग जमी कहीं सुहाग नहीं, और धन्य धन्य कुंती पुत्र तुझे जहां लगी व्रत का कुआग नहीं। अरे वचन में

0: ये निमाड़ी लोकगीत अभी आप सुन रहे थे मनसाराम कुनबी और साथियों की आवाज़ में कार्यक्रम लोक संगीत में।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं।

0: श्री कृष्ण जी के हाथ और सती होंगे संगपति के सुनो श्री
1: रघुनाथ
0: दे दो तुम मेरे पति का करूं यही अरदास और कटी भुजाने हाल कहा तो शीश हंसेगा।

जहाँ पति का शीश बात सही मानेंगे तब बोले श्री जगदीश। तो सदी रुधन कर कहे पति से और हसो सभा।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी हॉकी खिलाड़ी और इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित सविता पुनिया के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही है ममता चोपड़ा।
2: नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आपके साथ मैं हूँ ममता चोपड़ा। कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जिनके लिए आंकड़े भी फेल हो जाते हैं, मतलब इतने आंकड़े उनके रिकॉर्ड्स के खड़े हो जाते हैं कि सुनने वाले को लगता है वाकई कोई इतनी उपलब्धि भी हासिल कर सकता है। और हमारे देश की बेटियां इस तरह का काम कर भी रही हैं। आज हमारे साथ देश की ऐसी ही बेटी है जो लगभग 17-18 साल से हॉकी के क्षेत्र में अपना दमखम दिखा रही है। जैसे ही पदार्पण किया वहां से जो शुरुआत हुई, तो आज भी वे सफलतम हॉकी प्लेयर्स में गिनी जाती हैं और हम आप सब उन्हें जानते हैं ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से, सविता पुनिया। तो आइए करते हैं मुलाकात सविता पुनिया से। सविता, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: थैंक यू मैम, थैंक यू।
2: जब मैं आपका डिटेल्स देख रही थी तो मुझे बहुत हैरानी हुई, मतलब 300 से ज्यादा मैचेस खेल चुकी हैं आप, मतलब 17-18 साल से आप उसी पेस को बनाए रख पा रही हैं खेल के मैदान में। मुझे लगता है अब तो आपको आदत पड़ गई होगी इस तेज रफ्तार जिंदगी की, हाई पिच।
3: या मैम, डेफिनेटली। जब मैं सबसे पहले इंडिया टीम में आई थी तो मेरे कोच आजाद सिंह मलिक ने बात बोली थी कि इंडिया टीम में आना आसान है, बट उस जगह को मेंटेन रखने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और वो चीज मेरे माइंड में थी हमेशा कि मुझे खेलना है और ऐसा खेलना है कि मैं एक एग्जांपल सेट करूं अपनी टीम के लिए, अपने सभी लड़कियों के लिए, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता था उस टाइम पे लड़कियों को घर से बाहर निकलने के लिए। तो बहुत ब्लेस्ड हूं क्योंकि उस चीज के लिए मैंने बहुत डेडिकेशन के साथ काम किया। और हमेशा अपनी फैमिली को वो क्रेडिट देती हूं क्योंकि आज फैमिली की सपोर्ट है तो मुझे पता ही नहीं चला कि इतने साल कैसे निकल गए। तो हर एक बच्चे को मैं बोलती हूँ कि इंडिया टीम में आना आपको जरूर, अगर आपने मेहनत की है तो आपको एक मौका जरूर मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, बट उसको मेंटेन रखने के लिए आपको बाकियों से ज्यादा फोकस होना चाहिए, वो डेडिकेशन होना चाहिए, वो पैशन होना चाहिए। सो इट्स नॉट इजी।
2: हाँ, और इसीलिए हैरानी इसलिए होती है कि आप निरंतर उसको बनाए पा रही हैं, रखा हुआ है आपने उसको, अभी भी आप इसी होड़ में हैं। लेकिन जब आप जूनियर ही थी, जब आप सीनियर टीम में चली गई थी, आपने देश के लिए खेलना शुरू कर दिया था, तब तो जाहिर है कि आपने हॉकी खेलना, ड्रिबल करना शुरू किया होगा
3: जी।
2: कैसे एक हॉकी के मैदान में गोलकीपर तक का सफर तय हुआ? अभी तो आप गोलकीपर के तौर पर ही लोग आपको जानते हैं
3: जी। मुझे याद है जब मेरे घर पे सबसे पहले मेरे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर आए पापा के पास और 2003 में बोला गया कि

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपके लाए हैं राधिका उमड़ेकर का विचित्र वीणा वादन, राग है बिलास खानी तोड़ी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राधिका उमड़ेकर का विचित्र वीणा वादन, राग था बिलास खानी तोड़ी। मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का इंदौर केंद्र है। कुछ ही देर में सुनिए जिले की चिट्ठी, जिसे हम अपने भोपाल केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से। जिले की चिट्ठी में विषय है आलेख आशीष जैन का, वाचन स्वर दीपा सिंह के।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी, आलेख आशीष जैन, वाचन स्वर दीपा सिंह। नरसिंहपुर जिले में अच्छी बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है और किसानों के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई है। बारिश के चलते खेतों में धान की रोपाई का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि राहत की बात के साथ चिंता भी बनी हुई है, क्योंकि इस साल अब तक जिले में औसतन करीब 309 मिलीमीटर बारिश हुई है। पिछले साल इसी समय तक 639 मिलीमीटर से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई थी, यानी इस बार अब तक पिछले साल की तुलना में आधी बारिश भी नहीं हुई है। फिलहाल जिले का अधिकतम तापमान 32 और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। बारिश के मौसम में गांवों को साफ सुथरा रखने पर भी प्रशासन खास ध्यान दे रहा है। इसी कड़ी में स्वच्छ भारत मिशन के तहत नरसिंहपुर, कोटेगांव और करेली में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों और स्वच्छता कर्मियों का प्रशिक्षण कराया गया। इसमें घर घर कचरा संग्रह, गीले सूखे कचरे को अलग करने और उसके वैज्ञानिक तरीके से निपटान की जानकारी दी गई। जिला पंचायत के अधिकारियों ने सभी पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के नियमों की पूरी तरह पालन करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य से जुड़ी एक अहम खबर कोटेगांव से है। यहां प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी अभिभावकों से अपने बच्चों को नजदीकी पोलियो बूथ पर ले जाकर पोलियो की 2 बूंद पिलाने की अपील की। दूसरी तरफ किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की फसल की समर्थन मूल्य पर खरीदी लगातार जारी है। ये खरीदी 10 अगस्त तक चलेगी। जिले के करीब 48,000 किसानों ने मूंग की फसल का पंजीयन कराया है। किसानों की सुविधा के लिए 23 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, जहां समर्थन मूल्य पर उपज खरीदी जा रही है। इससे किसानों को अपनी उपज का उचित दाम मिलेगा। अब बात पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण की। विश्व बाघ दिवस के मौके पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व ने नरसिंहपुर के पीएम श्री एमएलबी स्कूल में शर्ट पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की। जिले के 10 स्कूलों के 156 छात्र छात्राओं ने इसमें भाग लिया। वन विभाग ने सभी प्रतिभागियों को व्हाइट टी शर्ट दी, जिन पर बच्चों ने बाघ और दूसरे वन्य जीवों के सुंदर चित्र

बनाएं। विकास कार्यों को भी जिले में लगातार गति दी जा रही है। सांसद दर्शन सिंह चौधरी और तेंदुखेड़ा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल ने लिलवानी गांव में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। करीब 49 लाख रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ किया गया। वहीं नई सीसी सड़कों के निर्माण कार्य की भी शुरुआत हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए गाडरवारा में रोगी कल्याण समिति की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने की। इसमें गाडरवारा, साईखेड़ा, साली चौका और चिचली क्षेत्र के अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने को लेकर कई फैसले लिए गए। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी नरसिंहपुर जिले ने मिसाल पेश की है। जिले के 171 सरकारी स्कूलों में रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए गए हैं। एक काम जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत किया गया है। अब ये स्कूल सिर्फ पढ़ाई के केंद्र नहीं है बल्कि जल संरक्षण की सीख देने वाले मॉडल भी बन रहे हैं। और आखिर में संस्कृति और विरासत से जुड़ी खबर। नरसिंहपुर जिले के ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षित रखने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर और हरिश्चंद्र अग्रवाल के संग्रह में सुरक्षित कुल 79 प्राचीन पांडुलिपियों का संरक्षण किया गया है। इन सभी पांडुलिपियों को अब ज्ञान भारतम पोर्टल पर अपलोड कर डिजिटल रूप से सुरक्षित कर दिया गया है। इससे जिले के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर आने वाली पीढ़ियों तक सुरक्षित पहुँच सकेंगी। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। जिले की चिट्ठी में आज आपने सुना नरसिंहपुर जिले की चिट्ठी। आलेख था आशीष जैन का, वाचन स्वर दीपा सिंह के। ये आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण है।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है देश का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क आकाशवाणी, और आकाशवाणी का ये इंदौर केंद्र है। समय हो गया है हमारे फरमाइशी फिल्मी गीतों के सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन का।
2: हेलो, एमएच हॉटलाइन।

0: एमएच हॉटलाइन के सभी सुनने वाले श्रोताओं को तृप्ति लटपटे का प्यार भरा नमस्कार। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और इंतजार कर रहे होंगे इस कार्यक्रम का। हमें भी इंतजार है आपके कॉल्स का। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 2710223 और 2710224। इस नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड यानी 0731 जरूर लगाइएगा। और देखिए, हमसे पहला कॉल आ भी चुका है, जुड़ चुके हैं हमारे पहले श्रोता। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ मैडम।
0: कौन बोल रहा है, अपना नाम बताइए प्लीज।
1: मैं अमीना जी मनपुरी बोल रही हूँ, पालडा
0: नगर। हाँ, आप हमारी रेगुलर श्रोता है अमीना जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। और परिवार में सब कैसे हैं? हसीना जी कैसी हैं?
1: सब अच्छे हैं मैडम। हसीना जी भी अच्छी है, मोहम्मद रफी भी अच्छा है। मैं भी तेले से बहुत अच्छी हो गई हूँ अब।
0: क्या बात है। जी जी, आपका स्वास्थ्य खराब था जब हमारी आखिरी बार बात हुई थी, पर हमें बहुत खुशी है कि आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया है। आप फिर से सुन रही हैं, फिर से जुड़ रही हैं हमारे कार्यक्रम में। और बताइए, जिंदगी में, जीवन में और क्या नया हुआ है?
1: सब अच्छा हो रहा है मैडम, नया नया बहुत अच्छा हो रहा है इस साल तो
0: ये साल आपके लिए अच्छा जा रहा है मतलब?
1: हाँ, थोड़ा अगले साल तो थोड़ी तबियत ऐसी थी, आपको मालूम था।
0: हाँ,
1: तो थोड़ा अच्छा जा रहा है
0: जी। चलिए, हम तो यही चाहते हैं। दुआ भी जी जी, बिल्कुल, हमारी दुआएं आपके साथ जरूर है। दुआओं के साथ अगर हमारे कर्म अच्छे, हमारी नियत अच्छे हो तो सब अच्छा होता है।
1: जी मैडम जी, सबसे पहले तो नियत सही होना चाहिए।
0: जी बिल्कुल,
1: सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: जब अपना अच्छा होता है मैडम।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाया जाए ताकि आपका मन भी अच्छा हो जाए स्वास्थ्य के साथ।
1: जी मैडम, वो अनजाना का सुना दीजिए।
0: अनजाना फिल्म से कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: वो गाने के बोले रिमझिम के गीत सावन गाए।
0: जी बिल्कुल, सावन तो शुरू हो गया है और साथ में मन भी खिलने लग गया है, तो आइए सुनवा देते हैं आपकी पसंद का गाना। ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहिए जी।
1: हाँ मैडम, ये बरसात अच्छी हुई ना, उस खुशी में मैं ये गाना सुनना चाहती
0: हूँ। जी बिल्कुल, और हम चाह रहे बरसात थोड़ी और अच्छी हो ताकि सभी लोगों का मन और खुश हो जाए आपकी तरह।
1: पहले से तो थोड़ा ठीक है मैडम।
0: जी जी बिल्कुल, चलिए हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए।

0: देश में रिमझिम बुछाने सब कुछ चालू है। सावन का महीना शुरू हो गया है और हम सब के दिल में उम्मीद है कि सावन इस बार बहुत झूम के आएगा। और हमारी उम्मीद है कि आप सब कॉल करते रहेंगे। आपसे यही कहूंगी, कई बार ऐसा होता है कि कॉल्स नहीं लगते हैं क्योंकि कई सारे कॉल्स एक साथ श्रोता करते हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा धीरज रखना पड़े, थोड़ा संयम रखना पड़े, पर उम्मीद मत हारिएगा, प्रयत्न करते रहिएगा, आपका कॉल जरूर लगेगा। जैसे हमारे अगले श्रोता का कॉल लग चुका है, तो आइए करते हैं बात, कौन है कॉल पर, देखते हैं। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: मैं तहसील बहादुरपुर, जिला अशोक नगर एमपी से सूर्य प्रताप यादव बात कर रहा हूँ।
0: सूर्य प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं मैम।
0: और परिवार में सब लोग कैसे हैं?
1: सब कुशल मंगल है
0: जी। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: फिल्म का नाम है आई मिलन की रात और गाने की बोले सावन का महीना आया है घटा से बरसाए।
0: जी, सावन का महीना आ चुका है और सभी लोगों के मन में यही है कि सावन इस बार अच्छा होने वाला है। तो आप करते क्या है सूर्य प्रताप जी?
1: हम खेती बाड़ी करते हैं।
0: हाँ, तो आपको तो सावन का बहुत ज्यादा इंतजार रहता होगा।
1: बिल्कुल।
0: तो अभी आपने बुआई कर दी होगी?
1: जी
0: जी। तो बुआई किस चीज का, क्या लगाते हैं आप खेतों में?
1: हम धान लगाते हैं।
0: धान लगाते हैं, अच्छा, ओके। चलिए ठीक है, आपके पसंद का ये गीत आपको सुनवाते हैं। आप हमें ऐसे ही कॉल करते रहिए। कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से ये चल रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन और मैं हूँ आपके साथ तृप्ति लटपटे और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक और श्रोता, देखते हैं हमारे साथ कौन है कॉल पे। हेलो MH हॉटलाइन। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हाँ नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, आपका शुभ नाम बताइए।
1: धन्यवाद मैडम। मेरा नाम महेश रायकवार है, मैं राजपंडी चौरा इंदौर से बोल रहा हूँ।
0: महेश जी कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है मैडम।
0: और कब से आप रेडियो सुबह से सुन रहे हैं?
1: जी मैडम, बस मेरा ये रेडियो चालू हो जाता है सुबह 6 बजे से मैडम।
0: अच्छा, तो रेडियो के साथ ही सुबह होती है और रेडियो के साथ ही फिर रात भी होती है।
1: 12 बजे तक मेरा मैडम ये रेडियो चलता है मेरे का।
0: गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक आकाशवाणी साथ रहता है।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैडम
0: जी। क्या बात है, अकेले सुनते हैं या परिवार के और लोग भी सुनते हैं?
1: मैडम मैं अकेले ही सुनता हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पे भी रहता हूँ, तब भी मेरा रेडियो चालू रहता है।
0: हाँ हाँ, तो ये दीवानापन सिर्फ आपका है, कहाँ से आया ये?
1: मैडम आप ये तो मेरे को बचपन से ही शौक है मैडम ये गाने
0: सुनने। तो कैसे शुरुआत हुई थी, मतलब घर में माता पिता सुनते थे, दादा दादी सुनते थे, कैसे शुरुआत?
1: मेरे पिताजी मेरे फादर सुनते थे रेडियो।
0: जी
1: जी,
0: और वो भी आकाशवाणी इंदौर ही सुनते थे।
1: जी जी जी जी।
0: क्या बात है, मतलब ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक जा रहा है, तो अब आपको ये संस्कार आपकी अगली पीढ़ी को भी देकर जाने हैं। बिल्कुल, आप उन्हें भी सिखाइए, क्योंकि देखिए आकाशवाणी से आप क्यों सुनते हैं, आपको क्या मिलता है आकाशवाणी से?
1: मैडम क्या है, एक तो अपना टाइम उसमें अपना पास हो जाता है अपना।
0: जी जी।
1: और अपना जो दिनचर्या अपनी बिल्कुल एकदम स्वस्थ रहती है।
0: बिल्कुल।
1: और अपना काम में मन लगा रहता है अपना।
0: जी जी जी। और यही चीजें हैं कि साथ में मनोरंजन भी मिलता है और जानकारी जी, भी जी, मिलती है, ज्ञान और जानकारी दोनों साथ चलती है।
1: जानकारी तो आपके साथ मिलते रहते हैं मैडम, जैसे सखी सहेली के अंदर उसके अंदर है, और आपका जो प्रोग्राम आता हेलो डॉक्टर,
0: बिल्कुल
1: उसके अंदर भी डॉक्टर लोगों से अपने को कुछ माने वो मिल जाता है कि भाई कोई सी बीमारी की क्या दवा वगैरह ये है।
0: बिल्कुल, जो बहुत जरूरी है स्वस्थ जीवन के लिए।
1: जी, और आप बहुत अच्छा माने कार्यक्रम आपका जो हेलो डॉक्टर आता है मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी जी जी, हमारी यही कोशिश रहती है कि हर बीमारी के विशेषज्ञ को स्पेशली बुलाया जाए ताकि जितने भी श्रोता है सभी को फायदा मिल सके घर पर बैठ के। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको?
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, आप जो डॉक्टर को हर डॉक्टर को बुलाते
0: जी,
1: हो
0: जी,
1: आज प्रोग्राम में।
0: जी चलिए बताइए गीत कौन सा सुनवाया आपको
1: आज फिल्म मैडम? वो अपने 31 जुलाई को अपने मोहम्मद रफी साहब की वो पुण्यतिथि आ रही है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
1: तो वो नोनियाल फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: जी, मोहम्मद रफी जी ने हमारे बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक गीत दिए, सही कहा ना?
1: बहुत माने कई गाने दिए उनने, माने आज के गाने भी दिए हैं, दुख दर्द भरे भी गाने हैं।
0: हाँ, उनकी आवाज मतलब कानों में आज भी शहद की तरह घुल जाती है, और कई लोग हैं जो गम में तो उन्हीं के गीत सुनते हैं आज भी।
1: जी जी जी।
0: चलिए बहुत अच्छी पसंद है आपकी।
1: मेरी आवाज सुनो वो गाना है, मेरी आवाज सुनो।
0: बिल्कुल, चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आप भी कॉल करो और अपने पसंद के गीत सुनो, साथ ही कर सकते हैं हमारे साथ गपशप। हमारे नंबर है 2710223 और 2710224। इस नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड यानी 0731 ज़रूर लगाइएगा। आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। मैं हूँ आपके साथ तृप्ति लटपटे और मेरे साथ जुड़ गए हैं एक और श्रोता। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग, किससे बात हो रही है मेरी? श्रीपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम, आप बताइए कैसे हो?
0: एकदम बढ़िया है। आप लोगों के जब कॉल आते हैं तो हम और बढ़िया हो जाते हैं आप लोगों से बात करके। अभी क्या चल रहा है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बिल्कुल याद है कि आपके ये अपने ऑफिस जाने का समय और हमारे कार्यक्रम का समय एक ही होता है और आप बिल्कुल सुनते हुए जाते हैं। बताइए हरियाणा में मौसम क्या कह रहा है अभी?
1: उमस बढ़ गई है,
0: उमस बढ़ गई है। हाँ, जब तक अच्छी तरह से बारिश नहीं होती तब तक उमस तो रहेगी, मौसम का यही हाल रहेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों का जो लाइफस्टाइल है, हम लोगों की भी गलती है कि बारिश कम हो गई है। बट कोशिश यही कीजिए और हम सबको करनी चाहिए कि हम थोड़े पेड़ लगाएं और जितना हो सके

0: हमारी जो प्रकृति है उसका बचाव करे, ताकि ये सारी गर्मी और ये जितना भी मौसम संबंधी प्रॉब्लम्स हैं उससे हम बच सके आगे फ्यूचर में भी। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म है पूर्व पश्चिम और गाना है कोई जो तुम्हारा है तोड़ दे।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत गाना है, मेरे भी पसंद का गीत है ये, और आपकी पसंद पे भी लीजिए, आपको सुनवाते हैं ये गाना। हम कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: खुशी के गीत हो या गम के गीत हो, सारे गीत आपको मिलते हैं आकाशवाणी इंदौर पर, और हम करते हैं आपकी हर फरमाइश पूरी, क्योंकि यही तो हमारा कर्तव्य है। और आइए जुड़ते हैं अगले कॉल से, देखते हैं कि किस श्रोता का कॉलम तक पहुंचा है। हेलो एमएच हॉटलाइन।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन, परम आदरणीय दीदी शारदा सुप्रीम, प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे।
0: बहुत बहुत नमस्कार और बहुत सारा आपका स्वागत और वेलकम है। कैसे हैं आप?
1: जी हृदय से धन्यवाद, मैं अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से आदरणीय दीदी को करता हूँ एक बार पुनः राधे राधे।
0: प्रजापति जी, पूरा आपके ऊपर जो है वो रेडियो का एकदम प्रभाव दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी अगर मैं माइक पे आपको बिठा दूंगी तो आप भी कार्यक्रम बहुत अच्छे से यहाँ पर कर लेंगे।
1: जी धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। आप लोगों का संगत है, असर है, उसका होता है कि हम भी थोड़ा सा आप लोगों के स्टाइल में बोलना की कोशिश करते हैं।
0: जी हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे श्रोता भी हमसे हमारे ही अंदाज में बात करते हैं। और बताइए मथुरा।

0: का अभी कैसा है, वहां का मौसम कैसा है, वहां का अंदाज क्या चल रहा है, क्या लग रहा है अभी सावन का, क्या कहना है?
1: बहुत ही खूबसूरत और सुहाना मौसम है
0: जी।
1: दो तीन दिन पहले बारिश हुई थी, आज तो खिली खिली धूप है, मंद मंद शीतल पवन प्रवाहित हो रही है, बहुत ही खूबसूरत सुहाना मौसम है।
0: क्या बात है, मतलब बादल छाए हुए हैं अभी पर बौछारे हो रही है नहीं?
1: हाँ जी जी
0: जी, बादल के साथ बौछारे भी हैं
1: जी, रिमझिम हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है, फुहार पड़ती रहती है, बहुत ही अच्छा लगता है इस वक्त जो वातावरण है बारिश का।
0: तो यमुना से कितने दूर रहते हैं आप, यमुना के मतलब घाट पर अभी तो बहुत खूबसूरत लगता होगा इस समय जाना?
1: जी, इस वक्त मथुरा में क्या, मथुरा वृंदावन पूरा ब्रज क्षेत्र बहुत ही खूबसूरत सुहाना है, बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, पर्यटक इस वक्त आना पसंद करते हैं, न ज्यादा गर्मी होती है न ज्यादा ठंडी होती है,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: रिमझिम बारिश का आनंद लेते हुए भगवान बांके बिहारी और कृष्ण मुरारी का दर्शन करते हैं, उनकी लीला स्थली क्रीड़ा स्थली को देखकर अत्यंत ही अभिभूत हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
0: बिल्कुल, वैसे यूपी में काफी गर्मी रहती है तो गर्मियों के दौरान मुझे लगता है कि वहां पर जो है लोग थोड़े कम आते होंगे, पर जैसे ही बारिश की बौछारें शुरू होती है तो वापस वहां पर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाता होगा।
1: जी दीदी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सावन भादों में बहुत ज्यादा यहाँ भीड़ होती है, बहुत सारे श्रद्धालु भक्त देश विदेश पर्यटक आते हैं, और इधर फागुन के महीने में जो होता है वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ होती है, लोग सब ज्यादा आते हैं, लेकिन नवंबर से लेके जनवरी फरवरी मार्च तक तो यूं ही चलता रहता है, काफी लोग आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं।
0: जी बिल्कुल, मेरा भी आना हुआ था जनवरी के खूबसूरत मौसम में, मैंने अपने जन्मदिन का दिन चुना था वहाँ आने के लिए, और अब तो बस यही मन है कि फिर से दोबारा जल्द से जल्द मैं मथुरा की पावन नगरी में आ पाऊँ, क्योंकि वहाँ का जो ऑरा है, वहाँ की जो वाइब है वो बिल्कुल अलग है।
1: जी दीदी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, कभी सेवा का अवसर भी प्रदान कीजिए।
0: जी अभी तो बताइए कि गीत कौन सा सुनवाए आपको।
1: दीदी वर्षा का ऋतु है और एक प्यारा सा खूबसूरत गीत इसी से मिलता जुलता है, कितना तू मुझसे प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसी किसी का सहारा बनी मैं खुद बेघर बेचारा।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत गीत, और आपको जी आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत, कॉल करने के लिए धन्यवाद।

0: लगातार सावन और बरसात के गीत चल रहे हैं श्रोताओं की फरमाइशों पर, सब पर सावन का जो सुरूर है वो चढ़ने लग गया है और हमें भी गीत सुनवाने में बड़ा मज़ा आ रहा है। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 2710223 और 2710224 पे। नंबर के पहले इंदौर का एसटीडी कोड यानी 0731 ज़रूर लगाइएगा। आकाशवाणी इंदौर पर चल रहा है MH हॉटलाइन और अगले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। हेलो MH हॉटलाइन।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, आपका नाम बताइए।
1: अनिल भंडारे, सुजामा नगर से बोल रहा
0: हूँ। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका, बहुत दिनों बाद बात हो रही है आपसे, कैसे हैं आप?
1: आप कैसे? हम तो अच्छे हैं,
0: बहुत बहुत अच्छे हैं।
1: पुराने गीत संगीत सुनकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, खुशी से व्यतीत कर रहे हैं।
0: क्या बात है, और पुराने गीतों के लिए तो आकाशवाणी वैसे ही मशहूर है हमारे पास।
1: हमारे साथ है आकाशवाणी का पुराना 70 साल से।
0: क्या बात है, कितनी अच्छी बात।
1: निभा रहा है
0: जी। जी बताइए, गीत अभी कौन सा सुनवाए आपको?
1: आज मैं संगीतकार GS कोहली के मधुर संगीत में का शिकारी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे
0: जी। गाने के बोल
1: लता मंगेशकर, लता मंगेशकर, उषा मंगेशकर ने गाया है। तुमको पिया दिल दिया कितना जैसे
0: जी,
1: ये वाला
0: जी। जी चलिए, आपकी पसंद पे सुनवाते हैं आपका ये फरमाइशी गीत। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद आपको।

0: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से चल रहा है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम MH हॉटलाइन। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर है 2710223 और 2710224। नंबर के पहले इंदौर का STD कोड जरूर लगाइए। आइए जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। हेलो MH हॉटलाइन। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, किससे बात हो रही है?
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर तहसील जिला विदिशा मध्य प्रदेश।
0: विदिशा से बोल रहे हैं, आपसे पहली बार बात हो रही है मेरी शायद। आप कम कॉल करते हैं कार्यक्रम में?
1: नहीं जी, आपसे पहली बार बात हो रही है, लेकिन पहले भी बात हो चुकी है, महीना या 20 दिन पहले।
0: जी जी जी, तो क्या करते हैं सर आप?
1: खेती बाड़ी कर रहे हैं।
0: खेती, किस चीज की खेती करते हैं आप?
1: खेती बाड़ी अभी हो रही है, मक्का और सोयाबीन की।
0: मक्का की खेती करते हैं, और
1: जी
0: इसके अलावा आप सोयाबीन वगैरह भी लगाते हैं?
1: जी 10 बीघा में है सोयाबीन।
0: जी जी, तो बहुत अच्छी बात है। आप अकेले करते हैं या परिवार के और भी लोग करते हैं आपके साथ?
1: नहीं, घर परिवार में और भी करते हैं।
0: जी, घर परिवार के और भी लोग करते हैं। और आप खेती करते वक्त सुनते हैं आकाशवाणी?
1: जी सर, लगा रहता अपना मनोरंजन, साथ में साथ खेती बाड़ी भी होती रहती है, अपना
0: जी
1: काम काज भी चलते रहता है, क्रिकेट भी देख लेते हैं, हर चीज का शौक रहते हैं मोबाइल में।
0: सही बात है, और साथ में मनोरंजन भी हो जाता है, ज्ञानवर्धन भी हो जाता है।
1: जी कबड्डी वगैरह, आजकल क्रिकेट ज्यादा चल रही है।
0: जी जी बिल्कुल, क्रिकेट का
1: तो
0: शौक रखते
1: मौसम
0: हैं आप?
1: कैसा आपके इधर, मौसम कैसा है, बारिश कैसी हो रही है आपके इधर?
0: यहाँ तो बारिश बस रिमझिम हो रही है, वहाँ बारिश के क्या हाल है?
1: अभी तो कल से खुला हुआ है मौसम, 4-5 रोज से बारिश हो रही थी।
0: जी, कल से मौसम खुला हुआ है, मतलब धूप हो रही है।
1: जी हाँ, खूब तो बारिश हो रही, फसल फसल के लिए लग रही है,
0: जी,
1: अब पैसे की दवाइयाँ डल रही हैं अब।
0: और अभी आपने मतलब इस समय क्या होता है, रोपाई होती है, बुआई होती है, या फिर कैसे आप जो मक्का लगाते हैं उसका क्या समय होता है?
1: इसका मक्का असल में बुआई नहीं करते हैं, आधे असल में जब पानी बारिश हो जाती है। मक्का भी हो गई है, 20-22 दिन की मक्का हो गई है।
0: जी, 20-22 दिन की मक्का हो गई है। अच्छा, और इसके अलावा फिर मक्का को आप कैसे डायरेक्ट बेचते हैं या फिर वहाँ पर मंडी में ले जाके बेचते हैं?
1: मंडी में ले जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा कम रेट में बिक रही है मक्का, 5 साल 15-16 बिकी है।
0: ओह ओके, तो फिर आप सिर्फ मक्का पे ही ध्यान देते हैं या फिर दूसरी चीज़ों पर भी, अगर जैसे मक्का के भाव अगर आपको लग रहा है कि कम मिल रहे हैं या उतनी अच्छी खेती नहीं मिल पा रही है, तो फिर आप साथ में दूसरी भी खेती करने के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं या फिर सिर्फ मक्का पर ही ज़्यादा आपका
1: नहीं,
0: फोकस
1: दो
0: होता
1: साल तो 2 साल से मक्का ही बो रहे हैं, क्या है 5 साल सोयाबीनों में फसल बर्बाद हो गई, इसमें पड़ गई थी,
0: है? जी,
1: इसलिए 2 साल से मक्का बो रहे हैं।
0: तो अभी 2 साल से जब से मक्का बो रहे हैं तब से आपको सही फायदा मिल रहा है?
1: जी हाँ, पहले सोयाबीन में फायदा हो रहा था, लेकिन फसल बर्बाद हो रही है, तो इसलिए मक्का 2 साल से मक्का बो रहे हैं।
0: और फसल बर्बाद होने का क्या कारण है, कीट कारण है या मौसम के कारण हो रहा है?
1: नहीं, कुछ रोग लगा था, 5 साल तो 10 पैसे भी बीज ही नहीं निकला।
0: जी, पर आप कोशिश कीजिए, क्योंकि अब तो इतनी सारी नई तकनीकें आ गई हैं, इतनी सारी नई दवाइयाँ आ गई हैं, तो आप थोड़ा सा उससे मतलब कृषि वैज्ञानिकों से आप अपना संपर्क बनाएं, उनसे कुछ नई दवाइयों के बारे में पूछें, तो शायद आपको ये नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा आगे।
1: जी क्या है, 5 साल सोयाबीन 20 दिन की महीना भर की सोयाबीन थे, तो सोयाबीन सूख जाते हैं, ऐसा लग रहा था हाथिए से काट लो।
0: जी, नहीं, हम आपके लिए कामना करेंगे, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी खेती का जो कार्य है वो अच्छे से चले, सफल तरीके से आपकी खेती आए और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। बताइए, आपको गीत कौन सा सुनवाएं?
1: मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी का गाना सुनवा देना आप।
0: जी, चलिए, आपको आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं। हमें कॉल करने के लिए धन्यवाद।
1: जी आप, आपसे अच्छा लगा बात।

0: एमएस हॉटलाइन में आइए, अब जुड़ते हैं हमारे अगले और अंतिम कॉलर से, देखते हैं हमारे साथ कौन जुड़ रहा है। हेलो एमएस हॉटलाइन।
1: हेलो,
0: नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपना नाम बताइए प्लीज।
1: मैं कारुंगा छोटी सारी से राजस्थान से रतनलाल सुथार बोल रहा हूँ।
0: रतनलाल जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए कैसे हैं आप और परिवार में सभी लोग कैसे हैं?
1: हमारे परिवार में सभी बढ़िया है। आपके यहाँ का मौसम कैसा है?
0: मौसम यहाँ तो अभी सुहाना है, थोड़ी धूप है, कभी बारिश है, बौछारे हैं, वहाँ का क्या हाल है मौसम का?
1: यहाँ भी वैसे ही है, आप जैसे बता रहे हो वैसे ही, यहाँ भी वैसे ही है।
0: अभी तो बस सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि बारिश अच्छी तरह से हो जाए, क्योंकि बारिश का मौसम है और अभी तक बारिश के ठिकाने नहीं है, तो सभी लोगों को इंतजार है, उम्मीद है कि बारिश हो जाए।
1: किसानों को चिंता सताने लग गई थी फसलें खराब होने के कारण से आ गई थी।
0: जी बिल्कुल, आप भी कृषि करते हैं?
1: हाँ,
0: आप भी खेती ही करते हैं?
1: हाँ करते हैं खेती।
0: किस चीज की खेती करते हैं आप?
1: हमारे यहाँ बहुत सोयाबीन, मूंगफली,
0: जी
1: उड़द, मूंग।
0: तो उम्मीद है कि अभी तक आपका कोई नुकसान तो नहीं हुआ होगा इससे, बारिश की कमी से? जी, तो अभी बारिश का इंतजार तो है, मौसम उम्मीद है कि जल्दी से बन जाए और अच्छे से बारिश हो, ताकि किसी भी किसान का कोई नुकसान ना हो।
1: जी, मैं नाम लेना चाहूंगा हमारी बेटियों का और बच्चों का।
0: जी, बिल्कुल लीजिए।
1: हमारे मंदसौर जिले में नारगढ़ आया हुआ है, मेरी बेटी यहाँ पे
0: जी,
1: तो उसका नाम है आशा सुथार और अमन सुथार, ऑटो डिलीवर से कारगर रेपर उनका यहाँ पे खाकी बाग में।
0: जी, वो भी सुनते हैं आकाशवाणी इंदौर?
1: हाँ, जब भी उनको खुशी हो रही है, मैंने कहा आपका नाम लूंगा तो वो बहुत खुशी हो रही
0: है। क्या बात है, अभी भी खुशी होती है जब आप लोगों को इतनी खुशी मिलती है आकाशवाणी इंदौर से जुड़ने में। चलिए बताइए, गीत कौन सा सुनवाए आपको? हेलो
1: दीपक जी, सुथार
0: जी, गीत बताइए कौन सा सुनवाया जाए आपको?
1: गीत वो अभी इसका बता रहे, जो प्यार किसी से होता है।
0: जी
1: लाइन गुनगुनाता हूँ मैं।
0: जी बिल्कुल।
1: जियो जियो जियो कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो।
0: चलिए धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए, आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं।

0: और इसी गीत के साथ संपन्न होता है फरमाइशी फिल्मी गीतों का सजीव फोन इन कार्यक्रम एमएच हॉटलाइन। तृप्ति लटपटे को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो एमएच हॉटलाइन,
0: हम आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण कुछ ही देर में।
2: लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे लेकर हाजिर हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त रक्षा तंवर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि हम रोजाना इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करते हैं सुबह 10:30 से 11 बजे के मध्य, और हमारा फोन नंबर है 2660902, एसटीडी कोड है 0755। अब कार्यक्रम का विषय जान लेते हैं। आज का विषय है वो अनोखे व्यंजन जो आपके घर में, आपके परिवार में, आपके समुदाय में या आपके मोहल्ले, क्षेत्र, गांव आदि में विशेष रूप से बनते हैं और कहीं और नहीं पाए जाते। सावन का मौसम चल रहा है, बारिश की फुहारें पड़ रही हैं और ऐसे में अच्छा अच्छा खाना हम सभी को बहुत पसंद होता है, और इसीलिए हमने आज का ये विषय चुना है। नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: नमस्कार, बात आपकी गीत हमारे।
0: जी, किन से बात हो रही है?
1: मैं बागली जिला देवास से गणेश भाटी बोल रहा हूँ।
0: देवास से गणेश भाटी जी, कैसे हैं आप?
1: हाँ, पहली बार फोन लगा मेरा।
0: अच्छा, अरे वाह, बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या हाल चाल है गणेश जी?
1: बढ़िया है।
0: और क्या करते हैं गणेश जी आप?
1: हमारे हम ये मिर्ची मसाले की चक्की चलाते हैं।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, तो कार्यक्रम जो है वो है बात आपकी गीत हमारे, जिसमें हम आपसे कुछ बात करते हैं किसी विषय पर और बढ़िया से मीठे मीठे गीत सुनवाते हैं आपको। तो आज का विषय है वो आपके काम से किसी तरह जुड़ा हुआ ही है। आज का विषय है अनोखे व्यंजन जो आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में बनाई जाती हैं। ऐसा कोई अनोखा व्यंजन है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे?
1: अनोखा व्यंजन तो दाल बाटी, दाल बाफले यही बनते हैं, दाल चावल यही बनते हैं सब हमारे यहाँ। तो
0: दाल चावल और दाल बाफले तो आजकल सब जगह ही मिल जाते हैं, थोड़ा और सोचिए।
1: और क्या सोचे?
0: अच्छा, आपको क्या खाना पसंद है? बारिश का मौसम है,
1: भजिए पकौड़े,
0: भजिए पकौड़े खाने पसंद है बारिश के साथ में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, कार्यक्रम में आपने फोन किया और आप शामिल हुए इसके लिए।

0: नमस्कार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है
1: जी। नमस्कार
0: नमस्कार, किन से बात हो रही है
1: जी? मैम जी, मैं आपका नेम में सोता हूँ, कमलेश कहार करकबेल।
0: कमलेश कहार जी,
1: जी
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हैं? एफएम रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल से।
0: अच्छा, ये कहाँ पड़ता है?
1: ये जिला नरसिंहपुर, तहसील गोटेगांव, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है मैम जी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। कैसे हैं आप?
1: कुशल है मैम जी, सुन रहे हैं आपको।
0: क्या करते हैं कमलेश जी?
1: मेरी चाय नाश्ते की दुकान है और एक ग्रुप है रेडियो का, जय नरसिंहदेव एफएम रेडियो ग्रुप।
0: अच्छा, आज जो कार्यक्रम है वो है बात आपकी गीत हमारे, और आज का विषय है अनोखे व्यंजन। आपकी चाय नाश्ते की दुकान भी है तो आपसे बेहतर और कौन बता पाएगा। तो इस विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे ऐसे अनोखे

0: गुलगुला रसगुल्ले का दूसरा रूप आटा रहता है खोवा नहीं रहता है और चाशनी बढ़िया सामान्य तौर पे जो रहती है वही रहती है। और मैं तो चाहूंगा कि आपके माध्यम से हम लोगों को भी कुछ ऐसी अनोखी स्थिति व्यंजनों की सुनने को मिल जाए तो अच्छा लगेगा मैम जी।
1: हाँ बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया है उसी तरह हमारे अन्य श्रोता भी होंगे जो कि अपने क्षेत्र के अपने घर परिवार के अनोखे अनोखे व्यंजन लेकर आएंगे।
0: और मैम जी मैं तो ये कहूंगा कि मेरी चाय नाश्ते की दुकान है तो समोसे बनाए जाते हैं और जलेबियां बनाई जाती हैं। जलेबियों को मैं रह कर दिन भर खाता रहता हूँ।
1: अरे वाह, आपकी ही दुकान है, आप ही खत्म कर देते हैं क्या?
0: नहीं नहीं, मेरी स्वभाव हो गया कि खत्म तो नहीं कहते, खत्म तो ग्राहक करते हैं लेकिन मेरा रेरे कहने का मतलब यही है लगभग 2-4, 10-20, 25-30 मैं दिन भर एक एक करके खाता रहता हूँ, मुझे जलेबी बहुत प्रिय है।
1: अच्छा, इसीलिए तो नहीं आपने दुकान खोली है कि मतलब जो कहते हैं ना कि ऐसी चीज करो जो पसंद हो तो ऐसा नहीं लगता कि काम कर रहे हैं?
0: जी जी, ये तो मैम जी अलग बात हुई है लेकिन कह सकते हैं ना कि जीवन चलाने के लिए, जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ अर्थ के रूप में होना चाहिए। जी, तो मेरी चाय नाश्ते की दुकान है जिसके माध्यम से मेरा जीवन चलता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है।
1: हाँ जी, बहुत बढ़िया कमलेश जी, आपने कार्यक्रम में फ़ोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छी अच्छी अनोखे व्यंजन आपने बताए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद मैम जी, आपको धन्यवाद, आपकी टीम को धन्यवाद हृदयपूर्वक।

0: जी नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
0: जी मैं मालवा रेलवे श्रोता संघ गुलबालोच से बोल रहा हूँ, गुलबालोच तहसील आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से।
1: नाम बताएं अपना।
0: जी विक्रम मालवी।
1: कैसे हैं विक्रम जी?
0: हम बढ़िया हैं मैडम जी, आप कैसे हो?
1: मैं भी बढ़िया हूँ। क्या चल रहा है?
0: बस ये बारिश हो रही है।
1: अरे
0: अभी बारिश सही समय पर आ गई, नहीं तो सोयाबीन में नुकसान होता।
1: अच्छा
0: जी हाँ, सोयाबीन बहुत ज्यादा तान लग गई थी पानी की।
1: चलिए अच्छी बात है, समय से बारिश हो गई।
0: जी समय पे संभल गई सोयाबीन, नहीं तो मैम खत्म हो जाती सोयाबीन। अगर 8-10 दिन मतलब 8-1 दिन और निकले तो सोयाबीन समझ लो खत्म हो जाती।
1: अच्छा, कार्यक्रम जो है वो है बात आपकी गीत हमारी, जिसमें हमेशा एक विषय होता है। तो आज का विषय जो है वो है अनोखे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो आपके घर परिवार या क्षेत्र में ही बनते हैं। तो ऐसा कोई व्यंजन है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे?
0: घर पे तो खाना अच्छा बनना चाहिए मैम। दाल बाफले फेमस है हमारे, दाल बाफले लड्डू है
1: मालवा के, दाल बाफले।
0: जी जी आजकल बनाते हैं अधिकांश रसोई में, तो हमारे इधर सामान्य शादी में अधिकांश यही बनता है मैम।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, मालवा के बाफले तो ऐसे प्रसिद्ध हो गए हैं कि आप देश से बाहर भी चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएंगे।
0: हाँ मिल ही जाएंगे।
1: हाँ लेकिन ऐसा कोई व्यंजन बताइए ना जो कि लोग नहीं जानते हो या कम पता हो लोगों को।
0: इतना मैम मुझे नॉलेज नहीं है।
1: अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा आप बता दीजिए कि आपका पसंदीदा व्यंजन कौन सा है, या बारिश में आप क्या खाना पसंद करते हैं?
0: बारिश में पकौड़े ज्यादा
1: पकौड़े खाते हैं। और इसके अलावा और कोई ऐसा व्यंजन जो आपके बचपन से जुड़ा हुआ हो, कि बचपन में आपको खाना बहुत पसंद था और अभी भी पसंद है?
0: हाँ वो बचपन में मम्मी और जो अपने देसी भाषा में बोलते ना राबड़ी बनाते ना, वो गुड़ डाल के खटिसा में जो खाते हैं छाछ में।
1: मैं जानती हूँ लेकिन अन्य श्रोताओं को भी पता चल सके इसलिए थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताएं कि क्या होता है उसमें, क्या क्या डलता है।
0: गुड़ और छाछ में बनाते हैं राबड़ी।
1: अच्छा
0: मक्की के आटा की बना सकते अपने, गेहूँ के थोड़ा सा फुली टाइप का आटा पीसते हैं उसमें, वो बहुत अच्छी लगती है मैम।
1: अच्छा ये अभी भी खाते हैं आप?
0: हाँ कभी बनाते ना, कभी कभार मम्मी बनाते ना।
1: अरे
0: मेरे माता जी।
1: जी बहुत बहुत अच्छी बात है विक्रम जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी थैंक यू मैम।

0: नमस्कार कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी, किनसे बात हो रही है?
1: जी मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा से बोल रहा हूँ मैम, आपका अपना साथी सुरेश कुमार सारथी छत्तीसगढ़ बेमेतरा से।
0: सुरेश कुमार सारथी जी?
1: जी मैम।
0: कैसे हैं आप सुरेश कुमार जी?
1: बहुत बढ़िया है मैम, हमारे तरफ अभी हरियाली ही हरियाली है चारों तरफ और बरसात की बूंदों की बौछार के आनंद उठा रहे हैं मैम, और खेती बाड़ी की काम अभी जारी है मैम। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमने साथी समाज की ओर से 3 पेड़ पौधे लगाए हुए हैं छोटे छोटे मैम।
0: अरे वाह, बहुत बहुत

0: अच्छी बात है, बहुत नेक काम कर रहे हैं आप।
1: बरगद नीम और पीपल का पेड़ लगा हुआ है, उनका सुरक्षा के लिए कांटे की घेरा करके देखभाल कर रहे हैं मैम, और सुबह शाम पानी इसमें डाल रहे हैं मैम।
0: अरे वाह, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है सुरेश जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप।
1: जी जी मैम, जी मैम, क्या है मैम, मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक आदमी को एक पेड़ लगाने ही चाहिए मैम, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए प्रदूषित हवा न मिल पाए, और ये कहा जाए कि अच्छी साफ सुथरा शुद्ध हवा मिले, और भीषण गर्मी और जल संकट से निजात पाया जा सके मैम।
0: जी बहुत अच्छे विचार हैं आपके, भविष्य जो है वो सुरक्षित हो सके, अच्छा पर्यावरण हो, इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए कार्यक्रम पर वापस आ जाते हैं। कार्यक्रम है बात आपकी, गीत हमारे, और आज का विषय मैंने आपको अभी नहीं बताया, आज का विषय है अनोखे व्यंजन। तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आपके घर परिवार में ऐसा कोई व्यंजन है जो विशेष रूप से बनता हो?
1: जी मैम, हमारे घर में क्या है मैम, वही दाल चावल और रोटी यही बनाते हैं मैम, और ज्यादा करके तो तेल फूल और नमक मिर्च वाले मसालेदार युक्त भोजन हम नहीं करते, और नहीं बच्चे को खिलाते हैं मैम।
0: अच्छा,
1: इनसे सेहत खराब होती है ना मैम।
0: हाँ बिल्कुल ठीक बात है, पर छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा व्यंजन नहीं है जो बड़ा अनोखा हो और दूसरे लोग नहीं जानते हो जिसके बारे में?
1: इसके बारे में हमारे तरफ अब छत्तीसगढ़ी में कहा जाए तो ठेठी खुरमी चीला बड़ा ऐसे व्यंजन जो है जो सामूहिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में बनता है मैम।
0: जी क्या क्या होते हैं ये व्यंजन, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, क्या क्या डलता है, कैसा स्वाद होता है
1: इनका? स्वाद मैम का लाकड़ी जो होता है ना, उसका उसको पीस करके बनाया जाता है मैम।
0: अच्छा,
1: और चने की दाल है उनको पीस कर इसको बनाया जाता है, और कहा जाए तो नया जो धान होता है, नया फसल जो धान का होता है उसको मशीन से कुटवा कर उसको साफ करवा के उसको आटे के रूप में देकर उसको बनाया जाता है मैम।
0: अच्छा, मीठा होता है ये? मीठा
1: नहीं नहीं इसमें नमक होता है मैम, और जो बताया हूँ वो मीठा रहता है।
0: अच्छा अच्छा, आपने दो अलग अलग व्यंजनों की बात की, नाम एक बार फिर से बताएं।
1: ठेठरी खुरमी चीला और बड़ा मैम।
0: अच्छा, ठेठरी खुरमी चीला और बड़ा।
1: बड़ा,
0: बढ़िया बढ़िया।
1: और फरा, पांच व्यंजन होते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में।
0: ये फरा क्या होता है?
1: चावल को जो पिसवाते हैं ना, उसको हाथ से छोटे छोटे लंबा कार के गोलदार बनाया जाता है।
0: अच्छा,
1: एक अंगूठा के माफिक, और उसको ना भाप में उबाला जाता है मैम।
0: अच्छा, और फिर उबाल करके उसको खाएंगे?
1: बिल्कुल, उसको चटनी के साथ उसको खाया जाता है मैम।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बढ़िया, मतलब ये तो बड़े अनोखे व्यंजन मैंने सुने हैं छत्तीसगढ़ के, पहली बार ही मैं सुन रही
1: हूँ। फेमस है मैम छत्तीसगढ़ का।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी हमें।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपकी पूरी यूनिट को सारथी परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ कोटि कोटि बधाई मैम।
0: जी आपको भी धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: छोटू मीना बोल रहा है, छोटू होशंगाबाद जिला से।
0: तो छोटू जी, आज का जो विषय है वो है अनोखे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो आपके घर परिवार समुदाय क्षेत्र में खास तौर से बनते हैं और बाहर उतनी आसानी से नहीं मिलते या लोगों को पता नहीं है जिसके बारे में, तो आप बताइए।
1: कहीं कहीं की ऐसी चीज होती वो भाई मुश्किल से मिलती है, पर आप होती है नहीं मिलती, ढूंढे ढूंढे से नहीं मिलती।
0: हाँ, तो ऐसा कुछ बताइए आपके क्षेत्र में मिलता
1: हो। और मैडम जी, वो यहाँ के तो पान बहुत प्रसिद्ध है, जो आपको के पान है ना, बाहर तक जाते हैं खाने के लिए, बहुत अच्छे बिकते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे लगते हैं मैम जी।
0: अच्छा,
1: यहाँ के पान। और वो बागरा की कचौड़ी, वहाँ की कचौड़ी प्रसिद्ध है मैम।
0: अच्छा, क्या खास होता है वहाँ की कचौड़ी में?
1: यहाँ खास ऐसा होता है, वो अपनी बाटी बनती है ना बड़ी वाली, उतनी बड़ी बनती है।
0: अच्छा।
1: वो कहीं नहीं बनती वो ऐसी कचौड़ी।
0: अच्छा, अरे वाह।
1: जी जी, हमने सब खा के देख ली, होशंगाबाद जिला में भी खा ली है।
0: हाँ।
1: और सुहागपुर में और इटारसी में कहीं नहीं मिलती वो ऐसी कचौड़ी।
0: अच्छा।
1: और जो पानी पीने की जो सराई है ना, तो वो भी प्रसिद्ध है यहाँ, दो चीज प्रसिद्ध है सुहागपुर की।
0: अच्छा, पान और सुराही।
1: हाँ,
0: आपको क्या पसंद है खाने में?
1: हमको तो मैम जी सब कुछ पसंद है खाने में, होटल पे जाते हैं तो अच्छी अच्छी चीज भी खा लेते। यहाँ पे सब चीज उपलब्ध है, यहाँ पे दुकान खुली है
0: जी,
1: तो सारी चीज मिलती है यहाँ पर।
0: अच्छा, ऐसा कोई व्यंजन है, ऐसी कोई खाने की वस्तु है जो खाकर आपको एकदम बचपन की याद आ जाती है?
1: हाँ है ना,
0: बताए।
1: हमको ज्यादा पसंद इटली है। इटली बहुत बचपन की याद आ जाती है इटली खाने में।
0: ठीक है छोटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।

0: जी नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आपका स्वागत है।
1: मैं सागर जिले ग्राम पिथौरिया से शाहिद खान बोल रहा हूँ।
0: शाहिद खान जी?
1: जी हाँ।
0: कैसे हैं शाहिद जी?
1: जी ठीक हूँ। मैं ग्राम पिथौरिया नगर परिषद बारली से बोल रहा हूँ। मेरा नाम शाहिद खान है, मुझे गाना सुनना है।
0: माफ कीजिएगा शाहिद जी, आज का जो कार्यक्रम है वो है बात आपकी गीत हमारे, गीत हमारी पसंद के होंगे, बातचीत हम आपसे करेंगे। हाँ जी
1: जी मैम, जी मैम, जी मैम। हाँ मैं ग्राम पिथौरिया से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ अच्छा बड़ा किला है।
0: हाँ
1: पानी अभी हो रही है, पानी अभी गिर नहीं गया है।
0: अच्छा पानी नहीं गिरा?
1: नहीं मैम कम गिरा था, वो बोनी तो हो गई है ना, वो उसमें पानी की जरूरत है, अभी कम गिरा है पानी।
0: समझ रहे हैं। अच्छा शाहिद जी, आज का जो कार्यक्रम है उसका विषय है अनोखे व्यंजन, ऐसे खाने के व्यंजन जो आपके क्षेत्र में या आपके घर परिवार में ही बनते हैं और बाहर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और लोग कम जानते हैं जिसके बारे में, तो ऐसा कुछ है आपके घर परिवार में? हाँ जी
1: जी हम करेला,
0: करेला
1: जी करेला जो है ना मैम, वो अपने स्वास्थ्य के लिए सही होता है।
0: हाँ
1: जी उसमें का है जो बीमारियां थोड़ी बहुत हो तो उसमें बहुत मेंटेनेंस में आ जाती है। करेला हम लोगों को हफ्ते में एक बार जरूर खाना चाहिए।
0: अच्छा करेले को कुछ अलग तरह से बनाते हैं आप?
1: जी हाँ वो कहते थे तल के बनाते हैं, जो उसको कड़वापन ज्यादा होता है ना वो कम हो जाता है।
0: अच्छा लेकिन करेला तो सब जगह बनता है, मैंने आपसे पूछा कि ऐसा कुछ जो बस आपके घर परिवार में आपके क्षेत्र में ही बनता हो या आपके क्षेत्र का खास हो कि वहाँ का विशेष है बड़ा।
1: बस नहीं अभी तो ऐसे कुछ नहीं है, वो हमारे यहाँ के सागर में जो है ना वो आलू बड़े बनते हैं अच्छे।
0: अच्छा प्रसिद्ध है वो?
1: जी जी सागर
0: अच्छा, सागर में।
1: हाँ
0: अच्छा ऐसा कुछ है और जो आपको बड़ा पसंद हो खाने को?
1: मेरे लिए तो समोसा पसंद है।
0: अच्छा समोसा पसंद है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसा कोई और व्यंजन जो मतलब आपको बचपन की याद आ जाती हो जिसको खाते ही?
1: बचपन की बहुत ही ना वो पड़ोरा सब्जी बनती है उसकी, जो देहात में होता है।
0: हाँ पर क्या होता है मतलब कोई भाजी होती है?
1: नहीं भाजी नहीं, जैसे करेला होता है ना उसी की एक प्रजाति का पड़ोरा होता है।
0: अच्छा
1: जी हाँ वो विलुप्त, अब तो वो विलुप्त हो गया, बहुत कम मिलते हैं। ये देहात वगैरह में होते हैं, खेतों वगैरह में वो लगी रहती है बारगा, उस पर होते हैं वो, बहुत पुरानी बहुत स्वाद स्वाद वाली बनती है।
0: अच्छा सब्जी होती है ये?
1: जी जी जी
0: और
1: करेले होते हैं ना, करेले होते हैं थोड़े दाएदार वैसे काटे वाले,
0: हाँ
1: वो बहुत अच्छा होता है, छोटे होते हैं वो।
0: अच्छा अच्छा अच्छा तो किस तरह से बनाते हैं उसको, जैसे सब्जी आमतौर पे बनाते हैं वैसे ही बनाते हैं?
1: मसाले में जैसे करेले बनते हैं ना वैसे ही बनते हैं, लेकिन इसका स्वाद जो है ना बहुत अच्छा स्वाद, स्वाद बहुत अच्छा लगता है।
0: अरे वाह, अब आपने बताया ना कुछ बढ़िया सा शाहिद जी।
1: हाँ
0: आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने कार्यक्रम में फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे।
1: हाँ
0: जी, किनसे बात हो रही है?
1: अशोक कुमार शर्मा, शिवपुरी से।
0: कार्यक्रम का आज का विषय है अनोखे व्यंजन, ऐसे व्यंजन जो आपके घर परिवार में या आपके क्षेत्र में ही बनते हैं या आपके क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं।
1: तो हमारे यहाँ तो ज्यादातर कद्दू होता है, कद्दू की सब्जी ज्यादा बनती।
0: कुछ खास तरह से बनती है कद्दू की सब्जी?
1: नहीं, ये जैसे नॉर्मल जैसे बनाते हैं वैसी बनती है।
0: अच्छा, आपके यहाँ पैदावार ज्यादा होती होगी?
1: हाँ, इधर हाँ, बस ये पैदावार ज्यादा होती है कद्दू की, बहुत ज्यादा।
0: अच्छा,
1: कद्दू और टमाटर दो चीजें होती हैं।
0: पर उससे बनने वाला कोई व्यंजन बताइए ना, कुछ खास व्यंजन जो आपके घर परिवार में बनता हो या आपको पसंद हो।
1: कद्दू की सूखी सब्जी बनती है।
0: हम्म,
1: कद्दू की सूखी सब्जी बनती है और टमाटर अलग, वैसे यहाँ टमाटर भी बहुत होते हैं।
0: अच्छा,
1: शिवपुरी में?
0: हाँ जी,
1: वो तो यहाँ कोई विशेष वो नहीं है। यहाँ पर दाल टिक्का बनते हैं ज्यादातर, दाल बाटी ज्यादा फेमस है मतलब यहाँ पर।
0: दाल बाटी, दाल बाफले, दाल टिक्कड़ आप कह रहे हैं?
1: जी, और खीर मालपुड़ी भी ज्यादा फेमस है यहाँ पर।
0: ठीक है अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए।
1: अच्छा, थैंक यू,
0: धन्यवाद,
1: थैंक यू।

अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।
1: पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय बनाने वाले मसौदा विधेयक को अगले सप्ताह संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार आज परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों को लेकर सीजीपी प्रतिनिधिमंडल के साथ एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। राज्य सरकार ने कल रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। इनमें 6 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सुखबीर सिंह को वर्तमान दायित्वों के साथ लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग और भोपाल गैस त्रासदी राहत और पुनर्वास विभाग के प्रमुख सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। साथ ही उन्हें खाद्य सुरक्षा आयुक्त का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश और भूस्खलन के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हो गई है। अधिकारी सुरक्षित और निर्बाध संचालन सुनिश्चित करने के लिए यात्रा मार्ग की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मॉनसून का मजबूत सिस्टम सक्रिय है, जिससे अगले 4 दिनों तक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा 2020 मैच आज हरारे में शाम 4:30 बजे से होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाए हुए है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश

वर्मा, करुणा वर्मा, इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश साक्षी, मनन तान्या, भड़भूंजी आगर से रघुनाथ मालवीय, भवरबाई, सुषमा, पुष्पा, ममता, मंजू, बबीता, राधा, सरिता, श्याम, भावना, दुर्गा, मधुबाला, मिलन, आयुष और ओम प्रकाश, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म जब वी मेट का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है उस्ताद राशिद खान के, गीतकार हैं इरशाद कामिल और संगीत है प्रीतम का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र, सन्मति पंचोलिया और नांदेड़ से प्रभाकर जूनले, आरती जूनले और ये साथी हैं सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है हम आपके दिल में रहते हैं इस फिल्म का गीत, जिसके लिए आवाज़ें हैं अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू की, गीतकार है समीर और संगीत है अनु मलिक का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है बीड शहर महाराष्ट्र से प्रकाश पगारिया और अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, मुस्तबा खान, राउफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, औरंगाबाद से राजेश सामले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है क्रिमिनल फिल्म का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है कुमार सानू की, गीतकार हैं इंदिवर और संगीत है MM करीम का।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है बेरडी से हुकुम करमकर सुनीता करमकर हार्दिक प्राची करमकर तनु करमकर और सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा संगीता भावना प्राची नेमा खुरई से राम सखी परमानंद सौरभ गौरव किशोरी बोस एलपी रोहित ललूराम पूरन रोहित छोटू इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है हम तुम्हारे हैं सनम इस फिल्म का गीत जिसके लिए आवाज़ है अनुराधा पौडवाल उदित नारायण की गीतकार हैं समीर संगीत है निखिल विनय का

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: युवाओं के जोश, उमंग और ज्ञान से भरे कार्यक्रम युववाणी का प्रसारण होता है प्रतिदिन शाम 5 बजे,
3: जिसमें होती है नित नई जानकारियाँ, मनोरंजन और ज्ञान की बातें।
2: तो सुनते रहिए मालवा की शान,
4: आकाशवाणी इंदौर।
3: आकाशवाणी इंदौर अब मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: मालवा की शान,
2: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
3: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
4: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
3: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
5: आप सुन रहे हैं मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: कार्यक्रम संग्रहालय से। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे धारावाहिक कामिनी काय कांतारे की 10वीं कड़ी।
1: प्रस्तुत है महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति। रूपांतरकार हैं प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित और प्रस्तुतकर्ता चित्रेंद्र स्वरूप राजन। आज प्रस्तुत है कामिनी काय कांतारे के रेडियो नाट्य रूपांतरण का 10वां भाग। अब तक आपने सुना कि राजा भर्तृहरि महालय छोड़ देते हैं, पैठार गांव के भोले भाले ग्रामीण उन्हें पुण्य पुरुष मान लेते हैं और अच्छी फसल होगी इसलिए उनसे खेतों में बीज छिटकवाते हैं। ग्रामीण युवती शची से उनका मिलन हो जाता है। अब

0: ग्राम पैठार से राजा भर्तृहरि विदा लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मार्ग में उन्हें एक भूत प्रेत का इंद्रजाल वाला गांव मिलता है। उससे बचकर भर्तृहरि आगे बढ़ते हैं। उन्हें चंद्रपुर जाना है। बादल खिर रहे हैं, वो सुरक्षित स्थान खोज रहे होते हैं। तभी एक कृषक उनसे कहता है,
1: जय महादेव पथिक, कहां से आगमन हो रहा है?
2: चला तो पैठार गांव से था। रात्रि विश्राम प्रेतपुरी के निकट एक ग्राम में हुआ। गंतव्य है चंद्रपुर। आगे का गांव कितनी दूर होगा?
1: चंद्रपुर गांव पर 2 करोड़ दूरी पर है। एक पांतशाला भी वहां है, जहां यदा कदा पथिक साथ ठहर जाते हैं। आप हमारे ग्राम में रुक ले, जब तक कोई स्थान न मिल जाए।
2: चंद्रपुर पहुंचना है, फिर वर्षा काल है। यदि पानी बरसने लगा तो जाना संभव नहीं होगा। कब तक रुकना पड़े? इसलिए जब तक वर्षा नहीं होती चलते रहना ही उचित है।
0: भर्तृहरि जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। भालुओं के गुर्राने की आवाजें आती हैं, वन पशुओं की भी आवाजें आती हैं। बादल गरजने लगते हैं और मेघ बरसने लगते हैं। पांतशाला के भीतर से एक व्यक्ति का भर्तृहरि को संबोधित करता हुआ स्वर उभरता है।
3: आइए, स्वागत है। आप बाहर भीग जाएंगे, पांतशाला में आ पहुंचे हैं। सही समय पर आए हैं आप। तनिक भी विलंब होता तो बुरी तरह भीग जाते। मैं 2 घड़ी पहले ही यहाँ पहुंचा। मुझसे पहले ये महाशय यहाँ थे। वेशभूषा से वे खानस प्रतीत होते हैं। पहले से ही इसी मुद्रा में अविचल ध्यान मग्न बैठे।
4: कौन जानता है कि महादेव महाकारिणी किस काल के लिए क्या निर्धारित कर रखा है? सत्य का साक्षात्कार तो मैं भी नहीं कर पाया। क्या पता सत्य किसी बड़े महासत्य का अंश हो, और वो महासत्य उससे भी आगे परम सत्य का। कौन जानता है, हम सत्य को खोजते रहते हैं। ये वर्षा तेज हो रही है।
3: अब तो पांतशाला की छतें भी टपकने लगी। शीघ्र ही यहाँ पानी में भूमि गीली हो जाएगी। सोना भी कठिन होगा। भोजन व्यवस्था की संभावना भी नहीं रही। ऐसे में कौन यहाँ आएगा ये देखने कि पांतशाला के पथिक भूखे हैं? मैं समझता हूँ भयानक अंधेरा, दारुण अतिवृष्टि और भूख, यही काल रात्रि है।
4: हंसो, और जोर से हंसो, हंसो। जो भूखा रहकर हंस सकता है वो भूख को भी जीत सकता है। अकालों में किसान इसी तरह मौत और भूख को हरा देते हैं।
0: तभी पांतवास के बाहर कुछ सैनिक घोड़ों पर सवार आते हैं। वो देखते हैं कि अंधेरा है और भोजन नहीं है, तो वो प्रकाश और भोजन की व्यवस्था करते हैं। फिर राजा भर्तृहरि से पूछते हैं कि वो कहां से आए हैं।
2: मैं पैठार ग्राम से आया हूं।
0: सैनिक अन्य पथिकों से इन महानुभाव की सेवा का ध्यान रखने को और आहार में कुछ बच जाने पर शेष को ले लेने को कहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि तुम कृषक हो, भूख सह सकते हो, किंतु ये विप्र उसे सहन नहीं कर पाएंगे। ये कहकर सैनिक चले जाते हैं।
4: तुम लोग भोजन करके विश्राम कर लो।

0: मेघ साधना करेंगे।
1: पर महाराज, थोड़ा बहुत आहार तो ले लें।
0: क्षत्रिय हो ना
1: देव, कैसे अनुमान लगाया?
0: इसीलिए, क्योंकि ये ब्राह्मण चुप रहा, इसी भूख ने घेर रखा है। अब मैं चलता हूं।
2: निकट लगता है योगा, आओ कुछ खा ले। जोगी तो खाएगा नहीं, जाने कहां चला गया है। घनघोर वर्षा की भी चिंता नहीं।
3: वर्षा रुक जाती है, प्रातःकाल का सूर्य उगने लगता है। मुर्गे की बाग, पक्षियों का कलरव, श्वान पशुओं के रम्हाने, मनुष्य के खांसने, बतियाने के स्वर उभरने लगते हैं। अचानक योगी की श्रृंगी कूपने लगती है।
1: राम महाराज, स्वागत है आपका।
0: तुम किस दिशा में निकलोगे?
1: चंद्रपुर जाना है महाराज।
0: चंद्रपुर? बहुत दुर्गम है मार्ग, अनेक नदी नाले हैं, वन व्याघ्र और तस्कर मिलेंगे, कहीं कहीं सैनिक गुप्तचर भी मार्ग रोकेंगे। गुरु का आदेश हुआ है कि ये दुर्गम मार्ग मैं तुम्हें पार कराऊंगा।
1: गुरु? कौन गुरु? आप मुझे जानते हैं वैखानस महाराज?
0: नहीं, मैं नहीं जानता, मेरे गुरु जानते। उठाओ ये अपना झोली डंडा और निकल पड़ो हमारे साथ। मुझे लोग जोगी कहते हैं। ओघड़ जोगी ओ।

0: हाँ मुझे बेखा नस्बत कहो, सिर्फ जोगी कहो जोगी।
1: इतना कहकर जोगी चिंघाड़ उठता है, अलग अलग गोरख गोरख। शंगी फूंकता है, तभी मेघ बरसने लगते हैं।
2: क्या हमें वर्षा रुकने तक की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए?
0: मत सोच, सोच मत, कुछ भी मत सोच। जो तेरे वश में नहीं है उसे मत सोच। जहाँ पहुंचना है उसी दिशा में चल दे।
2: चलिए महाराज।

0: मध्याह्न काल हो गया और राजा भर्तृहरि तुम दो कोस भी पूरे नहीं कर पाए।
1: महाराज आप मेरा नाम कैसे जानते हैं?
0: हाँ तुझ पर गुरु महाराज की कृपा है। मेरे गुरु भाई ने बताया है कि ये विद्वान है और किसी आवेश में गृह त्याग कर आया है।
1: गुरु भाई कौन है आपके गुरु भाई? आपको ये सब कब बताया उन्होंने?
0: रात में जब तू पांतशाला में आया था तो उन्हें जानता है प्रेतपुर की प्रेतनी से उन्होंने तेरी रक्षा की थी गुरु महाराज के आदेश से। गुरु महाराज की धरोहर मूल्यवान वस्तु है।
1: और आपके गुरु कौन है क्या मैं ये जान सकता हूँ?
0: बताऊंगा वो भी बतलाऊंगा। अभी तो कई दिन हमें साथ रहना है भर्तृहरि। अभी तो चला चल, गति गति तनिक बढ़ा दे।
1: अवश्य महाराज, पांव का छाला बहुत पीड़ाजनक है।
0: मेरे पांव में तो कोई छाला नहीं।
1: आपको नंगे पांव चलने का अभ्यास है महाराज।
0: तुझे भी हो जाएगा।

0: भूख लगी होगी।
1: मैंने भी कुछ दिन ऐसे के संग बिताए हैं जिन्हें भूखे रहने का अभ्यास है।
2: फिर हम आज की रात निराहार ही बिताएंगे।
1: आपकी ये दूसरी निराहार रात्रि होगी।
2: जानते हो राजा भर्तृहरि, अन्न का भी एक मद होता है। मद गुरु ने बताया है, संसार में मद ही मद, धन का मद, शक्ति का मद, रूप का मद, यौवन का मद। साधक को इन सब से विमुख होना पड़ता है और युक्त तो तभी हुआ जा सकता है जब इन्हें जान लिया जाए, उनका अनुभव हो तुम्हारे पास। क्यों, बात समझ में आई?
1: हाँ, कुछ कुछ समझ रहा हूँ जो।
2: आज की रात हम इस वृक्ष को अपना आश्रय बनाए। अंधेरा हो रहा है, लगता है आसपास कहीं हिंसक पशु बैठे हैं। चलो चलो राजन, पेड़ पर बैठकर सुरक्षित हो ले।
1: हिंसक पशु तो मार्ग में भी अनेक मिले थे, किसी ने आक्रमण नहीं किया, हानि नहीं पहुंचाई। तो अब कैसा भय महाराज?
2: अरे वो तो मेरे गुरु भाई की कृपा थी, उन्हें वन्य जीवों को वश में करने की सिद्धि प्राप्त है। अब पेड़ पर चढ़ जा, गुरु कृपा से ये रात भर हमारी रक्षा करेगा। मैं तो चढ़ गया, मुझे अभ्यास है, तू ये सहारा ले ले।
1: कुछ दिन पहले इसी तरह मैं वृकवन में जा पहुंचा था, तब इसी भांति बबूल के एक वृक्ष पर चढ़कर प्राण बचे थे, तब बबूल ने रक्षा की थी, आज ये पलाश। कितना असुरक्षित है मनुष्य।
2: न तो जन्म परवश है और न मृत्यु पर, गुरु कृपा से ही सब जन्म और मृत्यु को वश में किया जा सकता है। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है राजा भर्तृहरि?
1: नहीं, पर आपने बताया नहीं कि गुरु कहाँ है, कौन है। आपने वचन दिया था कि बताएंगे, मैं जानना चाहता हूँ।
2: जानना ही चाहिए, जरूर जानना चाहिए। बोल, संक्षिप्त में कहूँ या विस्तार से?
1: यदि विस्तार ही अभिप्रेत है तो प्रारंभ अभी कर दे और क्रमशः कहते चले।
2: तेरा राजत्व अभी शेष नहीं हुआ, पा लेने की जल्दी है, किंतु मुझे क्या, अरे गुरु जाने ये सब। अला, अला, गोरा।
3: जोगी की शंगी के स्वर में वन्य जीवों की दहाड़ मिल जाती है।
2: सुन राजा भर्तृहरि, एक बार महायोगी मच्छिंद्रनाथ पर्यटन करते हुए बंग देश की नगरी चंद्रगिरी पहुंचे। वहां एक धर्मपरायण पंडित रहता था, उसकी उसकी सुंदर सुशील पत्नी सरस्वती देवी थी, किंतु निसंतान होने के कारण ये दंपति दुखी रहता था। भिक्षाटन के साथ समय योगी राज की भेंट इनसे हुई। परम गुरु मच्छिंद्रनाथ जान गए कि ये नारी अत्यधिक दुखी है। उन्होंने पूछा,
4: माता तुम्हारे दुख का क्या कारण है?
5: महाराज, यूं तो मैं सभी भांति संतुष्ट हूँ, सुखी हूँ, किंतु निसंतान होने का दुख है। यदि आप अनुकंपा करें तो मेरा ये दुख दूर हो सकता है।
2: महायोगी ने अपनी झोली से भस्म निकाली और माता के हाथ पर रख दी और कहा,
4: इस भस्म को ऋतु स्नान के पश्चात खीर में मिलाकर खा लेना, तेरे यहाँ नारायण के अंश से उत्पन्न तेजस्वी पुत्र जन्म लेगा। अब मैं 12 वर्ष पश्चात ही यहाँ लौटूंगा।

0: महागुरु प्रसाद देकर विदा हुए। सहेलियों ने संदेह उत्पन्न किया, कहा भूल कर भी मत खाना भस्म। अरे क्या पता कौन सा तंत्र मंत्र हो, जोगी था या बहरूपिया। अरे यदि भस्म से ही संतान जन्म लेने लगे तो संसार में कोई भी बांझ ना रहे। सुन रहे हो राजा भर्तरी, गुरु के अवतार की कथा। सोया है तो जाग जा, और जागता है तो फिर हुंका भर।
1: हाँ महाराज, जाग रहा हूँ।
0: बड़े गुरु ने भी हुंकारा भरते हुए सुनी थी अमर कथा, काल के महाकाल महादेव के मुख से। गुरु की कृपा से कोई कोई सुन पाता है, यार कोई अमर नहीं होता। ये संसार आने जाने का स्थान है, कोई अमर नहीं होता, हो नहीं सकता। अलख अलख तो राजन सुन, जितने मुंह उतनी बातें इस भस्म को लेकर। संदेह ने सबके विश्वास को गड़बड़ा दिया, ये संदेह बड़ा छली है, आत्मियों का संशय छल इतिहास रच देता है। तूने भी संशय के वशीभूत होकर गृह त्याग दिया है। तू गुरु के अवतार की कथा सुन रहा है ना?
1: हाँ हाँ देव, कहते रहिए।
0: संशय ग्रस्त माता ने बहकावे में आकर महागुरु की दी हुई भस्म को घूरे पर फेंक दिया और भूल गई, बांझ की बांझ बनी रही। उधर घूरे पर फेंका हुआ बीज भीतर ही भीतर अंकुरित होता रहा, और इस तरह 12 वर्ष व्यतीत हो गए। और 12 वर्ष पश्चात अपने वचन के अनुसार महायोगी मच्छिंद्रनाथ फिर द्वार पर थे, और उन्होंने पूछा,
2: माता तेरा पुत्र तो अब बड़ा हो गया होगा, दिखाओगी नहीं मुझे? क्या भस्म निष्फल हुई, संतान हुई नहीं, अथवा होकर भी नहीं गई?
3: महाराज, संशयवश अविश्वास के कारण मैंने भस्म का उपयोग ही नहीं किया। मैंने उसे घूरे पर फेंक दिया था।
2: माता मुझे वहां ले चल। हे हरिनारायण सुपुत्र, आपकी उत्पत्ति हो गई हो तो कूड़े से बाहर आइए।
4: राजा राजा आवाज लगा, बोल अलख अलख गोरख गोरख, बोल अलख अलख
2: अलख अलख गोरख गोरख अलख अलख।
0: कूड़े के ढेर से आवाज आई, मैं कूड़े के ढेर से दबा हूँ, महायोगी मुझे निकालो। अलख अलख गोरख गोरख
2: अलख अलख।
0: समझ रहा है ना भर्तरी, सत्य घूरे में दबा रहता है तब तक जब तक कोई विरल आत्मा महान आत्मा उसे खोज कर बाहर ना निकाले। यहां यही हो रहा था, घूरे के भीतर से आवाज आई। आवाज को सुनकर सबके सब गोबर कूड़ा हटाने में जुट गए। जब मलिनता स्वच्छ हुई तो वहां एक अत्यंत तेजस्वी रूपवान बालक निकला। महायोगी ने गाय के गोबर से उसकी उत्पत्ति का कारण उसका नामकरण किया गोरखनाथ।
2: गोरखनाथ चलो मेरे साथ।
3: प्रभु

0: ले जा रहे हैं इसे। सुना है पुत्र के बिना सद्गति नहीं होती।
1: माता मैं क्या करूं, वो जो ऊपर बैठा है, सबके ऊपर बैठा है, वही संसार के खिलौनों को रचता है। जिस निर्विकार भाव से वो उसे रचता है, उसी निर्ममता से उसे तोड़ भी देता है। मैं भी एक खिलौना हूं और तू भी। विधाता ने तेरे भाग में पुत्र का सुख नहीं लिखा माता, पर तू मान ले कि तू ही गोरखनाथ की माता है।
2: आवेश में आकर योगी शंगी को लगातार बजाता है।
3: बाबा मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ को संग लेकर निकल गए। राजा भर्तरी, गुरु के जन्म की कथा पूरी हुई।
4: किंतु कथा तो अभी शेष है महाराज। कथा तब पूरी मानी जाती है जब श्रोता के संदेहों का समाधान हो जाए। और
3: राजा, तू सुशिक्षित है, विद्वान है, राजा को होना भी चाहिए। मैं ठहरा अनपढ़ मूढ़, उतना ही जानता हूं जितना

औंघड़ सोता रहा, भरथरी जाग रहे थे। और फिर रात भर की नहाई हुई उषा ने पूरब में अपने रक्ताभ कीले वस्त्र सूखने के लिए लटका दिए।

0: गोरख गोरख भरतरी, तू सो नहीं पाया रात भर? ये ले सिंगी और अलसाए वृक्षों, बैलों, घास, दुर्वा, उड़ने चलने सरकने वाले सभी जीवों को चेतन कर दे। फूंक मार इस सिंगी को और बोल अलख गोरख गोरख। जगत को जगाना है और संसार के नियम भय से मुक्त नहीं हो पाया, फिर भी बजा, फूंक मार दे सिंगी में, बंधन तभी छूटेंगे, बजा।
1: जंगल जाग उठा, जैसे श्रृंगी का स्वर एक आह्वान हो, जागरण का अभियान।

0: आगे एक वन नदी पड़ी। यौवन में उफन कर बहती हुई वर्षा के जल से पुलावित ऐसी नदी बहुत तीव्र होती है। वो अभी प्रहर भर ही चले होंगे। भरथरी को चलने में उतना कष्ट न था, किंतु जब तलवों के नीचे कोई नोकीली वस्तु आ जाती तो व्रणों की पुरानी पीर उभर आती। पंख और फिसलन तो थी ही, जीवन में कुछ ना कुछ प्रतिकूल होता ही है। सर्वदा सब कुछ अनुकूल नहीं होता। नदी ने भरथरी और औंघड़ का मार्ग रोक दिया था।
1: अब क्या जोगी?
2: केवल प्रतीक्षा। यदि पानी नहीं बरसा तो नदी पहर भर में पार जाने योग्य हो जाएगी।
1: तब तक क्या करेंगे?
2: कहा ना, प्रतीक्षा, केवल प्रतीक्षा। कभी कभी मनुष्य के हाथ में केवल प्रतीक्षा रह जाती। ये जीवन का क्षयक है राजा भर्तरी।
3: गोरख गोरख अलख अलख

0: अभी आप महेश कटारे द्वारा लिखे उपन्यास कामिनी काय कांतारे की रेडियो नाट्य प्रस्तुति का 10वां भाग सुन रहे थे। रूपांतरकार थे प्रोफेसर प्रकाश दीक्षित। कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार शीलू अस्थाना, भर्तृहरि अरविंद बिलगैया, सरस्वती कीर्ति कुलश्रेष्ठ, मच्छेंद्रनाथ अब्दुल रजाक सिद्दीकी।
1: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से मैं कामिनी काय कांतारे धारावाहिक की 10वीं कड़ी। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है और अब पेश है इस घंटे की खास खबरें।

तेरी हर बात को हर बात पर रखा मैंने, एक तू है कि मुझसे बात नहीं करता। हर सांस पे तेरी इबादत की मैंने, एक तेरी तस्वीर को दिल में बसा कर रखा। कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता बहनों का कार्यक्रम के आज के अंक में स्वागत है। मैं अर्चना।

ये चल रही प्रमुख योजनाएं जैसे लाडली बहना योजना, उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, बालिकाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह योजना बहुत लोकप्रिय है। इस योजना में बालिका के जन्म पंजीयन से लेकर उसकी पढ़ाई और 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर एक मुश्त राशि उच्च शिक्षा हेतु दी जाती है। अब मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, यह योजना मुख्य रूप से पीड़ित और कठिन परिस्थितियों वाली महिलाओं के लिए है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्थायी कौशल प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं माताओं को पोषण के लिए मदद करती है। उज्ज्वला योजना, घरेलू गैस ईंधन उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। आजीविका मिशन और स्वयं सहायता समूह के लिए प्रोत्साहन हेतु ग्रामीण महिलाओं का छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। बहनों, चर्चा के साथ साथ गीत संगीत का आनंद भी जरूरी है, तो लीजिए सुनिए दिल है कि मानता नहीं फिल्म का ये गीत।

0: मन रोमांचित हो उठता है। ऐसे मौसम में कई लोग पिकनिक मनाने ज्यादातर जंगल, पहाड़ों और नदी तालाब के आसपास की जगहों को चुना करते हैं। बारिश के मौसम में नदी तालाब भरे रहते हैं और इनमें नहाना या पानी में उतरना खतरे से खाली नहीं होता। बहनों, 25 जुलाई को हम विश्व डूबने से बचाव दिवस के रूप में मनाते हैं। यह दिन पानी में डूबने से होने वाली मौतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को सुरक्षित रखने के तरीके सिखाने के लिए हर साल मनाया जाता है। बहनों, आज हमारे साथ हैं सुषमा पांडे जी, जो एक पत्रकार भी हैं और समाज सेविका भी। क्योंकि हम डूबने से बचाव दिवस को मना रहे हैं, तो इसी विषय पर हम इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। सुषमा जी, नमस्कार। सुषमा जी, आप हमारे युवाओं को इस विषय में क्या कहना चाहती हैं?
1: जी नमस्कार अर्चना जी, आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है और निश्चित तौर पे न सिर्फ युवाओं को बल्कि हम सभी को जागरूक होना चाहिए इसके प्रति, ताकि असमय किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो। रही पानी में डूबने से बचाव के कारण, तो जब भी हम कहीं घूमने निकले, क्योंकि मौसम सुहाना है, बारिश का मौसम है, लोग घूमने जरूर निकलते हैं, ऐसे में सबसे पहले हमें खुद को देखना है कि क्या हमें तैरना आता है, और अगर तैरना नहीं आता है और यदि आप घूमने जा रहे हैं, तो ऐसे पानी के स्रोतों के पास बिल्कुल ना जाएं जो काफी गहरे हैं और आप उनसे बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। दूसरी बात कि यदि आपको पानी में तैरना आता भी है, बावजूद इसके आप अगर घूमने जा रहे हैं तो पानी के किसी भी स्रोत की इतनी पास ना खड़े हों कि मिट्टी गीली होने की वजह से धस जाए और आप पानी में चले जाएं, या फिर वहाँ काई लगी हो, फिसल के आप चले जाएं, या फिर आजकल सेल्फी वगैरह का बड़ा ट्रेंड है, तो आप इन ट्रेंडिंग चीजों में अपने आप को बिल्कुल इतना डुबो दें कि आपको ये ख्याल ना रहे और आप अनहोनी का शिकार हो जाएं। तो ये तो रही अपने आप को सचेत करने की बात। कई बारी हम घूमने पूरी फैमिली के साथ भी जाते हैं और नौका विहार करते हैं, ऐसे में भी हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना होता है। जैसे हम किसी स्टीमर में जा रहे हैं, नाव में घूमने जा रहे हैं, तो इस दौरान हम ध्यान रखें कि मौसम कैसा है। सबसे पहले तो मौसम को ध्यान दें और उसके बाद हम उस नौका को देखें कि वो पर्याप्त रूप से तैयार है नौका विहार के लिए, उसमें लाइफ सेफ्टी के सारे इंतजामात हैं या नहीं है, और आसपास वहां पर गोताखोरों की प्रॉपर व्यवस्था है या नहीं है, उस नौका की क्षमता कितनी है, और साथ ही अगर कोई ऐसी घटना हो गई है जब अभिभावक साथ में है और कोई बच्चा डूब गया है, तो सबसे पहले तो ये है कि जो बाहर है, जोर से चिल्लाने की, लोगों को इकट्ठा करने की, या जो उसमें से तैरना जानता हो वो जाके उस बच्चे को बचाए, और डूब रहे व्यक्ति को भी इस बात का ख्याल रखना है कि वो अगर जरा भी उसे समय मिला है, क्योंकि कई बारी पानी में गिरने से चोट लगने के कारण अचेत हो जाता है इंसान और उसकी डेथ हो जाती है, और हम कहते हैं कि डूबने से मौत हुई, लेकिन होता यह है कि उसकी हेड इंजरी या नाक पे चोट लगना या कनपट्टी पर चोट लगने के कारण ऐसा होता है। तो डूब रहे व्यक्ति को अपने आप को ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले तैयार रखना है कि वो घबराए नहीं और हाथ या पैर चलाते रहे, और मुंह से सांस लेने की बजाय थोड़ी भी सांस अगर उनको लेना है तो एक लंबी सांस खींच के अपने अंदर स्टोर करने की जरूरत होती है, ताकि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा तो वो डूबेगी नहीं बल्कि उतराएगी। सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, यही मेरी मनोकामना है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। निश्चित ही हमारे युवा और युवा के साथ साथ सभी लोग इस बात को सुनकर सचेत रहे।
0: बहनों, बारिश का मौसम तो है ही, और इस मौसम में दालों की चीजें खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती हैं। तो चलिए मिक्स दाल से बना व्यंजन आज बनाते हैं। दाल चाहिए एक पाव उड़द की दाल, एक पाव मूंग की दाल और एक पाव मसूर की दाल, दो पाव चने की दाल, चार प्रकार की दालें, और दालों में छिलका नहीं होना चाहिए। सभी दालों को भिगो दीजिए। अच्छी तरह फूल जाने के बाद सभी दालों का पेस्ट बना लीजिए। पेस्ट पतला नहीं, गाढ़ा होना चाहिए। इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती, लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्च पिसी हुई मिला लीजिए, और स्वाद अनुसार नमक मिला लीजिए, और इसे बढ़िया

से फेट के बढ़िया स्मूथ पेस्ट बना लीजिए और ढोकला प्लेट में तेल से ग्रीस करके इसमें पतला सा फैलाकर भाप में पका लीजिए। पक जाने पर इसे अपने मन पसंद आकार में प्लेट से अलग कर लीजिए और इसे आप तल के भी खा सकते हैं, भाप में पकाया हुआ भी खा सकते हैं और इसका उपयोग आप कढ़ी या ग्रेवी बनाकर सब्जी भी बना सकते हैं। टमाटर की हरी चटनी या आम पाउडर की खट्टी मीठी चटनी के साथ लाजवाब स्वाद का आनंद भी ले सकते हैं और इसे गर्मा गर्म चाय के साथ भी खा सकते हैं। बढ़िया चटपटा स्वाद रहता है बहनों इसका। बहनों अब कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव, बहनों फिर मुलाकात होगी। इस वादे के साथ स्वीकार कीजिए अर्चना शुक्ला का नमस्कार।

और अब एक सूचना, आकाशवाणी से प्रसारण हेतु कार्यक्रम प्रस्ताव आमंत्रित करने की सूचना। प्रसार भारती आकाशवाणी पर प्रसारण के लिए रेडियो कार्यक्रमों के सोर्सिंग हेतु पात्र प्रोडक्शन हाउस निर्माता अधिकार स्वामी एग्रीगेटर कंटेंट क्रिएटर्स को आमंत्रित करता है। यह कार्यक्रम सोर्सिंग राजस्व साझाकरण और रेवेन्यू शेयरिंग प्रायोजित अथवा स्पॉन्सर्ड निःशुल्क या ग्रेटिंग आधार पर किया जाएगा। यह सब प्रसार भारती कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए संशोधनों आदेश के अनुरूप होगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि प्रस्ताव जमा करने पहले वे कंटेंट सोर्सिंग नीति 2024 के प्रावधानों तथा समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देश आदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। सभी दस्तावेज प्रसार भारती और आकाशवाणी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। सूचना समाप्त हुई।

यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुनेंगे ललिता सिंह और साथियों के स्वर में कलश गीत।

इस गीत के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम यही समाप्त हुआ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान था। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए आप सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान है। पहले सुनिए अहमद रजा के स्वर में ये गजल।

0: सवेरा बनारस का,
1: शाम अवध की,
0: वादियां हिमालय की,
1: क्या बात है।
0: और इन सब के साथ शान हो मालवा की,
1: तो यहाँ की सुबह और रातें किसी से कम नहीं।
0: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: सुनते रहिए मालवा किसान, आकाशवाणी इंदौर।
1: मालवा की शान,
0: आकाशवाणी इंदौर से आप सुन रहे हैं सदाबहार फिल्मी गीत।
1: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।

0: हर डिसीजन लेने वालों के लिए मनप्पुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: प्लानिंग को बना सकते हैं और
2: इसके साथ ही अंतराल का समय हुआ पूरा। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

दूसरा आदमी इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, जिसके लिए आवाज़ थी लता मंगेशकर, किशोर कुमार की और मोहम्मद रफ़ी की, और गीतकार थे मजरू और संगीत था राजेश रोशन का।

ये गीत है फिल्म सत्ते पे सत्ता, जिसके लिए आवाज है आशा भोसले, दिलराज कौर और साथियों की। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीत है आर डी बर्मन का।

इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। बता दें कि इस विधेयक के मसौदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। बीती रात सोशल मीडिया पर एक वीडियो के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता के साथ उनका रिश्ता विश्वास और सहयोग पर आधारित है और ये जुड़ाव आगे भी लगातार मजबूत होता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश वो राज्य है जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 देश में सबसे पहले लागू की गई और पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 3 नए शासकीय विश्वविद्यालय प्रारंभ किए हैं।
1: हमारा प्रयास है हम सभी प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को संवेदनशील तरीके से लेते हैं, चाहे शिक्षक वर्ग का हो चाहे विद्यार्थी वर्ग का हो। उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति लागू करने वाला

0: और जनसभाएं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी आज दतिया जाएंगे। वे वहां कुछ जनसभाओं को संबोधित करेंगे। डॉक्टर यादव यहां पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और व्यापारिक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में दतिया के कई ग्रामीण क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। उधर कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी प्रचार की कमान संभाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड कल प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमतौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात करते हैं। वे देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखा करते हैं। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में इन दिनों मानसून पूरी तरीके से सक्रिय बना हुआ है। आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि करीब 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस बीच रायसेन से हमारे संवाददाता ने बताया है कि सेमरी नदी के तेज बहाव में बहे युवक का 3 दिन बाद शव मिला है। यहाँ 3 दिन से युवक के खोज के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला पंचायत सीईओ द्वारा कल जिले की ग्राम पंचायत तनोडिया, पिपलोन कला, मदकोटा और सुदवास में विभिन्न योजना के अंतर्गत चल रहे कार्यों का स्थल पर जाकर जायजा लिया गया। झाबुआ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने विकासखंड झाबुआ के ग्राम करडावद खुर्द और अमरपुरा में आयोजित ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण दिवस कार्यक्रमों का संयुक्त निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत आज कटनी जिला अस्पताल में एक विशेष स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। सिंगरौली नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर ने राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए शत प्रतिशत नोटिस तामील कर बड़े बकायेदारों से वसूली के निर्देश दिए हैं। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। आगे दीजिए नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। सरकार और सीजेपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंची। और क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। 1,00,000 से अधिक लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिले शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट हैं। ताजा रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ से संबंधित मामलों में 14 और लोगों की मौत हुई। इनमें चराईदेव में 7, शिवसागर में 6 और जोरहाट में 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 61 हो गई है। प्रमुख नदियां दीखो, दिसंग और धनसरी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इससे ऊपरी असम में बाढ़ की स्थिति और भी गंभीर हो गई है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। आपदा मोचन बल, जिला प्रशासन और अन्य एजेंसियां राहत सामग्री उपलब्ध कराने, फंसे हुए लोगों को निकालने और बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में लगी हुई है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित जिलों में राहत उपायों को तेज कर दिया गया है। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा

0: से टेलीफोन पर बातचीत कर बाढ़ की स्थिति की समीक्षा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें राहत पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशयों में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई के मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिणांतरी कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
3: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीप फेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र के बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह, जोशना।

0: चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
1: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1,00,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: प्रस्तुत है कृषि
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनते हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आपकी फरमाइश के लिए ये पहली फरमाइश भेजी है हमारे इन सभी श्रोता साथियों ने। और ये साथी हैं लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, दतरेंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, देवरी भाटापारा छत्तीसगढ़ से गन्नूलाल रजक, KR साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, और यहीं भाटापारा से ही दान सिंह रावत, दानू, पद्मिनी रावत, शुभम सौरभ रावत, इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म मैं हूं ना। इस फिल्म का ये गीत जिसके लिए आवाज़ है अभिजीत श्रेया घोषाल के, गीतकार हैं जावेद अख्तर, संगीत है अनु मलिक का।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है डब वाली हरियाणा से जेके बोकोलिया सुनीता संजय अनिल मीनू बोकोलिया, और ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरी वंदना भावना बिंदु गोलू सूरज, और ये साथी हैं आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना शर्मा योगेश शर्मा मैंडी शर्मा सौरभ शर्मा शाइना शर्मा और निवान शर्मा। आप सभी साथियों ने सुनना चाहा है बंटी और बबली का ये प्यारा सा गीत, जिसके लिए आवाज़ है सोनू निगम महालक्ष्मी अय्यर की, गीतकार हैं गुलजार और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका, वंश बत्ता और भाटापारा छतरी दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय। इन सभी साथियों ने सुनना चाहा है केके की आवाज़ में फिल्म वो लम्हे का ये गीत, जिसके लिए गीतकार है नीलेश मिश्रा और संगीत है प्रीतम का।

ये अगली फरमाइश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया, और ये हैं बिहार लोनी से नसीमुल इस्लाम इस्लाम और प्रकाशवीर राजपूत, डोंडी लहारा बलौत से कमलेश जयपुरिया, भिलाई से अनुश्री प्रदीप, पिंकी प्रमिला प्रदीप, रायगढ़ से लालचंद्र मिश्रा, नरेंद्र कुमार राम, और ये साथी हैं आज़ाद नगर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, मेहराज जहां। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है फिल्म धूम 2 का ये गीत, जिसके लिए आवाज़ है सुखबीर सोहम चक्रवर्ती, और साथियों के गीतकार है समीर, संगीत है प्रीतम का।

आपकी फरमाइश के लिए अगली फरमाइश है, खंडवा ग्राम जसवाड़ी से दुर्गेश नागनपुरे वंदना नागनपुरे, और उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाणकर, सरिता गवाणकर, सिद्धांत, प्रिंस एकांश गवाणकर, शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली, श्वेता, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर। इन सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है कुछ ना कहो, उस फिल्म का ये गीत जिसके लिए आवाज़ है उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति की, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत है शंकर एहसान लॉय का।

0: इसके साथ ही कार्यक्रम आपकी फरमाइश यहीं समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें।
1: पेश है इस घंटे की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस विधेयक के मसौदे को कल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। अभी अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेजा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है। आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं। लद्दाख में 27वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय समारोह आज द्रास में लामोचेन व्यू पॉइंट पर युद्ध स्मरण कार्यक्रम के साथ शुरू हुआ। इस समारोह में 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राज्य विधानसभा परिसर में आज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोविंद नारायण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और गोविंद नारायण सिंह के परिवारजन मौजूद रहे। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। और भारत और जिम्बाब्वे के बीच आज 3 मैच की श्रृंखला का दूसरा T20 इंटरनेशनल मैच हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:30 बजे शुरू होगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब आपको बता दें आज शाम की सभा के कार्यक्रमों के बारे में। शाम 5 बजे सुनिए कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रीवा का योगदान होगा। शाम 5:33 पर, 6 बजे और रात 8:30 पर सुनिए फिल्म संगीत। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान प्रायोजन विकास दर्शन आप सुनेंगे 7:45 पर। रात 8 बजे सुनिए इस सप्ताह संसद में, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम होगा 8:15 पर।

विज्ञान भारती की कार्यक्रम होगा आज रात 9:30 पर, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और रात 10 बजे सुनिए संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे अदिति बैनर्जी से ठुमरी दादरा गायन। और 7:21 पर सुनिए आकाशवाणी भोपाल द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम ग्राम सभा।

ये थी जानकारी हमारे शाम के सभा के कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 1593 किलो हर्ट्ज पर, डीडीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर, यह आकाशवाणी भोपाल है। 3:02 हुए हैं, हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारे आपसे फिर मुलाकात होगी, पर इस बीच डीटीएच पर हमारा प्रसारण जारी रहेगा।

0: आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो कहीं फ्लिक दीजिएगा। अभी कंसोल घड़ी में समय हो रहा है 4:21:40
1: ये अनाउंसर माइक टू है और अब लेफ्ट राइट पीछे प्लेयर और काट कर वो टेस्ट करेंगे।
2: समय का सही उपयोग। समय जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है, हो जाए तो वापस कमाए।

0: निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: टेस्टिंग फॉर्म स्टूडियो इज गोइंग ऑन। स्टूडियो माइक टेस्टिंग ले लीजिएगा।

0: हेलो कंट्रोल रूम, अभी दीवार नहीं, समय 4:24। हेलो कंट्रोल रूम, अभी दीवार घड़ी में समय हो रहा है 4:25।
1: थैंक यू।
0: विविध भारती के नंबर पर फोन लगा दीजिए। ऐसा हेलो फ्रेंड्स।

0: बहुत
1: थोड़ा
0: बढ़िया।
1: लेवल कम करिए, इस पे क्या है थोड़ा लेवल दिक्कत करता है,
0: हाँ
1: तो जो फोन का लेवल है वो 0-5 के बीच में रखें, थोड़ा
0: फोन का
1: कम करो
0: लेवल।
1: ना। हेलो
0: हाँ,
1: हेलो,
0: आ रही
1: अभी
0: है
1: मेरी रिटर्न आ रही है थोड़ी।
0: तुम्हारी आवाज़, रिटर्न आ रही है, एक सेकेंड।
1: हाँ, थोड़ा सा मतलब फोन का लेवल है ना, फोन वाला लेवल
0: अब ठीक
1: थोड़ा सा
0: है?

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के ठीक 5 बज रहे हैं, आरंभ हो गई है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। सांध्यकालीन सभा सुनने वाले सभी श्रोताओं का इस सभा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज का युववाणी कार्यक्रम किसी विशेष कार्यक्रम की वजह से निरस्त किया गया है, तो आइए सुनते हैं भजन।

0: लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी की आवाजों में। लता मंगेशकर और पंडित भीमसेन जोशी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे ये भजन।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें। चलो

0: मध्य प्रदेश की सभी शासकीय आईटीआई में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आईटीआई में उपलब्ध हैं रोजगार परक एवं कौशल आधारित विभिन्न ट्रेड्स, जो आपको रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। रजिस्ट्रेशन एवं प्रवेश संबंधी सहायता के लिए आज ही अपनी नजदीकी शासकीय आईटीआई में संपर्क कीजिए।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
3: बड़े अच्छे लगते हैं
4: क्या
3: ये धरती, ये नदिया, ये रैना
4: और
5: आकाशवाणी इंदौर। सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
6: अरे आप लोगों को मालूम पड़ा कि नहीं?
7: क्या
6: अब आकाशवाणी इंदौर पूरी दुनिया में सुना जा सकता है?
7: वो कैसे?
6: वो ऐसे कि अब आकाशवाणी इंदौर न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
7: पर सुनेंगे कैसे?
6: इसके लिए अपने मोबाइल फोन पर जाकर डाउनलोड कीजिए न्यूज ऑन AIR ऐप और लाइव रेडियो पर जाकर सुनिए आकाशवाणी इंदौर के कार्यक्रम।
7: तो सुनते रहिए मालवा की शान, आकाशवाणी इंदौर।
8: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। 5:10 होने को है, थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर आज सुनते हैं करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी हासिल किया। हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
1: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
2: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगाधरी के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहां पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहां पर आर्मी का एक सेंटर है, उसमें से

करते थे, वो अकाउंट्स में थे, सीडीए में। उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दो दूसरी क्लास से उनके पास रहता था, उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के कि यार नानी के पास ज्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो उस रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दी। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यू टर्न था, और उस पहले यू टर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई डीपी सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते। जहां हो, जैसे हो, वहां पर आपको अपने परिश्रम से, अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यू टर्न था, इसने मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर, तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है।

0: बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो। पहले एनडीए में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, एनडीए में 3 बार अटेम्प्ट किया फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी शारीरिक रूप से और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया। लेकिन वहां पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो, और क्योंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में सीडीएस की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही है। फिर सीडीएस में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाय फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला? क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था, या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में।
0: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया, 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी, तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज यंग ऑफिसर्स को फिर कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा तो तब तक मेरी पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या टीवी भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड थे तो वहां पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही, उन दिनों 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है, हम तो तैयार थे सबके सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थी और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़े आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे।
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मश्को, उस क्षेत्र में आके उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में, वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था। उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी, तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं एक नूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है, तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था। लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते, उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों

0: लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़कर बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था वो सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन। लेकिन हम डटे हुए थे क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, और उसकी सुबह कैसी हुई थी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था?
0: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसीओ साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी, और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी। लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन, और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को। मेरे उठने पे बैठने पे नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई। दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था, और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता है उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा आगे गिरेगा कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई। वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर। 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था, तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहूलुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई, तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूं, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है, जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी, अगर सारी उम्र तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका अफसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया, रास्ते में वो स्लिप भी हुआ, लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार

0: से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे आरएमओ, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ। लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डियक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाओ इसे बोला गया। लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल रजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाजा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच में, एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे। तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहां से वो कैसे बचा के ले आए वापिस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पांव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं, उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था वो कर्नल राजेंद्र सिंह, उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं उनके साथ कनेक्ट हुआ, तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी, मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन, एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला, तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला, और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं। परेशान करते होंगे आज भी?
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं, 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंकरना आसान है, जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसे जगह हैं, और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही, मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहां काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए, वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने की बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूंगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का, क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही

0: मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने को बाहर टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूं कि पहला जो विचार था उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूं, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉयस विचार था। क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है। ये एक चैलेंज है, शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। वो शायद भगवान की दी हुई सोच थी और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहां पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं मेजर साहब। जब आप 1 साल से ज्यादा समय तक अस्पताल में रहे, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
0: तकरीबन 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था, हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। हम किसी की टांग नहीं थी, किसी का आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी के आंख और हाथ दोनों नहीं थे, लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमरेडरी ने एक दूसरे का सहारा बन के कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम है। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं, फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था, लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूं तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूं, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माई केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीजों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीजों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद 21 किलोमीटर भाग के आया। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो
1: जी।
0: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, एनजीओ है द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है
1: जी,
0: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा, जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें से बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खासकर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी
1: जी,
0: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुना अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो बदलाव आया और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
1: बहुत ज्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
0: तीन बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ डीपी, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूं तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए। तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया, और वहां से मेरे को ब्लेड रनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड रनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे, तो 2018 को सेना ने एयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था, और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ द सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है, उन्होंने मुझे एक महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं, उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिये, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल जाए, उससे पहले नहीं, उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं, और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए, और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद, जय हिंद, सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के

अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.eirnews@gmail.com।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 5:40 होने को हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं वारिस फिल्म का गीत। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं। संगीत उत्तम सिंह का है और गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने। लीजिए सुनिए।

0: मेडिकल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। श्रोताओं, बारिश की बूंदें जब धरती को छूती हैं तो सिर्फ मौसम ही नहीं दिल भी भीग जाते हैं। हर बुहार अपने साथ प्यार, यादें और अनकहे जज्बात लेकर आती है। आइए इसी भीगे भीगे एहसास को महसूस करते हैं इस खूबसूरत गीत के साथ, जो हमने लिया है चांदनी फिल्म से। आशा भोसले और विनोद राठौर की आवाजें हैं। आनंद बख्शी के गीत को संगीत से सजाया है शिव हरि ने। लीजिए सुनिए।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, सावन की रिमझिम फुहारें, ठंडी हवाओं का स्पर्श और दिल में उठती मीठी सी हलचल, यही तो है बारिश का जादू। तो आइए इस जादू को और भी यादगार बनाते हैं और आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, जो हमने लिया है ऐश किंग की आवाज में। फिल्म का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, संगीत और गीत है तनिष्क बागची का। नीचे सुनिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गुरु फिल्म का गीत श्रेया घोषाल, उदय मजुमदार और साथियों की आवाज़ों में। गुलजार का गीत था और संगीत था एआर रहमान का। शाम के 6 बज रहे हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विकसित होता भारत।
1: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत विकसित होता भारत।
1: विकसित होता भारत कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज आपके साथ हूँ मैं प्रीति जोशी, सभी को मेरा नमस्कार। श्रोताओं, विकसित भारत विजन 2047 भारत सरकार का एक ऐसा सपना, एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य भारत को एक विकसित, समृद्ध और समावेशी राष्ट्र बनाना है और एक ऐसे भविष्य की कल्पना जिसमें भारत न केवल आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित हो बल्कि एक सुरक्षित और स्थिर राष्ट्र भी बने। पुलिस की भूमिका इस विजन में बेहद अहम है। सन 2047 तक पुलिस विभाग को एक ऐसे आधुनिक और प्रोफेशनल बल के रूप में विकसित होना है जो न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखेगी बल्कि टेक्नोलॉजी और डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करके अपराधों को रोकने और समझने में भी सक्षम होगी। जहां हर नागरिक सुरक्षित हो, हर सपना पूरा हो और हर एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। सन 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य को हम जरूर हासिल करेंगे और अपनी ताकत दुनिया को

0: श्रोताओं, विकसित भारत विजन 2047 में पुलिस प्रशासन की सुरक्षित राष्ट्र निर्माण में भूमिका, इस विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं श्री अजय पंडित जी। आप डीएसपी सुरक्षा के पद पर माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में पदस्थ हैं। अजय जी, विकसित होता भारत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सभी को मेरा नमस्कार,
2: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया इस काम के लिए।
0: अजय जी, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि विकसित भारत विजन 2047 के संदर्भ में पुलिस प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होगी?
2: वैसे तो पुलिस की मुख्य भूमिका सामाजिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, वीआईपी सुरक्षा में है, लेकिन बदलते परिवेश के साथ, जिसमें राजनीतिक परिवेश है, सामाजिक परिवेश है, ये सब बदलता जा रहा है और पिछले एक दशक में तो इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आया है, तो उसी के मुताबिक पुलिस विभाग में भी काफी तेजी से परिवर्तन आया है। जहां तक मुझे याद है कि कंप्यूटर का उपयोग शुरू किया गया पुलिस में सन 2000-2001 के बाद से कंप्यूटर का भी उपयोग शुरू हुआ, सीसीटीएनएस के माध्यम से ऑनलाइन एफआईआर वगैरह सारी चीजें हुई है। उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस की वेबसाइट भी बनी गई है जिसमें पब्लिक अपीयरेंस भी है, पब्लिक के लिए भी सुविधाएं हैं कि वो वहां पर अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकती हैं, पुलिस के बारे में विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध रहती है जो कि कोई भी व्यक्ति देख सकता है मध्य प्रदेश पुलिस के बारे में। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वर्तमान परिवेश में जहां सोशल मीडिया और राजनीतिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन जो हुआ है उसके साथ पुलिस में भी उसी के अनुरूप परिवर्तन हुआ है। साथ ही आप देखेंगे कि साइबर सेल की स्थापना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहलाएगी। ज्यादातर अपराध जो है आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर अपराध हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें नई नई निकल के आ रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में काम करने वाला एक विशेष विभाग है जो कि साइबर सेल के नाम से राज्य साइबर सेल, और जिलों में भी जो है पुलिस के अपने स्तर जिला स्तर पर भी उनकी जो है साइबर सेल होती है, तो वहां पर जाकर आप साइबर अपराध से संबंधित जो भी फ्रॉड हुआ उससे संबंधित कंप्लेंट कराएंगे तो वो पूरी से मदद करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसको डील किया जा रहा है। और करोड़ों रुपए लोगों के वापस हो चुके हैं अभी तक, खाली इंदौर पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, जहां तक वहां पे क्राइम ब्रांच में अधिकारी हैं काम करने वाले और स्टेट साइबर सेल में भी हैं, वो लोग बहुत अच्छी काम करते हैं। और आगे भी जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस में बिल्कुल निश्चित रूप से नवाचार हमेशा चालू है और नए नए साधनों के उपयोग अपने अनुसंधान में भी हो रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा में भी हो रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे सामने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा रहता है हमेशा। जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है तो उसमें भी जो है पुलिस की आंतरिक सुरक्षा के अंदर बहुत भूमिका रहती है। सेना तो बाहर बाउंड्री पे रहती है, उन्हें तो पता है कि अब शत्रु कौन है, लेकिन पुलिस को ये चीज पता नहीं होती है, उन्हें ढूंढना होता है और अपने सोर्सेस डेवलप करके वहां अपराधी तक पहुंच के और अपराध का डिटेक्शन करना होता है, अपराधी को कानून के समक्ष पेश करना होता है। वीआईपी जो होते हैं उनको भी सुरक्षा में खतरा होता है, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके साथ में लाखों लोग जुड़े होते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा जो है पुलिस के ऊपर ही है, स्टेट पुलिस के ऊपर ही रहती है।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही है। हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि सुरक्षित राष्ट्र निर्माण में आम नागरिक और पुलिस, इनके बीच का जो बेहतर सहयोग है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है, उनके सहयोग को हम कैसे बढ़ा सकते हैं?
2: जैसा कि मैंने बताया कि नए परिवेश के अनुसार जो है पुलिस की भूमिका भी बदल रही है। आजादी के समय पहले, आजादी के पूर्व जो है पुलिस, बाद में जब परिवेश बदला है तो परिवेश के अनुसार पुलिस भी बदली है, क्योंकि पुलिस भी इसी समाज का एक हिस्सा है, अलग से कोई परिवेश नहीं है, केवल यूनिफॉर्म पहनते हैं और अनुशासित रहते हैं, इस वजह से वो अलग नजर आते हैं। और आप देखेंगे कि हजारों में पुलिस वाला भी यूनिफॉर्म पहना है तो नजर आता है।
0: बिल्कुल।
2: जहां तक भूमिका की बात है तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण मैं दूंगा आपको, कम्युनिटी पुलिसिंग जो एक कंसेप्ट लागू हुआ था 2001-2002 के आसपास लागू हुआ था, उसमें भी सबसे पहला जो कम्युनिटी पुलिसिंग का की शुरुआत इंदौर में ही हुई थी। उसके बाद से इसमें काफी विस्तार हुआ है। कम्युनिटी पुलिसिंग का मतलब यह है कि पुलिस जनता से अपने प्रति जो उनके भाव बदले और जनता से कानून व्यवस्था में उनका सहयोग लें और विशेष परिस्थितियों में भी जनता का सहयोग लें। जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह चौराहों पे इंदौर में ट्रैफिक में ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं, सिविलियंस होते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस के साथ में मदद करते हैं, तो वो कम्युनिटी पुलिसिंग का ही एक हिस्सा है। इसी तरह से शहरी क्षेत्र में नगर सुरक्षा समिति होती है और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सुरक्षा समितियां होती है जो कि पुलिस के साथ सहयोग करती है और कानून व्यवस्था में सहयोग करती है, अपराध नियंत्रण में भी सहयोग करती है, और यदि कहा कहीं और भी जैसे आवश्यकता पुलिस को पड़ती है संसाधन के रूप में भी, तो संसाधन उसमें भी सहयोग करती है।
0: जी बहुत बेहतर, आपने बहुत ही सही जानकारी आपने दी है। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा हैं आजकल अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, नशे की ओर बढ़ रहे हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए, उन्हें इन सभी चीजों से दूर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पुलिस विभाग कौन कौन से ऐसे प्रयास कर रहा है?
2: इस मामले में वर्तमान डीजीपी साहब ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं
0: जी,
2: पहले भी हुए हैं प्रयास, ऐसा नहीं है
0: जी
2: नहीं हुए, पर अभी भी हो रहे हैं प्रयास। और अभी आपने सुना होगा आपके मोबाइल में भी रिंगटोन आती है जब आप कहीं पुलिस को कॉल करते हैं
0: जी,
2: तो नशे से दूरी है जरूरी एक अभियान चला था, तो वो उससे भी जो है जनता के अंदर जो है नशे के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान के रूप में उसका उपयोग किया गया है। इसी तरह से और भी अलग अलग समय में कार्रवाइयां चलती रहती है, नशा मुक्ति केंद्र बनाए गए हैं, सेमिनारों के माध्यम से न केवल पुलिस विभाग में बल्कि ऐसे जो नशे से ग्रस्त लोग हैं उन लोगों को भी सामाजिक रूप से इकट्ठा करके उनको भी जागरूकता के अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाते हैं, उसके दुष्परिणामों से अवगत कराया जाता है और उससे बचे हुए लोग जो वापस पुनः मुख्यधारा में आए हैं उनसे परिचित कराया जाता है कि ये देखो मुख्यधारा में आकर इनमें कितना परिवर्तन आ गया है
0: जी।
2: तो ये तो सब प्रक्रिया पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग का एक हिस्सा है।
0: बिल्कुल, आपने ये सही बोला कि कम्युनिटी जो पुलिसिंग है वो अपना कार्य कर रही है, तो क्या विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है?
2: जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये पुलिस अपने काम के अतिरिक्त काम में कर रही है, मतलब पुलिस वैसे 24 घंटे ऑन ड्यूटी कहलाती है लेकिन उसके बाद भी ये अपनी जिम्मेदारी समझकर पुलिस विभाग के सभी जिलों में सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक में जहां भी होता है तो ये अभियान चलते हैं, इसमें स्थानीय प्रशासन का भी और स्थानीय लोगों का भी, और जैसा मैंने बताया ग्राम रक्षा समिति और नगर सुरक्षा समिति इनका भी सहयोग लिया जाता है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको को प्रेरित किया जाता है कि वो नशे से दूर रहे।
0: जी आजकल महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा भी बहुत जरूरी हो गई है, तो इन्हें सुनिश्चित करने के लिए जो आपका विभाग है वो किस तरह के विशेष प्रयास कर रहा है?
2: महिला थानों का आपने नाम सुना ही होगा
0: जी,
2: साथ ही जो महिलाओं के लिए 33% स्थान सुरक्षित है विभाग में भर्ती के लिए, तो आप आजकल आप देखते होंगे कि हर जगह
0: जी
2: इवन महिला थाना ना भी है तब वहां भी जो है आपने डेस्क पे देखा होगा थाने पे जाके या कमिश्नर कार्यालय में देखा होगा या किसी भी स्थानीय स्तर पर थाने पे देखा होगा, वहां पर महिलाओं की नियुक्ति है, महिलाओं की सुरक्षा में भी जो है अपना रोल अदा कर रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो परिवार परामर्श केंद्र जो है वो कम्युनिटी पुलिसिंग का एक हिस्से के रूप में काम करता है, उसमें महिला परामर्शदात्रियों की सहायता ली जाती है, उनको प्रशिक्षित किया जाता है, उसके बाद में वो सोशल वर्कर्स और महिला परामर्शदात्रियां जो है वो महिलाओं को और उसमें सहयोग करती हैं कि उनके परिवारों के जो है जो भी डिस्प्यूट है वो बगैर किसी कायमी के वो सुधर जाए और वो नॉर्मलाइज हो जाए।
0: बिल्कुल सही आपने कहा कि इस तरह से प्रयास बहुत ही अच्छे हो रहे हैं। भविष्य की चुनौतियां, जैसे कि आपने बताया था कि साइबर अपराध बहुत बढ़ रहे हैं, डिजिटल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, तो उनसे निपटने के लिए क्या विशेष तैयारी आप कर रहे हैं?
2: मैंने बताया कि साइबर सेल वहां पर हर एक जिलों में और संभाग
0: तो ये किस तरह से साइबर सेल काम करते हैं?
2: आपको शिकायत जो है आपकी लिखित शिकायत जाती है, शिकायत का एनालिसिस किया जाता है, आपके जिस नंबर से आपको साथ में फ्रॉड हुआ है उन नंबरों की जानकारी ली जाती है, उनका उनको इंटरसेप्शन में डाल के जैसे भी प्रक्रिया होती है तो ऐसी प्रक्रिया स्पष्ट प्रक्रिया है उसकी, ट्रांसपेरेंट उसमें सारे काम होते हैं और इसीलिए इसमें सफलता मिलती है क्योंकि सशक्त तरीके से इसको काम किया जाता है। इसमें मोबाइल की जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी भी मदद ली जाती है और प्लस हमारा भी जो अपना पुलिस विभाग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी उपयोग करते हैं और टेक्निकल सपोर्ट रहता है, इसमें मदद से ये काम किया जाता है।
0: आजकल डिजिटल अरेस्ट बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है, तो ये किस तरह से होता है और लोगों को कैसे सतर्क इससे रहना चाहिए?
2: डिजिटल अरेस्ट का तो सीधा सा मतलब है कि वो पुलिस की या कस्टम की या किसी भी विभाग की लैंग्वेज में बात करते हैं और अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं, इसमें डर जाते हैं, तो ऐसे कॉल जो कि आपसे ओटीपी मांग रहे हैं, जो जो कि आपसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने का बोल

0: होना चाहिए, क्या कहेंगे आप?
1: देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरा 2 वर्ष का यूनाइटेड नेशंस का एक्सपीरियंस है, इंटरनेशनल पुलिस में मैंने काम किया है। मैंने पाया है कि युद्धग्रस्त क्षेत्र में भी लोग कानून का पालन करने में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं और पुलिस का सहयोग करते हैं। हमारे यहाँ भी जैसे आपने देखा कि इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर बनाने में जनता की ही अहम भूमिका रही है
0: जी।
1: उसमें प्रशासन ने अपनी तरफ से एफर्ट लगाए, लेकिन बिना जनता के सहयोग की ये काम नहीं हो सकता
0: जी।
1: ऐसे ही पुलिस भी जो है अपने आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करती है, वो भी आधुनिक मानसिकता के साथ। इनके पुलिस विभाग के अंदर भी जो है भारी से भारी मतलब रेगुलर प्रशिक्षण चालू है हर क्षेत्र को लेकर, और विभागीय प्रशिक्षण होते हैं और संवेदनशीलता साथ में काम करती है मध्य प्रदेश पुलिस। मैंने आपको बता दूं कि मेरा अनुभव रहा है बाहर का भी और यहाँ मध्य प्रदेश का भी, तो बहुत संवेदनशील पुलिस है। इसमें जनता जितना सहयोग करेगी उतना उनकी जीवन आसान होंगे और आगे उनकी खुद की भी प्रोग्रेस अच्छी होगी, क्योंकि जब कानून का पालन करते हैं आप तो अनावश्यक रूप से आपको कोई परेशान नहीं करता।
0: बिल्कुल,
1: जैसे सामान्य तौर पर आप सड़क पर चल रहे हैं और उटपटान तरीके से आप खतरनाक तरीके से लोगों के जीवन को खतरे में डालते हुए आप वाहन चलाते हैं या लेन डिसिप्लिन नहीं कायम रखते हैं, तो वहां आपको अपने गंतव्य पर पहुंचने में देरी होती है।
0: बिल्कुल,
1: ट्रैफिक जाम की समस्या होती है। उस समस्या से बचने का एकमात्र तरीका है केवल आप कानून का पालन करिए, यातायात नियमों का पालन करिए। इसी तरीके से पुलिस यदि किसी प्रकार का सहयोग आवश्यक है, पुलिस को कोई जानकारी आपके पास है और पुलिस उस जानकारी के लिए घूम रही है, तो आप आगे आकर पुलिस को वो सब जानकारी उपलब्ध कराएं। नगर सुरक्षा समिति और जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं और दूसरे जो एनजीओ हैं, इन सब के मिले जुले प्रयास से हम विकसित भारत की ओर बहुत अच्छे से अग्रसर हो सकते हैं। इसमें समाज की बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि पुलिस समाज का ही एक अंग है। पुलिस कोई अलग से उतरा हुआ विभाग नहीं है
0: जी। बिल्कुल,
1: समाज से ही लोग अपनी परीक्षा देते हैं, सिलेक्शन होता है, उनकी प्रशिक्षण होता है पूरा कि कैसे हमको काम करना है, पब्लिक डीलिंग कैसे करना है परिस्थिति के अनुसार। और आपने देखा भी होगा कि पुलिस ज्यादातर जगह पर, आपको अधिकतम अधिक से अधिक बता रहा हूं मैं, कि पुलिस अपने कार्य में दृढ़ लेकिन विनम्रतापूर्वक, वो चीज उनकी उनकी दो सिद्धांत में शामिल है, देशभक्ति और जनसेवा पुलिस का लोगो है, मध्य प्रदेश पुलिस का उसमें ध्येय वाक्य है, तो उसका पूरी तरह से पालन करने की कोशिश करते हैं, अधिक से अधिक अपने गुस्से पर नियंत्रण करते हैं, उसका भी प्रशिक्षण दिया जाता है, कर्टसी विद फर्मनेस, ये हमारा काम करने का तरीका है
0: जी। बहुत अच्छी बात आपने कही है कि इस तरीके से आप काम करते हैं। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि हम सभी मिलकर एक सुरक्षित, सशक्त और विकसित भारत का निर्माण कर सकें?
1: पुलिस का काम कानून व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा है। इस काम में जनता यदि जो बनाए गए नियम है और कानून है उसका पालन करेगी तो वो भी सुरक्षित और खुश रहेंगे, अपराध अपने आप नियंत्रित होंगे, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति बने उससे पहले ही हम शांत रहकर अपना काम करें और पुलिस और प्रशासन को सहयोग करें। जिस तरह से आपने इंदौर को नंबर 1 बना रखा है, उत्कृष्ट श्रेणी में डाल दिया है स्वच्छता के मामले में, उसी तरह से कानून के पालन में भी यदि आप सहयोग करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम लोग बहुत जल्दी और हर नागरिक अपना कर्तव्य पालन करने लगेगा। तो अटल जी ने एक बार जो प्रधानमंत्री बने थे पहली बार, कि यदि मेरा यही जनता से अपेक्षा है कि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करे, तो उसी तरह से मैं भी निवेदन कर सकता हूँ आपके माध्यम से कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, केवल अधिकारों की बात न करें, कर्तव्य भी है उनका भी पालन करें, तो हम लोग निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ जाएंगे।
0: बिल्कुल, जो 2047 में जो विकसित होने का जो सपना है भारत का, वो जरूर पूरा हो जाएगा। आप युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि आप एक पुलिस अधिकारी हैं, अगर कोई युवा इस फील्ड में आना चाहता है और देश सेवा में जुड़ना चाहता है तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप?
1: पुलिस विभाग का सबसे पहली आवश्यकता है अनुशासन
0: जी,
1: और दूसरी आवश्यकता है शारीरिक प्रवीणता, और तीसरी इसमें मुख्य आवश्यकताओं में बता रहा हूं मैं कि अनुशासन सबसे जरूरी है, शारीरिक प्रवीणता भी होनी चाहिए, फिजिकल फिटनेस जिसका बोलते हैं, और नॉलेज होना चाहिए। विभाग की ओर से परीक्षाएं आयोजित होती है समय समय पर, और परीक्षा की तैयारियों के लिए भी लोग बहुत मेहनत करते हैं, और जहां तक लिखित परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होते हैं तो फिर उनकी शारीरिक प्रवीणता परीक्षा होती है, इन सब चीजों की तैयारी करें। और पुलिस क्षेत्र में आने के पहले ये मन में रख लें कि हमें समाज के प्रति अपनी

0: ड्यूटीज निभानी है, और उसके अलावा ये कि अपना जो स्वार्थ है उसको एक तरफ रख के काम करना पड़ता है। यहाँ पे इंदौर शहर की बात करूँ तो इंदौर में बहुत अधिक काम करना पड़ता है पुलिस को, कई बार तो आपको सोने और खाने का भी समय नहीं मिलता है, ड्यूटीज बहुत ज्यादा है, और उस दौरान आपके अंदर एंग्जाइटी भी आती है, तो वो सब चीजों को मन में ध्यान रखकर आप यदि आप कर सकते हैं काम तभी विभाग में ज्वाइन करें, ताकि आप अपने आप को शांत रखकर जनता की सेवा करने में सक्षम हो सके।
1: बहुत अच्छा लग रहा है अजय जी आपसे बातचीत करके। विकसित भारत विजन 2047 में जो पुलिस प्रशासन की जो भूमिका है उसके बारे में आपने बहुत ही विस्तार से बताया है, और यकीनन जो हमारा पुलिस विभाग है वो हर पल हर समय हम लोगों के साथ है, और इंदौर शहर की जो सुरक्षा है उसके लिए भी आप हमेशा तैयार खड़े हैं।
0: आपसे एक अनुरोध करता हूं मैं
1: जी।
0: एक हमारा सीयूजी नंबर है, पुलिस विभाग ने एक पुलिस विभाग का क्लोज यूजर ग्रुप है मोबाइल का, आप उसमें भी कॉल करेंगे तो आपको एक रिंग टोन सुनाई देगी, तो वो भी आपको अंदाज लग जाएगा कि पुलिस किस स्तर तक जो है लोगों के लिए काम कर रही है, अलग अलग उसके लिए काम कर रही है।
1: यहाँ पे कुछ नंबर्स बता सकते हैं जो अगर कोई असुरक्षित है या किसी समस्या में फंस गया है तो वो तुरंत कॉल कर सके?
0: रिस्पॉन्स के रूप में 112 डायल है आजकल, पहले डायल 100 था, अभी 112 डायल है। दूरस्थ इलाकों में भी वो जाते हैं, अलग अलग पूरे मध्य प्रदेश में तैनात है उनकी गाड़ियां, और 112 पे आप डायल करें तुरंत आपको मदद मिलती है।
2: एक और बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंदौर पुलिस ने पुलिस बाल मित्र केंद्रों की स्थापना की थी, शुरुआत इसकी संयोगिता के स्थाने में हुई थी बहुत पहले, उसके बाद में RAPTC में मैं जब पदस्थ था तब इसकी शुरुआत वहाँ भी हुई थी, और उस समय इसका मुख्य उद्देश्य ही ये था कि जो झुग्गी बस्ती के रहवासी लोग हैं, जो घरेलू नौकर हैं, या जो ये प्रोसेशन वगैरह निकलते हैं, बारात निकलते हैं, उसमें लाइट वगैरह उठाने का काम करते हैं, ऐसे लोग जो रोज कमा के खाने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के बच्चे जो हैं वो जल्दी अपना स्कूल वगैरह छोड़ देते हैं, और उनमें जो है अपराध की प्रवृत्तियां ज्यादा आने लगती है, तो ऐसे बच्चों को अपराध से विमुक्त करने के उद्देश्य से कि अपराध की तरफ न जाए, पुलिस बाल मित्र केंद्र की स्थापना हुई थी, और वो RAPTC इंदौर में हमने चलाया था और अभी भी चल रहा है। वो वहां पर इंदौर में जो पंचशील नगर था एयरपोर्ट के सामने, वहां के बच्चों को चुना हमने और उन बच्चों की काउंसलिंग की, उनके माँ बाप को बुलाया, उनकी काउंसलिंग की, उसका ये लाभ हुआ कि बच्चे पढ़ाई की ओर प्रवृत्त हुए, जो बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे वो फिर से पढ़ाई करने लगे, कुछ बच्चों ने तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक किया, लड़कियों ने खासकर, और उसके अलावा अभी भी चल रहा है, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, वहां अपनी गाड़ी से वहां लाते हैं APTC कैंपस में, और वहां पर उनको जो है दोपहर में 3 बजे से 6 बजे तक के आसपास उनकी पढ़ाई होती है, रेगुलर ग्रूमिंग होती है, उनके कल्चरल प्रोग्राम भी कराए जाते थे पहले, इसके साथ ही उनके माँ बाप की भी जो है छुट्टी के दिन में बुलाकर हम काउंसलिंग करते थे, तो एक बहुत अच्छा पार्ट रहा है कम्युनिटी पुलिसिंग का, जिसमें कि बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास हुआ और वो अच्छे कार्यों की ओर जो है प्रवृत्त हुए।
1: मतलब पुलिस हर प्रकार से सहायता कर रही है, बच्चों की बात करें, महिलाओं की बात करें या इंदौर वासियों की बात करें, तो सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप पर है और इस तरह से आप सभी का सहयोग कर रहे हैं।
2: जी, कोशिश तो यही है कि अच्छे से अच्छा समाज विकसित हो और कोई भी इस तरह से अपराध की तरफ प्रवृत्त न हो, और अपराध से मुक्त भारत बने, प्रदेश बने, समाज बने, और इस तरह से हम विकसित भारत की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं।
1: बहुत अच्छा लग रहा है जी आपसे बातचीत करके। विकसित भारत 2047 का जो सपना हम देख रहे हैं वो यकीनन सभी तरह के अपराध से मुक्त जब हमारा समाज रहेगा, देश रहेगा, तो निश्चित हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
2: जी बिल्कुल, आपने सही कहा, इस दिशा में हमेशा अग्रसर रहते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है।
1: बहुत अच्छी बात है अजय जी। अगर कोई गीत आप सुनना चाहें तो वो जरूर हमें बताएं।
0: शुरू से ही मुझे, चूंकि मैं NCC में भी रहा हूँ और ऑल इंडिया लेवल के मैंने कैंप्स भी किए हैं, वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में परफॉर्म भी किया है, मेरा सबसे पसंदीदा गीत फिल्म पूर्व पश्चिम का है, प्रीत जहाँ की रीज।
1: कुछ गुनगुनाएंगे हमारे लिए?
0: है प्रीत।

0: जाता हूँ।
1: क्या बात है, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने इस गीत को गाया।
2: वाकई में श्रोताओं, पुलिस समाज के हर वर्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने में अपना महत्वपूर्ण दायित्व निभाती है और कानून के माध्यम से अमन और विश्वास का माहौल बनाती है। इसी विश्वास के साथ पुलिस प्रशासन विकसित भारत के सुरक्षित राष्ट्र निर्माण में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरेगा। अजय पंडित जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
3: आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: की बात। विकसित भारत विजन 2047 का एक प्रमुख उद्देश्य भारत के युवाओं को कुशल, आत्मनिर्भर और रोजगार योग्य बनाना है। इसके लिए सरकार कौशल विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। इसी के चलते प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना एक प्रमुख पहल है, जिसके अंतर्गत युवाओं को रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण देना, युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र प्रदान करना, स्किल इंडिया मिशन को पूरा करना, तकनीकी डिजिटल आधुनिक क्षेत्रों में कौशल विकसित करना, प्रशिक्षण के साथ साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए मार्गदर्शन और सहायता देना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। विकसित भारत विजन 2047 का लक्ष्य केवल नौकरी देना नहीं, बल्कि हर युवा को ऐसा कौशल देना है जिसमें वह रोजगार प्राप्त कर सके, स्वरोजगार शुरू कर सके और देश की आर्थिक प्रगति में योगदान दे सके। हर नागरिक का कर्तव्य है कि भारत की प्रगति में अपना सहयोग दें, तभी तो भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और हम विकसित भारत विजन 2047 के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। श्रोताओं, अब समय इशारा कर रहा है कि आपसे अनुमति ली जाए। आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संयोजन किया था डॉक्टर प्रीति छड़ीदार ने। अब प्रीति जोशी को दे अनुमति। नमस्कार।
1: बढ़ते कदम, बदलता भारत, विकसित होता भारत।

0: बढ़ते कदम बदलता भारत, विकसित होता भारत।
1: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम विकसित होता भारत।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलोहर्ट्ज़ पर आप है आकाशवाणी के इंदौर केंद्र के साथ 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। श्रोताओं, कलाकार हैं उमेश भट्ट।

0: अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। आज के कलाकार थे उमेश भट्ट। अभी आपने सुनी सलीम रज़ा की लिखी गज़ल, जिसके लिए संगीत को तैयार किया था संतोष अग्निहोत्री ने। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: सुनते रहिए मालवा किसान आकाशवाणी इंदौर।

0: चलो दीदी झूला झूलते हैं।
1: हाँ हाँ क्यों नहीं, और झूलते झूलते सुनते हैं
0: मालवा की शान आकाशवाणी
2: इंदौर।
0: अरे दीदी धीरे धीरे।
3: शाम के 6:45 हो चुके हैं। लीजिए सुनिए लोक गीत। आज के कलाकार हैं मनसाराम कुनबी और इनके साथी।

न ध्यान धरी वीर भद्र का भेजो जमा वन यज्ञ दियो विधवंस करी। तो नहीं क्रोध शिव जी को शांत हुआ वो गया वहां जा सती मरी कांधा पर उठे ना शरीर का।

सती का अंग गिर मामा शिव भीरु तो एक कावन टुकड़ा करी दिया पर शिव को मोह नहीं जा

विष्णु का बाण से जी भगिरी वो समझ धरती मजदार

श्रोताओं, मनसाराम कुनबी और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

चिलच काम अनपड़ी बजार समझा रसी तुम्हारी गली में आई तो सारा जय को मोल तू मांगी लाभ मद कोरा मारे झर्रा हम काम मारी आदत सब इन कमाल।

थारी माट की थारो माल को ले लो मोल तू बिकता मोल को हम लेवा तुग देणु हो ए तो बोल दोसर माय मती तू काना से थारो मन की घुंडी खोल तू थारा धई को आसी गहूं पको मत करे अम

कड़कड़ कन्हैयो अड़ी गयो राज करी न ग्वालन के फोकट का माल पड़ी गयो। तो प्रेम प्रेम मायल बेलो ग्वालन का दैना तड़ी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज के हमारे कलाकार थे मनसाराम कुनबी और इनके साथी। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। शाम के 7

0: बजने को है कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने ये घोषणा की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: श्री नड्डा ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए दिए गए सीजीपी के सुझावों पर विचार किया जाएगा।
3: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
1: आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार को पूरी सहानुभूति है और सरकार नियमों के अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी। इससे पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिन से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ और यातायात जाम के कारण लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने सभी 18 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार यात्रियों के लिए खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री मोदी ने कहा कि सारनाथ का भगवान बुद्ध से गहरा संबंध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। प्रधानमंत्री कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसिडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोसियर डैन के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक चर्चा की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 220 रन का लक्ष्य दिया है। ईशान किशन ने 81 और तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन की शानदार पारी खेली। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने 7वें ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए थे। अनहा सिंह विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंच गई हैं। फाइनल में उनका सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनहा सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय हैं। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना।

0: करना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। श्रोताओं, आपसे थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर सुनिएगा कार्यक्रम खेती गृहस्थी। इसमें सुनिएगा भेंट वार्ता, विषय होगा बांस उत्पादन उन्नत कृषक। शरद मंडावत से बातचीत करेंगी बिंदु भाटे। इसी कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं लोकगीत और मंडी के भाव भी इसी कार्यक्रम में होंगे। 8:00 आप सुनेंगे इस सप्ताह संसद में, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 8:15 पर आप सुन सकते हैं सुर्खियों में, इसे हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, रात्रि 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 9:15 पर चित्र गीत प्रसारित किया जाएगा। 9:30 पर हम अपने दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती। और रात्रि 10:00 आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। तो ये थे आज के शेष कार्यक्रम। और आइए अब आपको जानकारी देते हैं कल के कार्यक्रमों की। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का प्रातःकालीन आयोजन वंदना। 6:30 पर चिंतन। 6:35 पर खेती की बातें, विषय होगा मूंगफली के उपयोग में सामयिक सलाह। 6:40 पर सुनिएगा श्री रामचरितमानस गान का कल का भाग। 7:20 पर वसुंधरा के अंतर्गत सुनिए अपशिष्ट प्रबंधन। 7:35 पर आप आनंद उठा सकते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों का, प्रोग्राम होगा सुनहरे पल। श्रोताओं, कल रविवार है तो कल का दिन होता है 8:30 का बच्चों का। जी हां, आप समझ गए, कार्यक्रम का नाम है कल के सितारे बच्चे हमारे। सुबह 9:00 आप सुनेंगे लोकगीत, कलाकार होंगी तारा मिश्रा। 9:15 पर सुगम संगीत, कलाकार होंगे स्वतंत्र कुमार ओझा। 9:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनिएगा सतीश खानवलकर का गिटार पर बजाया राग देसी। 10:05 पर आपका पसंदीदा कार्यक्रम होगा MH होटलाइन। जी हां श्रोताओं, ये है फोन इन कार्यक्रम जिसमें आप फोन कर सकते हैं और सुन सकते हैं अपने पसंदीदा गीत। श्रोताओं, आपको बता दें कल दिन में 11:00 आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात। दिन में 12:00 से हम अपने भोपाल केंद्र से कार्यक्रमों का प्रसारण करेंगे, जिसमें आप सबसे पहले सुन सकते हैं 12:00 फिल्म संगीत। 12:30 पर सुनिएगा संग्रहालय से। 1:00 महिला कार्यक्रम। 1:30 पर लोक संगीत। 1:45 पर सुगम संगीत। दिन में 2:00 फिल्म संगीत और 2:30 पर सुनिएगा बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। 9:00 इसके बाद आप सुनेंगे हमारी शाम की सभा के कार्यक्रम। शाम को 5:00 हमारी सभा आरंभ होती है, जिसमें सबसे पहले आप सुनते हैं कार्यक्रम युववाणी। कल का क्रम होगा युवा तरंग। 5:45 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। 6:30 पर सुगम संगीत में कलाकार होंगे स्वतंत्र कुमार ओझा। 45 पर लोक संगीत। श्रोताओं, आप 6:45 पर लोक संगीत सुन सकते हैं तारा मिश्रा के स्वर में। 7:20 पर सुनेगा खेती गृहस्थी। रात्रि 8:00 आप सुनेंगे सुर्खियों में कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। 8:15 पर आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम डगर विकास की। 8:30 पर आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा फरमाइशी फिल्मी गीतों पर आधारित प्रोग्राम मन भावन। और रात्रि 10:00 हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे कार्यक्रम अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। तो ये थे कल के कार्यक्रम। हम आपको जानकारी दे रहे थे आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम अपने भोपाल केंद्र से रिले करेंगे। कृपया कुछ क्षणों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात में करेंगे राष्ट्र निर्माण और गुमनाम नायकों की बात। केंद्र सरकार ने सीजेपी की मांगों को सहानुभूतिपूर्वक माना, जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन हुआ खत्म। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिया अपने पद से इस्तीफा, कहा युवाओं को बहकाया गया। प्रदेश के चार बड़े शहरों में होगा फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन, 3 माह में परीक्षा जैसे अन्य मामलों का होगा निराकरण। और भोपाल इंदौर सहित प्रदेश के 35 जिलों में आज बारिश का अलर्ट, 4 दिन तक भारी बारिश के आसार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात का 136वां एपिसोड कल प्रसारित होगा। ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सुबह 11 बजे आकाशवाणी, दूरदर्शन और अन्य डिजिटल नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आम तौर पर राष्ट्र निर्माण, युवा शक्ति, नवाचार, खेल और पर्यावरण जैसे विषयों पर बात किया करते हैं। वे देश के कोने कोने में समाज सेवा कर रहे गुमनाम नायकों के प्रेरणादायक विचारों को भी देश के सामने रखा करते हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी का प्रदर्शन समाप्त हो गया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और सीजेपी प्रतिनिधि आशुतोष रांका और सौरव दास के बीच बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में श्री नड्डा ने बताया कि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों को सहानुभूतिपूर्वक मान लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे।
5: हम एजुकेशन के एग्जामिनेशन के रिफॉर्म्स के लिए जो आपका चार्टर है उस पर हम गहन चिंतन भी करेंगे और आपके डेलीगेशन के साथ बातचीत करके जो कुछ भी हम डेलीबरेट कर सकेंगे वो हम करने का प्रयास करेंगे।
4: वहीं सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने और सौरव दास ने मीडिया और सरकार का आभार जताते हुए प्रदर्शन वापस लेने की घोषणा की और सभी प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घरों को लौटने का आह्वान किया।
6: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई हैं, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
4: इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि पिछले 10 दिनों से विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं और ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें और किसी भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में न उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और वे इसके प्रति सदा समर्पित रहेंगे। श्री प्रधान ने कहा कि उन्होंने पहले दिन से ही पूरी जिम्मेदारी ली और कभी भी इस स्थिति से मुंह नहीं मोड़ा। उन्होंने कहा कि 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें वंचित पृष्ठभूमि के कई मेधावी विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि किसानों का कल्याण सर्वोपरि है। वे दतिया से वर्चुअली खरगोन के बलराम कृषि महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कल्याण वर्ष की प्रथम छमाही में जहां कृषि उपकरणों की तकनीक और उन्नत कृषि के संबंध में कार्यशालाएं आयोजित की गई, वहीं दूसरी छमाही में बलराम कृषि महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। बलराम

0: www.nz.gov.in पर या न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में 4 फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे, जिनमें पेपर लीक और परीक्षा सहित अन्य मामलों का मात्र 3 माह में निराकरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये समय की जरूरत है कि युवाओं से संबंधित न्यायिक फैसले तीव्र गति के साथ हों। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार शिक्षक और विद्यार्थी वर्ग के कल्याण से जुड़े सभी विषयों पर अत्यंत गंभीर और संवेदनशील है, इसीलिए शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विद्यार्थियों के हित में लगातार महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं।
2: हमारा प्रयास है हम सभी प्रकार के शिक्षा से जुड़े हुए मसलों को संवेदनशील तरीके से लेते हैं, चाहे शिक्षक वर्ग का हो चाहे विद्यार्थी वर्ग का हो। उल्लेखनीय है कि शिक्षा नीति लागू करने वाला राज्य मध्यप्रदेश है। 3 सरकारी विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी मध्यप्रदेश ने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में मौका दिया है। मैं उम्मीद करूंगा ऐसे सारे कामों से हम अपने विकास की गतिविधि, और ये किसी पे हम एहसान नहीं कर रहे, हमारी ड्यूटी है, ये हमारे अपने विद्यार्थियों के हित में लिए गए निर्णय।
1: सांची में आज स्वच्छ पर्यटन अभियान के तहत व्यापक स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के संयुक्त प्रयासों से आयोजित इस अभियान में स्थानीय समुदाय, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों, ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों, सफाई कर्मियों, एनसीसी के विद्यार्थियों, स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों और स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान का उद्देश्य प्रदेश के प्रमुख पर्यटन स्थलों को स्वच्छ, पर्यावरण अनुकूल एवं सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाना, साथ ही स्थानीय समुदाय को स्वच्छ पर्यटन की मुहिम का सक्रिय भागीदार बनाना रहा। राजगढ़ जिले में शनिवार को एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर एक डैम में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल बताया गया है, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुजनेर थाना पुलिस के अनुसार कार शुजालपुर की तरफ जा रही थी। भीलखेड़ी जोड़ के पास कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित डैम में जा गिरी। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीण, पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक कार पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। मृतकों की उम्र 40 से 55 साल के बीच बताई जा रही है। बात मौसम की करते हैं। प्रदेश में मानसून इन दिनों पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। आज प्रदेश के 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि करीब 20 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश के अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री और आगरमालवा जिले के प्रभारी नागर सिंह चौहान ने आज आगरमालवा में 111 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित सर्व सुविधा युक्त आगरमालवा, सुसनेर एवं नलखेड़ा के 3 सांदीपानी विद्यालय भवनों का लोकार्पण किया। खंडवा में गुरु पूर्णिमा महोत्सव को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए भंडारा आयोजनकर्ताओं और श्रद्धालुओं से सिंगल यूज पॉलीथिन का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। राजगढ़ पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन चक्षु 360 अभियान के अंतर्गत राजस्थान एवं गुना जिले की सीमा से लगे ग्राम पंचायत किला अमरगढ़ में सुरक्षा की दृष्टि से 16 हाईटेक आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए हैं। अशोकनगर जिले में खरीफ 2026 फसलों का फसल बीमा के लिए किसान 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। पन्ना जिले के आदर्श ग्राम पंचायत शाहनगर को पूरे मध्यप्रदेश में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। इस पंचायत को प्रदेश में सबसे ज्यादा आय अर्जित करने वाली पंचायत घोषित किया गया है। बरसात के मौसम में बच्चों को डायरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए देवास जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दस्तक अभियान चलाया जा रहा है। और सागर में आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए कल सुबह 7:10 पर। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से। शाम के 7:21 हो गए हैं, लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

0: खेती गृहस्थी कार्यक्रम सुनने वाला सभी किसान भाई बहनों का बिंदु की राम राम। किसान भाइयों आपको घणो घणो स्वागत है इना कार्यक्रम में। और अपनी जो खेती बाड़ी है वो तो अभी बरसात का साथ चली रही, अपन देखी विराज कि भाई देखो अपन ने जो वावनी करी वहाँ से तो अभी डिसूर फूटी गया, थोड़ा थोड़ा पौधा भी बाहर रही गया, कहीं पर छे तो देर सी भी वावनी हुई, कहीं पर छे तो बहुत जल्दी भी वावनी हुई गई। पर कुल मिले का देखे जाए तो सब दूर हरो भरो दिखी रो है, पर इनीज बखत में छे तो अपन देखा जाए अपना खेत न खरपतवार भी उगी आवे, तो असी बखत में अपना खरपतवार नियंत्रण भी करनू चाहिए। भाई देखो अपना बहुत सा किसान भाई बहन है जिनका अपना खुद का रहने का लेना जगह है, खुद का पक्का मकान है, पर घना सारा ऐसा भी है जो कि जिनका पास न ज़्यादा जमीन है न रहने का लेना मकान भी। तो भाई उनका लेना चाहे तो सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही। एक जो शुरुआत हुई थी वो छे तो 25 जून 2015 में हुई गई थी। एक अच्छे तो गाँव में आना शहर दो ही नकालीन लागू करी गई। गाँव में एक जो उद्देश्य ये थो कि भाई अपना जो गरीब भाई बहन है किसान भाई है या और भी लोग है जो कि जिनकी आय ज़्यादा नहीं है उनका छे तो अपना खुद को घर मिली जाए रहना का लेना, और जो उनकी बुनियादी जरूरत न छे जैसे कि घर में छे तो शौचालय भी बनेल हुए तो ये भी उनका मिला, एका लेना ये योजना शुरू करी गई। और ये योजना का लेना छे तो जो मैदानी क्षेत्र में रह उनका छे तो 1,20,000 की सहायता मिले। साथ छे तो जो पहाड़ी न पर है या कठिन जगह न पर है जहाँ जानू मुश्किल छे वहाँ पर रही रह तो उनका 1,30,000 ये जो अपना योजना छे उसका अंतर्गत मिले। भाई एका लेना छे तो जो स्वच्छ भारत अभियान का तहत शौचालय का लेना 12,000 रुपया भी मिलज। एवं छे तो मनरेगा का तहत 90 से 95 दिन की मजदूरी भी मिलनो शामिल छे। एको भी लाभ अपना किसान भाई बहन या जो भी गरीब भाई बहन छे वो ले सकज। भाई शहर का लेना जो EWS वर्ग आवज उनका लेना छे तो 3 लाख छे, LIG का लेना 3 से 6 लाख ने MIG का लेना 6 से 9 लाख रुपया छे। तो ये जो योजना छे एक अंतर्गत हमारा जो गरीब भाई बहन छे वो पूरी तरह को लाभ ले सके, और अपना जो जर्जर मकान छे कच्चा मकान छे जहाँ की वो बहुत तकलीफ में रहे, जहाँ जैसे बरसात छे या घाम छे तो रही रहा, गर्मी में भी अपन देखो हर मौसम उनका सहन करना पड़े, तो एकासी बचना का लेना ना अपना आपका सुरक्षित रखना का लेना इन्हीं योजना को फायदो ले सके। किसान भाइयों बातचीत हम आगे भी करेंगा, लोकगीत भी सुनेंगे, पर उनका पहले सुना संदेश।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: किसान भाइयों अपन खेती की बात करें तो हमेशा अपन जो पारंपरिक खेती करी रहा नहीं वो तो कर ही रहे हैं, उसका अलावा अपन काई काई करी सकान न अपना आय का साधन बनाई सकान, ये सब बात जाननू जरूरी है। क्योंकि भाई देखो नई नई चीज़ ना अपन करता रहूँगा, नवाचार करता रहूँगा तो अपनी खेती बाड़ी जो छे बहुत उन्नत होएगा, अपना देश उन्नत होएगा ने एको फायदो अपना का भी मिलेगा। तो हम अपनी जो पारंपरिक खेती छे अनाज की खेती छे एक अलावा हमारा एक किसान भाई छे जो कि बांस की खेती करे, तो उनका से अपन बातचीत करा।
3: किसान भाई राम राम। किसान भाई हम कई तरह की फसल की खेती करें, पर हमारा एक भाई छे जो कि बांस की खेती भी बहुत अच्छा से करे, और ये को उत्पादन तो अच्छो फायदो दे कि हर कोई चाहे कि बांस की खेती जरूर से करना चाहे। तो हमारा आज का जो किसान भाई छे वो छे शरद भंडावत जी शाजापुर से छे, और हमारा बीच में छे। तो सबसे पहला तो भाई आपका राम राम।
4: राम राम।
3: आप सबसे पहले तो ये बताओ कि आप बांस की जो खेती करो कैसे काई फायदो छे, क्यों करनो चाहिए, किस तरह से। तो सबसे पहले तो एक फायदो बता दो कि कैसे काई फायदो छे।
4: बांस ऐसी घास है जिसका पौधा इतना मजबूत और बड़ा होता है जो कई कामों में आता है। बचपन से लेके मनुष्य के अंत तक बांस हमेशा जीवन में काम आता रहता है। और बांस की खेती हर तरह की जमीन में, चाहे पतली हो, मोटी हो, काली हो, पीली हो, दोमट मिट्टी हो, सभी तरह की जमीनों में आसानी से हो जाती है। प्रथम वर्ष में इसमें एक साल तक लगातार पानी मत देना पड़ता है इसे, और एक साल बाद जब इसका पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर पानी की आवश्यकता नहीं रहती, ये खुद अपने आप अपना पानी निर्माण कर लेता है और इसे मिलता रहता है। और फालतू की जितने भी आपकी जमीन है, आपके खेत के आसपास है, आपकी मेरे हैं, आपके नाले हैं, नाले के आसपास है, इस जमीनों पर भी लोग लगाते हैं। तो इसको अपनी एक 10 बीघा जमीन में अलग से लगा रखा है और लगाने के मुझे फायदे इतने हैं कि मैं आपको एक एक करके बताने में बहुत समय लग जाएगा। फिर भी बांस से मुझे उत्पादन, क्योंकि हर चीज करने के पहले आदमी सोचता है उसका आर्थिक लाभ क्या मिले।
3: सही बात।
4: यह 4-5 साल बाद कटने के लायक हो जाता है इसकी फसल और हमें इसकी कमाई चालू है। बांस सब्जी वालों के लिए, कागज वालों के लिए, उद्योग वालों के लिए, आज तक बांस का कपड़ा भी बनता है, बांस की लुगदी भी बनती है, बांस आजकल इथेनॉल में भी काम आता है, बांस का चारकोल भी बनता है, बांस के जो नए नए रूट्स निकलते हैं उनकी तरह तरह की चीजें खाने की भी बनती है। और इस तरह से कम 500 से अधिक उत्पाद इसके बनते हैं।
3: हाँ, आजकल तो
4: ये आजकल इसके पाउडर से लेके जो टाइल्स से बनती है दीवारों पे लगने वाली, वो भी इसी बांसों की आजकल बनने लगी है।
3: अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया, मतलब ज्यादा उपयोगी छे मनुष्य का जीवन का लेना। और एक तरह से ये कहना चाहिए सहायक भी छे जीवन में, दुष्प्रभाव नहीं होते है किसी भी तरह को।
4: मैंने मेरे एक जो खेत है मेरा, उसके चारों तरफ इस बांस को अच्छी मात्रा में लगा रखा है।
3: अच्छा।
4: तो इससे कई बार क्या होता है, मैं गांव से थोड़ी सी दूर पे खेत से मेरा घर है, कई बार मैं घर पे बैठा रहता हूँ तो लोगों से पूछता हूँ क्यों भैया क्या काम कर रहा है, तो उन्होंने कि भैया यहाँ तो पानी खूब गिर रहा है। और वास्तव में ये है कि मेरे खेत पे गाँव में अन्य सब दूर से ज्यादा पानी भी कुछ जगह ज्यादा गिरता है।
3: अच्छा।
4: और बांस इतनी ऑक्सीजन देता है, आप यदि ऑक्सीमीटर लगा के जाओगे, आपका 95-96 है, तो जाकर आपका 98-99 के लेवल में आप कुछ ही देर उस बांस के उसमें जंगलों में घूमोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। बांस को कहते हैं कि सभी चीजों का भरपूर उत्पादन देने वाला तो है, बल्कि कई जगह तो यह भी माना जाता है, एक परंपरा है, जहाँ बांस खूब होते हैं वहाँ आस पास की फर्टिलिटी मनुष्यों की भी अच्छी पाई जाती है।
3: अच्छा।
4: उसके साथ साथ बांस एक ऐसा पौधा है जिसे काटने के लिए किसी सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा। जैसे आज हम शीशम या अन्य पौधे कुछ लगाए तो उन्हें काटने के लिए फिर सरकार से परमिशन लेना पड़ती है।
3: हाँ, अनुमति की जरूरत रहे
4: जी। हाँ। अच्छा, बांस हम कई तरीके से लगा सकते हैं। हम बीज से अपने पौधे तैयार करके लगा सकते हैं, हम इसके टिश्यू कल्चर के पौधे लाके लगा सकते हैं जो कि और जल्दी हमें खेती देने लग जाते हैं। साथ ही इसकी कटिंग भी करके, बट्स की भी कटिंग करके लगाया जा सकता है। तो ये तो लगाने का इसका बांस का एक तरीका हो गया है।
3: अच्छा, एक हम ये भी पूछना चाहूंगा, तो हमारा मतलब किसान भाई किस तरह की भूमि में ये लगा और कई सबज किसान भाई बहन लगाई सका देखा।
4: ये हर तरह की भूमि में पैदा हो जाता है, खाली पानी भरा हुआ ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए उस स्थान पर।
3: अच्छा।
4: जैसे कहते ना कि इसमें पानी भरा तो पानी में नहीं लगेगा, बाकी कितना ही पानी गिरे बाद में तो भी इसको कुछ नुकसान नहीं होता है। एक बार इसकी राई जो भी हम जब उसमें स्थापित हो जाती है और ऊपर से यदि कभी किसी कारण से टूट भी जाए तो कई बेड़े के रूप में ये फूटता रहता है और कई सालों तक हमें फसल देता रहता है।
3: अच्छा।
4: इसकी फसल एक बार काटो, आपने मान लो एक बार एक पौधे में से 10-12 पौधे निकाले, अगली बार 30-40 पौधे उसमें से फिर कटने के लिए 2-3 साल में तैयार हो जाते हैं।
3: अच्छा।
4: इसलिए इसकी उत्पादन बढ़ता रहता है, जंगली जानवरों से इसको बहुत कम नुकसान होता है। और इस बांस की जो कितनी विशेषता है कि आप में वर्णन आसानी से कर सकता है। और अपने भारतवर्ष में कम से कम 500 वैरायटी का बांस लगाया जाता है। किसी बांस से कुर्सी टेबल बनता है, किसी बांस से फर्नीचर बनते हैं, अलग अलग तरह के बांसों का अलग अलग तरह से उपयोग किया जाता है।
3: अच्छा,
4: इसको बारीक पाउडर बना के या लुगदी बना के, जैसे आज अगरबत्ती में इसका उपयोग है, पेस्ट बनाने के ब्रश में इसका उपयोग है, बांस की बोतलें बनने लगी है बांस से। तो कहते हैं ना कि इतने तरह के उत्पाद आजकल बन रहे हैं कि आने वाले समय में बांसों का अपने आप बहुत महत्व हो जाएगा। हमारे भारतवर्ष में मुश्किल से हमारे भारतवर्ष में उपयोग का 25% बांस पैदा होता है, बाकी 75% बांस हम बाहर से आयात करते हैं।
3: तो हमारा सभी किसान भाई बहन का एक प्रति जागरूक होना चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा अपना कम से कम मतलब अपने खेत के मेड़ पर तो जरूर लगाओ कि खेत में अपना खेत से जो फायदा हो रहा है वो भी साथ ही अपना खेत की जो मेड़ चे उका से भी फायदा मिली जाए। और ये तो आपने जैसे बताया कि बहुत अच्छी फायदा वाली फसल छे और काफी अच्छा उत्पादन दे, पर हम ये भी जानना चाहूंगा हमारा किसान भाई बहन कि एक छे तो कोई किसी तरह की रोग बीमारी है लगज तो को नियंत्रण भी करना पड़ता होगा।
4: इसमें मेरे पास आज 10 साल हो गए मुझे।
3: अच्छा,
4: कोई बीमारी इसमें नहीं आती है, ना कोई दवाई छिड़कने की जरूरत पड़ती है। और इसमें एक भारत सरकार एक योजना चला रही है, भारत बेम्बू मिशन।
3: अच्छा,
4: जो लोग बांस के पौधे लगाते हैं, एक पौधा लगाने पर पहले 120 रुपए देते थे, अब 150 रुपए का अनुदान सरकार देती है।
3: अरे वाह।
4: अब इस 150 रुपए में पौधा भी आपको लाना है, लगाना भी आपको है, परवरिश भी आपको करना है, 3 साल तक उसकी देखभाल आपको करना है। यदि 100% पौधे रहते हैं तो आपको एक पौधे पे 150 रुपया आपको मिलता है।
3: अच्छा,
4: यह इसलिए कि सरकार चाहती है कि ऐसे पौधे अधिक से अधिक लगे जिससे किसान को आर्थिक लाभ हो। लगाने के बाद पौधे का जो भी उत्पादन होगा वो भी आपका है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।
3: अच्छा,
4: जब एक समय एक जिले में 2 स्थानों पर प्लाट बनाने का समय आया था तो हमारे वन विभाग वाले लोग ढूंढ रहे थे कि ऐसा किसान मिले जो 1 हेक्टेयर जमीन में बांस के पौधे लगाए और हम उसको 3 लाख रुपए का अनुदान दे। तो सबसे पहले जब मुझे मालूम पड़ा शाजापुर जिले में, तो इस योजना का लाभ मैंने उठाया है, जिसके अंदर 3 लाख रुपए में आसपास की तारों की बागड़ भी करनी थी उसकी, और उसमें पानी की भी व्यवस्था करनी थी और पौधे लगाने थे। आज शाजापुर जिले में सबसे टॉप बांस के पौधे मेरे हैं, कभी भी आप आकर देख सकते हो। इतनी भारी मात्रा में अब हो गए हैं कि कहते हैं ना, जब लोग कहते थे भाई साहब काय के लिए लगा रहे हो, तो मैंने कहा भैया बुढ़ापे का सहारा लकड़ी होती है, यही बांस मेरे बुढ़ापे का सहारा है। आज यदि किसी को 10 बांस चाहिए तो 100 रुपए बांस से मुझे 10 बांस

0: काट के ले जाता है, मुझे 1000 रुपए दे जाता है। और यूँ थोक में 40-50 रुपए बांस में खरीदने वाले बहुत आते हैं कि जब इकट्ठे हमें दे दो, कोई कुंटल से खरीदने की बात करता है ये, पर उनको चाहिए मात्रा में बल्क पे।
1: अच्छा।
0: और बल्क में ले जाते हैं। ऐसे ही शाहजहांपुर में शुजालपुर के अंदर इसका एक उद्योग भी डाला था शासन की ओर से, किन्हीं कारणों से अभी बंद पड़ा हुआ है, लेकिन उसके अंदर इसको बांस को कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे टेबल कुर्सी बनाते हैं, सभी चीजों को बनाने के लिए वो उद्योग शुजालपुर तहसील में डाला हुआ है, और लोगों को बांस की कारीगरी सिखाने के लिए भी उसका उपयोग किया जाना है।
1: अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई कि देखो बांस का इतना सारा उपयोग छे, और हमारा बहुत सारा किसान भाई बहन जो छे ये लगाई सकज और एकासी ज्यादा से ज्यादा मुनाफो कमाई सकज। और चलता चलता हम ये भी जानना चाहूंगा कि आप आरु किसान भाई बहन ने काई संदेश देना चाहोगा जिकासी वो मतलब दोहरो फायदो ले अपनी खेती बाड़ी से।
0: सभी किसान भाइयों से निवेदन, जो हमारी खाली जमीन पड़ी है, पड़त जमीन पड़ी है, और यदि जिसको अच्छी पैदावार भी लेनी है तो खेत में भी बांस लगाए और बरोबर दूरी पे लगाए और अच्छी वैरायटी वाला बांस लगाए ताकि भरपूर पैदाइश, जिससे वातावरण भी सुधरे, हमारे गांव की हरियाली भी रहे। कहते हैं ना कि आज ऑक्सीजन लेवल और कार्बन दोनों को बढ़ाने में बांस बहुत बड़ा सहयोगी होगा।
1: तो बहुत अच्छी बात बताई। और आपने जो भी हमारा किसान भाई बहन कहे बांस लगाना का लेना प्रेरित करो और बतायो एक लेना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार सभी भाई।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: किसान भाइयों, अभी अपन अपना उन्नत कृषक श्री भंडावत जी से बातचीत कर ही रहा था, और भाई देखो कितनी अच्छी बात कही उनने कि बांस तो हमका लगाना चाहिए, बुढ़ापा को सहारो लकड़ी छे, बहुत अच्छी बात लगी उनकी। और देखो अपना पर्यावरण का अगर हमका अच्छो रखनो तो हमको खेत का आसपास जो जगह छे या कहीं भी अपना अगर खाली जगह दिखज तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम पौधा लगावा, पेड़ लगावा, जिकासी छे तो वह पर्यावरण भी अच्छो रहे, हमारे स्वास्थ्य भी अच्छो रहे, और कहीं ना कहीं उनका सी अपना का आमदनी जरूर हुए। तो हमका जरूर सी ये पौधा जो छे पेड़ छे उनका लगाऊ चाहिए। कहीं ऐसा जो पेड़ पौधा छे जिकासी अगर हम अपने खेत की मेड़ का चारों तरफ लगा ही देवा, वहाँ से कहीं जाना की जगह नहीं रहे तो वो जंगली जो जानवर छे वो एकदम खेत में नहीं घुसेगा, है नहीं। तो उनका रोकना का लेना अपन इस तरह से पास पास में छे तो झाड़ लगा ही सकान। अब जैसे उनने बताया कि भाई बांस को झाड़ लगा लो, बांस का पौधा लगा लो, तो बांस का पौधा भी पास पास रहेगा नहीं तो एक अड़ेखो ही जाएगा अपनी पूरा खेत की मेड़ पर। तो अपना किसान भाई बहन एक जरूर सिखा और सुरक्षित रख अपना खेत का न अपना खुद का भी, वही स्वास्थ्य का भी अपना को देखो, क्योंकि बरसात को मौसम चली रोज तो बरसात का मौसम अपन देखा है कि अपना छे तो स्वास्थ्य पर भी एक गहरा असर पड़े, कहीं आप गीला भी जावा या फिर छे तो जो जहाँ पानी भरेल रहे वहाँ हम जावा या कीचड़ में भी जावा, अपनी खेती बाड़ी को काम तो असोच है। तो आई कहना अपना आपका पूरी तरह साफ सुथरो अपना का करी लेनो चाहिए, सूखो करी लेनो चाहिए, कपड़ा भी हम सूखा पेरा ऐसी आदत अपना नाना नाना बाड़क ना में भी रखा, जैसा सी वो भी देखो बरसात को मजो ले कहीं भी जाई कने गीला भी हुई जाए या बरसात में सब नहाने भी लगी जाए, तो उनका भी इन बात को अपन ज्ञान करावा कि भाई कहीं भी जाओ आओ घर आई कने सूखो होनु साफ सुथरो होनु और साफ सुथरी जगह पर रहनु, साफ सुथरा कपड़ा पहनू, इन्हीं बात को ध्यान रखा, साथ ही खान पान को भी ध्यान रखा। हम देखे रहे कि कितनी सारी चीज़ ना अपना घर खुली मिली जाए, कटेल मिली जाए, फल छे है नी, और बहुत सी ऐसी चीज़ ना छे जिनका हमका नहीं खानू चाहिए इन्हीं वक्त में, क्योंकि एक वो प्रभाव अपना शरीर पर पड़े, एक तो गीलो रहे, दूसरों कीटाणु न को प्रकोप ज़्यादा रहे तो हमारा स्वास्थ्य कैसी खराब हो जाए। इसी तरह से तो अपना जो खेतीबाड़ी में ढोर डंगर छे उनको भी हम ध्यान रखा, बातचीत हम आगे भी करेंगे पर बखत छे एक लोग

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: तो अभी हमारा किसान भाई बहन है ना, यो रामकीर वर्मा ना साथी को गाए लोकगीत सुने हो और आनंद भी आयो। किसान भाई और देखो बरसात का दिन चली राज है नी, अपना ढोर के रख अपना ख संभाल न रखनु और उन खच तो उनको बचाव भी करनु। किस तरह से हम उनको बचाव करा और उन खच तो जैसा कि निबखत में सांप खूब रहे उंदरा भी इतना हुई जाए कि वो छे तो अपना ढोर के रख काटी ले, तो उनका काटना से कैसा कई बचावा एक बारा में अपना का बता रहा है डॉक्टर रवि सिकरोड़िया, तो सुना इनका सी।
3: नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर रवि सिकरोड़िया पशु चिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय मऊ से आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरह से करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं कि बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और यह अभी और आगे लंबे समय तक चलने वाला है। बरसात के मौसम में अधिकतर हम देखते हैं कि हमारे पशु जो कि गर्मी के मौसम में ठीक थे अचानक से बीमार होने लगते हैं। ऐसा हालांकि मौसम के परिवर्तन की वजह से हो सकता है, परंतु इसमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां भी शामिल हो सकती हैं, जिसमें से कुछ बीमारियाँ किन्हीं इन्फेक्शियस या संक्रामक कीटाणुओं के द्वारा भी पशुओं में फैलती है और इनकी बीमारियों की वजह से हमारे जो किसान भाई रहे उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है। इन्हीं अगर हम बीमारियों की कुछ बात करें तो इन बीमारियों में बड़े पशुओं में जिनमें कि गाय भैंस मुख्य रूप से हैं, इनमें गलघोंटू, खुरपका और मुँहपका, ब्लैक क्वार्टर और निमोनिया की शिकायत बरसात के मौसम में देखने को मिलती है। ये वह बीमारियां हैं जिनमें कि पशु की मृत्यु अगर पशु पर ध्यान न दिया जाए तो बहुत जल्दी हो सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में पशुओं में आंतरिक और बाह्य परजीवियों की समस्या भी एक आम बात है, जिसकी वजह से किसान भाइयों को बहुत नुकसान होता है। अगर हम बात करें कि कैसे इन बीमारियों से हम किसान भाइयों के नुकसान होने से बचा सकते हैं, तो कुछ उपाय हैं जिनके बारे में हमें अवश्य जानना चाहिए। जैसे अगर हम पशुओं के देखभाल के संबंध में बात करें तो शुरुआत करते हैं पशुओं के रहने वाले स्थान से। पशुओं के रहने वाले स्थान को बरसात के आने से पूर्व ही हमें ठीक और व्यवस्थित कर देना चाहिए, जिसमें कि पशुओं के अगर रहने के आवास की छत में अगर कहीं पे डैमेज है या नुकसान है तो उसको सीलिंग करा देनी चाहिए, उस पर अच्छे से सीमेंटीकरण कराना चाहिए, जिससे कि पशुओं के आवास में पानी का आना बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद हो जाए। साथ ही अगर पशुओं के शेड में कहीं पे दीवारों पे कुछ क्रैक्स हैं या फर्श टूटा हुआ है उनको भी ठीक करा देना चाहिए, क्योंकि इन क्रैक्स या इन टूटे हुए स्थानों में चूहे या फिर कुछ अन्य परजीवी अपना घर बनाते हैं जो पशुओं को काटते हैं और बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं। अगर हम फर्श की बात करें तो जहाँ पर पशुओं खड़े रहते हैं या बैठते हैं उस स्थान का अधिक से अधिक सूखा रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे अगर पशु जिस स्थान पर बैठ रहे हैं और वो गीला रहेगा तो वहाँ पे अनेक प्रकार के कीटाणु या बैक्टीरिया या वायरसेस पनप सकते हैं जो उनके थनों से या किन्हीं चोट से पशु के शरीर में अंदर जाकर उन्हें बीमार बना सकते हैं। साथ ही अगर समय पर रहते रहते इस स्थान की सफाई करने के साथ उसे सूखा रखें और चूने का छिड़काव करें तो इन कुछ परजीवियों से बचा जा सकता है। साथ ही बरसात आने से पहले ही पशु घर की अच्छे से साफ सफाई और पुताई करा देना चाहिए, जिससे कि बीमारियां ना हों। अगर हम अन्य पशुओं में टीकाकरण की बात करें तो बरसात के आने से पहले गलघोंटू की वैक्सीनेशन या टीका लगाया जाता है और इसे समय रहते ही अगर हम लगा लेते हैं तो आने वाले समय में पशुओं को गलघोंटू बीमारी होने से बचाया जा सकता है। वहीं अगर हम मुँहपका और खुरपका बीमारी की बात करें तो इसका टीकाकरण सामान्य रूप से सर्दियों से पहले या कभी कभी फरवरी के माह में 6 महीने पूर्ण होने के बाद लगाया जाता है। ऐसा करने से हम अपने कीमती पशुओं को इन बीमारियों के संक्रमण से रोक सकते हैं। अगर हम बात करें बरसात में छोटे पशुओं की तो उनमें निमोनिया की समस्या होना एक बहुत ही आम बात है। छोटे पशुओं को निमोनिया से बचाने के लिए हमें उन्हें गीला होने से बचाना चाहिए। अगर कहीं से पशु गीले हो गए हैं या बारिश में अधिक भीग गए हैं तो तुरंत उन्हें पोंछकर सुखाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्हें गर्म स्थान पर या उनके पास में ही अलाव जलाना चाहिए, जिससे कि उनका शरीर जल्द से जल्द सूख जाए। साथ ही बरसात से पहले पशुओं में डीवर्मिंग या फिर पेट में कीड़े की दवाई भी दिया जाना चाहिए। ऐसा करने से पशुओं के पेट में अगर कीड़े नहीं होंगे तो वो जो चारा या खाना खा रहे हैं वो उनके शरीर को लगेगा और उन्हें वो स्वस्थ बनाएगा। ऐसा करने से पशु आपके स्वस्थ रहेंगे। साथ ही एक बहुत मुख्य समस्या ये आती है कि जैसे ही बरसात का मौसम आता है सब तरफ या चारों तरफ पशुओं के स्थान के हरा हरा चारा उपलब्ध हो जाता है। चूँकि पहले अधिकतर पशु हरे चारा न मिलने के कारण सूखा भूसा जो खा रहे थे और केवल दाना जिन्हें मिल रहा था, उन्हें अचानक से हरा चारा अधिकतम उपलब्ध होने पर उन्हें अपच की समस्या हो जाती है और उनमें मुख्य रूप से डायरिया देखने को मिलता है। तो इस समस्या से भी निजात पाने के लिए पशुओं को अगर बरसात में हरा चारा देना शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा मात्रा बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हरा चारा उपस्थित होने पर उन्हें केवल हरा चारा ही दिया जा रहा है। खास तौर पर जो पशु दूध का प्रोडक्शन या दूध देते हैं उनको कुछ मात्रा में आपका दाना या कंसंट्रेट भी खिलाया जाना चाहिए। 1 kg पर 300 से 400 ग्राम आपको कंसंट्रेट देना चाहिए। साथ ही मिनरल मिक्सचर या खनिज मिश्रण पशुओं को दिया जाना चाहिए। ये पशुओं के स्वास्थ्य को और उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक होता है। साथ ही कुछ पशुओं को नमक की मात्रा भी दी जानी चाहिए, जिससे कि सोडियम और उनको क्लोराइड आयंस भी मिल सके। ऐसा करने से आपके पशु बरसात के मौसम में अचानक से होने वाले खाने में परिवर्तन की वजह से बीमार नहीं होंगे और वह स्वस्थ बने रहें। धन्यवाद।
2: तो अभी अपन डॉक्टर रवि सिकरोड़िया से जाने हो कि किस तरह हम बरसात में अपना ढोर डंगर न अच्छा रखी सकन। किसान भाई और हमारा हाथ में छे मंडी का भाव, ये भी हम आपका वाची का सुनाई देवा। इंदौर मंडी का भाव छे गेहूं को भाव रहे हो 2480 से लेकर ना 2875 रुपया प्रति क्विंटल। सोयाबीन 3000 से लेकर ना 7305 रुपया। चना देसी किस्म को 4750 से लेकर ना 8405 रुपया। डॉलर किस्म को चनो 2000 से लेकर ना 9250 रुपया। मटर 2895 से लेकर ना 3310 रुपया। उड़द को एकज भाव रहे हो 4005 रुपया। तुअर को भाव रहे हो 6285 से लेकर ना 6755 रुपया। मूंग को भाव रहे हो 2200 से लेकर ना 7305 रुपया। अना सरसों को एकज भाव रहे हो 7100 रुपया प्रति क्विंटल। ये तो इंदौर मंडी का भाव था और मौसम बरसात को छे तो बरसात तो होएगा सही। और अब आज शनिवार छे तो सुना सुंदरकांड मुकेश ने साथी ने को गायल।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती गृहस्थी। रात्रि के 8 बजने को हैं, कुछ ही पलों में अगला कार्यक्रम रिले किया जाएगा।
1: ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। लेखक हैं पीटीआई भाषा के अविनाश। संसद के मॉनसून सत्र का ये पहला सप्ताह था और इस दौरान दोनों सदनों में विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए भारी हंगामा किया। इस वजह से पूरे सप्ताह

दोनों सदनों में गतिरोध बना रहा और कोई अहम विधायी कामकाज नहीं हो सका। हंगामे की वजह से दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं चल सके। सत्र के पहले दिन यानी सोमवार को लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेपर लीक को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तथा राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रश्नकाल में हंगामा किया, जिसके कारण कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, विपक्षी सदस्य हाथ में तख्तियां लेकर आसन के पास आकर नारेबाजी करने लगे। हंगामे के बीच ही ओम बिरला ने सदस्यों से कहा कि लोकसभा सर्वोच्च संस्था है और यहां चुनकर भेजे गए सांसदों से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। सदन में हंगामा नहीं थमते देख उन्होंने कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा और कार्यवाही दोपहर 1 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा और कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद 2:30 बजे जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सदस्य नारेबाजी करने लगे। हंगामा देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 3 बजे तक और फिर दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी सत्र का पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। विपक्षी सदस्यों ने परीक्षाओं में कथित अनियमितता, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण राज्यसभा की बैठक 5 बार के स्थगन के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सत्र के प्रारंभ में अपनी संक्षिप्त टिप्पणी में सदस्यों से उच्च सदन की गरिमा, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का आह्वान करते हुए आग्रह किया कि वे कामकाज के समय से निपटारे पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि हर व्यवधान से देश और लोगों से जुड़े मामलों पर चर्चा में देरी होती है। किंतु उनकी इस अपील का विपक्षी सदस्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और सदन में हंगामा जारी रहा। इससे पहले पूर्वाह्न 11 बजे सत्र के पहले दिन राष्ट्रगान के साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। सभापति ने नवनिर्वाचित 9 सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन में 4 दिवंगत पूर्व सदस्यों बलबीर पुंज, स्वप्न साधन बोस, रंगासाई रामकृष्ण और एच हनुमंथप्पा के साथ ही कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे जाने के बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीट यूजी 2026 प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे को उठाने की कोशिश की। खड़गे जब अपनी बात रख रहे थे तभी विपक्षी सदस्य अपने स्थानों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 1 बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर सदन में वही नजारा था। सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा रुकते न देख सभापति ने बैठक 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12:30 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर विपक्षी सदस्य जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी करने लगे। वे अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे को लेकर भी नारे लगा रहे थे। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:50 तक के लिए स्थगित कर दी। बैठक के दोपहर 12:50 पर फिर शुरू होने पर सदन में वही नजारा देखने को मिला। हंगामे के कारण सभापति ने बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 2 बजे बैठक शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा कि संसद चर्चा करने के लिए है और यहां चर्चा एवं संवाद होना चाहिए। अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने बैठक को 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2:30 बजे पुनः शुरू हुई तो विपक्षी दलों के सदस्यों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और बैठक 1 मिनट के भीतर ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। मंगलवार को भी नीट पेपर लीक तथा अन्य मुद्दों को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी रहा, जिसके कारण लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे अध्यक्ष बिरला ने जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू की, विपक्षी दलों के सदस्य नीट पेपर लीक और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करने लगे। बिरला ने हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक फिर शुरू हुई तो विपक्षी सदस्य तख्तियां और बैनर लेकर आसन के पास आ गए और नारेबाजी की। पीठासीन अधिकारी संध्या राय ने हंगामे के बीच आवश्यक विधायी दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए और सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की। हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अपराह्न 2 बजे भी सदन में वही नजारा दिखा और कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी प्रदर्शनकारी छात्रों

पर पुलिस लाठीचार्ज का मुद्दा छाया रहा। इसे लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण उच्च सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वाह्न 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर उन्हें सदन की ओर से शुभकामनाएं दी। इसके कुछ देर बाद ही सदन में हंगामा शुरू हो गया। सदन में हंगामे को देखते हुए सभापति राधाकृष्णन ने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी शोरगुल जारी रहा और उन्होंने कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद 2 बजे भी हंगामा नहीं थमा और उपसभापति हरिवंश ने एक ही मिनट के भीतर बैठक को दिनभर के लिए स्थगित कर दिया। बुधवार को भी संसद में हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देश के युवाओं के लिए सार्थक चर्चा हो, इसके लिए सरकार तैयार है। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे दोबारा शुरू होते ही विपक्षी दल फिर हंगामा करने लगे और कुछ सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए। कई विपक्षी सदस्य तख्तियां लिए हुए थे। कांग्रेस सदस्य विरोध स्वरूप काले कपड़े पहने थे। सदन में हंगामा देखते हुए कार्यवाही अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर पीठासीन अधिकारी कृष्ण प्रसाद तेन्नेट्टी ने हंगामे के बीच जरूरी कागजात सदन के पटल पर रखवाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी के खिलाफ महिला सांसदों के बारे में अभद्र टिप्पणी किए जाने की लिखित शिकायत मिली है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रस्ताव किया कि महिला सांसदों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के आरोप में कल्याण बनर्जी को सत्र की शेष अवधि से निलंबित किया जाए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से स्वीकार कर लिया। तेन्नेट्टी ने प्रस्ताव स्वीकार करने के बाद कल्याण बनर्जी को सदन से बाहर जाने का आग्रह किया और सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। उधर राज्यसभा में बुधवार को भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले और छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गतिरोध जारी रहा। हंगामे के बीच सरकार ने कहा कि वो नीट प्रश्न पत्र लीक मामले पर चर्चा के लिए तैयार है। वहीं विपक्ष इस चर्चा को नियम 267 के तहत कराने की मांग पर अड़ा रहा। विपक्ष ने यह भी कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही इस विषय पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर हंगामे के बीच उच्च सदन की कार्यवाही 3 बार बाधित होने के बाद अपराह्न 3 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। पूर्वान्न 11 बजे जब सदन की बैठक शुरू हुई तो सदस्यों ने सिक्किम में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुए हादसे में मारे गए 20 लोगों के सम्मान में कुछ क्षण का मौन रखा। बाद में विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने मुद्दे उठाने चाहे। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। उनकी बात शुरू होते ही सत्ता पक्ष के सदस्य हंगामा करने लगे। इसके जवाब में विपक्षी सदस्यों ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस के अधिकतर सांसद काली शर्ट और काला कुर्ता पहनकर सदन पहुंचे। खड़गे की बाह में काले रंग की पट्टी बंधी थी। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने कार्रवाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्य छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे को लेकर हंगामा करने लगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार नीट पेपर लीक सहित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले तो चर्चा की मांग करती है और फिर नारेबाजी करके सदन को बाधित करती है, जो ठीक नहीं है। सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्षी सदस्यों के आचरण की निंदा करते हुए कहा कि ये जो इंडी गठबंधन है, इसका व्यवहार प्रजातंत्र विरोधी है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चर्चा तब तक संभव नहीं है जब तक शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं दे देते। इस दौरान सदन में हंगामा तेज हो गया और हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और उपसभापति ने सदन में व्यवस्था न बनते देख बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। बृहस्पतिवार को भी संसद में विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष ने नीट मुद्दे पर हंगामा किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस तरह शोरगुल करने से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। सरकार पेपर लीक पर सदन में चर्चा कराने को तैयार है। शोरगुल थमता न देख उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू हुई तब भी विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। हंगामे के बीच ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक करने वालों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ त्वरित अदालतों के जरिए सख्त कार्रवाई करने की पहले ही घोषणा कर दी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष हंगामा कर चर्चा से भागना चाहता है।

राज्यसभा में भी मानसून सत्र के चौथे दिन गतिरोध कायम रहा। उच्च सदन की बैठक पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जून और जुलाई के दौरान देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन जैसी आपदाओं में कई लोगों की जान चली गई। सदस्यों ने इन प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के सम्मान में अपने स्थानों पर खड़े होकर कुछ क्षण मौन रखा। इस बीच विपक्ष के सदस्यों ने प्रश्न पत्र लीक होने के मुद्दे पर हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार आज ही नीट मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है और विपक्ष को बहस के लिए कोई शर्त नहीं रखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि पेपर लीक मामले के दोषियों को शीघ्र दंड दिलाने के लिए त्वरित अदालतों की स्थापना की जाए। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि इस विषय पर चर्चा शुरू होने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, तभी चर्चा शुरू हो सकेगी। सत्ता पक्ष ने इस पर कड़ा विरोध जताया। दोनों पक्षों की नारेबाजी जारी रहने पर सभापति राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। तीन बार के स्थगन के बाद शाम करीब 3 बजे सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। शुक्रवार को भी संसद में गतिरोध बना रहा। लोकसभा की बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को करगिल दिवस के बारे में सूचित करते हुए कहा कि करगिल विजय दिवस हम 26 जुलाई को मनाते हैं, लेकिन उस दिन अवकाश होने की वजह से इस संबंध में सदन को आज ही अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस, अप्रतिम शौर्य और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। इसके बाद उन्होंने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू करने की घोषणा की, विपक्षी सदस्य अपनी सीटों पर खड़े होकर हंगामा करने लगे। अध्यक्ष के बार बार आग्रह के बाद भी हंगामा नहीं थमा, तब कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे जैसे ही दोबारा शुरू हुई, विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच ही पीठासीन अधिकारी जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो विपक्षी दलों को चर्चा के लिए तैयार हो जाना चाहिए, लेकिन सदन में हंगामा जारी रहा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में भी नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण गतिरोध बना रहा। पूर्वाह्न 11 बजे उच्च सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने 26 जुलाई को मनाए जाने वाले करगिल विजय दिवस का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर यह सदन उन वीर शहीदों को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने देश की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद सभापति ने प्रश्नकाल शुरू कराना चाहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के कारण बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे बैठक शुरू होने पर भी सदन में हंगामा जारी रहा और बैठक दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर हंगामे के बीच गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आसन की अनुमति से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। उपसभापति ने विधेयक पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके चलते सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। अभी आप संसद में इस सप्ताह हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के

0: सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं और आने वाले दिनों में इसे अमली ढांचा पहनाने के लिए विधि सम्मत उपाय भी किए जाएंगे। यानी संभव है आने वाले दिनों में हम एक नया कानून इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए अस्तित्व में आता हुआ दिखें। इस विषय पर चर्चा के लिए हमने आमंत्रित किया है स्टूडियो में राजनीतिक मामलों की वरिष्ठ विश्लेषक अदिति टंडन जी को। अदिति जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती हैं उसमें कई में हमने देखा कि कुछ लापरवाहियां रही या उचित कदमों में कहीं तालमेल का अभाव दिखा और प्रश्न पत्र लीक हो गए, इसका अंजाम अच्छा नहीं निकला और अंततः सरकार ने कड़े कदम उठाने के आश्वासन दिए हैं। किन रूप में दिख रहे हैं इन्हें?
1: देखिए, जैसा कि आपने कहा खुद ही अपने रिमार्क्स में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस हैं और इवन राज्य के स्तर पर जो एग्जामिनेशंस हैं, ऐसा नहीं है कि वो आज के लीक हो रहे हैं। सिस्टम में लीकेज ऑफ एग्जामिनेशन पेपर्स होते रहे हैं, बहुत सारे हुए हैं, हर स्तर पर, राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर हुए हैं और सिस्टम्स को इम्प्रूव करने की जो कवायद है ये बहुत सालों से चल रही है। मैं खुद ही बहुत पहले एजुकेशन मिनिस्ट्री पर लिखा करती थी, तब से ये कोशिश चल रही है। मुझे आज भी याद है कि AIEEE का एग्जाम लीक हुआ था 2011 में, जिसके बाद सबसे पहले एक संजीदा मसौदा तैयार करने की बात हुई थी कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन सिस्टम को फुल प्रूफ बना सकते हैं। तो ये जो चैलेंज है मनोज जी, हर सरकार के टाइम पर आया है और हर सरकार ने अपने तरीके से इसको प्लग करने की कोशिश की है, पर हम सब जानते हैं कि एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो इससे लाभान्वित होता है और इंडिविजुअल्स हैं जो बहुत वेल एंट्रेंच हो चुके हैं सिस्टम में। जो लोग एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं, पेपर लीक के डायनामिक्स को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि ये कोई मामूली अपराध नहीं है, इसके जो तार हैं बहुत दूर तक जुड़े हुए हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण घटना जो कल मैंने देखी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 ऑफिशियल्स को सैक किया गया है और ये भी वक्तव्य आया है सरकारी सोर्सेज के हवाले से कि उनमें से बहुत लोगों पे अब मुकदमा भी चलने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो लेटेस्ट नीट UG जो मेडिकल अंडर ग्रेजुएट MBBS एग्जाम का पेपर लीक हुआ था, May 3 को पेपर कैंसिल हुआ था, उसमें ऑब्वियस सी बात है कि ना सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स इन्वॉल्व हैं, अंदर के भी लोग कुछ इन्वॉल्व हैं। तो उसके लिए एक इस सिस्टम में ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम कल उठाया गया है। और आपने सही कहा कि प्रधानमंत्री ने दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें अपने वक्तव्य में कही हैं सिस्टम को फुल प्रूफ बनाने के लिए। एक तो उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स ऐसा नहीं कि देश में है नहीं, लेकिन जो प्रधानमंत्री का मतलब है वो ये है कि डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे जो सिर्फ इस लॉ के तहत जो केसेस दर्ज होंगे उनको डे टू डे बेसिस पर सुनने के बाद 3 महीने में उनका ट्रायल खत्म करेंगे, चार्जशीट फाइल होने के बाद। और हम और आप आज बात कर रहे हैं, बल्कि कुछ ही घंटों पहले जो बिल का मसौदा है, जो बिल प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था अपने वक्तव्य में परसों रात को जब उन्होंने एक वीडियो सेल्फी बना के देश के युवाओं से संपर्क करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम कैबिनेट में एक बिल लेके आने वाले हैं। जो पुराना बिल 2024 में सरकार ने पास किया है उसी को इम्प्रूव किया गया है और उसमें स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए हैं। और जो महत्वपूर्ण बात उसमें ऐड की गई है वो ये की गई है कि स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाएगी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को, जो प्रधानमंत्री ने घोषित किया परसों रात को अपने संदेश में, और कल कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। आज बिल का मसौदा भी हम सबके सामने आ गया है और पार्लियामेंट में ये बिल मंडे को पेश भी होने जा रहा है।
0: यहाँ पर थोड़ा हम श्रोताओं के हित में समझना चाहेंगे कि ये जो मसौदा बिल आया है उसमें क्या सब बातें रखी गई हैं और कैसे ये आने वाले दिनों में सुधार के कारक बनकर सामने आएंगे।
1: इस बिल का जो नाम है वो है पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024। मैंने जैसे कहा कि ये नया बिल नहीं है, 2024 का बिल है, उसमें संशोधन लाएगी सरकार। संशोधन के माध्यम से नई पनिशमेंट्स घोषित करेगी और जो नए मसौदा तैयार किया है उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग देगी। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मुझे इम्पोर्टेंट लगती है, वो ये है कि पनिशमेंट बढ़ा दी गई है। जो पुराना बिल था 2024 का, उसमें ये कहा गया था कि जब कोई इंडिविजुअल पेपर लीक के मामले में लिप्त पाया जाएगा तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी 3 से 5 वर्ष की और उस पे जो फाइन होगा वो 10 लाख का होगा। अब उसको बदल के कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट 5 साल की होगी और जो फाइन होगा वो 10 लाख से बढ़कर 1 करोड़ तक ले गए हैं। और सिमिलरली अगर यही क्राइम ऑर्गेनाइज तरीके से कोई कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड नेक्सस इन्वॉल्व है, तो उसके लिए सजा के प्रावधान और भी कड़े किए गए हैं। उस केस में कहा गया है कि मिनिमम पनिशमेंट

0: 7 साल होगी और मैक्सिमम जो फाइन होगा वो 10 करोड़ होगा। तो ये मेन इस बिल की प्रावधान है। ये तो हो गया कि आपने पनिशमेंट बढ़ा दी, लेकिन सिर्फ पनिशमेंट बढ़ाने से कुछ नहीं होता। हमें पता है कि केसेस लंबित रहते हैं लंबे लंबे समय तक। उसको ठीक करने के लिए इस बिल में एक इम्पॉर्टेंट प्रावधान जो मुझे लगता है वो ये है कि तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये पावर्स दे दी गई हैं कि वो किसी भी कोर्ट ऑफ सेशंस को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट घोषित कर सकते हैं इस कानून के तहत दर्ज मामलों को निपटाने के लिए। और ये भी कहा गया है कि जितनी भी प्रोसीडिंग्स इन मामलों में होंगी वो हर दिन होंगी, डे टू डे बेसिस पर चलेगा ट्रायल, और ट्रायल 3 महीने में कंप्लीट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, उन्होंने ये भी कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एम्पावर कर दिया गया है कि जब जब ऐसा कोई बड़ा मामला आए नजर में तो इमीडिएटली स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करके उस एसटीएफ को ये मैंडेट होगा कि आपने 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है। अभी क्या हो रहा है ना, सिस्टम में मिसट्रस्ट इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि लंबित बहुत हैं केस। आप कानून लाकर सिस्टम को परिवर्तित नहीं कर सकते, आपको कानून को अमली जामा पहनाने के लिए जो सिस्टम्स चाहिए वो भी क्रिएट करने पड़ेंगे। मेरे हिसाब से बड़ा चैलेंज जो सरकार के सामने आएगा वो फाइनेंसिस का आएगा।
1: अच्छी बात कही है कि पिछले कानून से किस तरह ये कानून बदला हुआ होगा, अधिक सख्त होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि एक मामला शुरू हुआ और आमतौर पर ये मामले दम तोड़ देते जब पुख्ता सबूत नहीं रखे जाते। वहां पर कैसे कह लें कि उस प्रक्रिया का ध्यान रखा जाएगा, यानी अदालतें बन गई। जैसे अभी यदि हाल का एक मामला लें तो उसमें जिस व्यक्ति को आरोपी ठहराया गया उसके विरुद्ध फिलहाल कोई सबूत नहीं मिलने से वह छूट गया, तो वहां पर क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए?
0: इसमें मुझे लगता है कि प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी भूमिका है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट होता है ऐसे केसेस में वो कितना लायक है, वो कितने अच्छी तरीके से आर्ग्यू कर सकता है मैटर, और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है वो कितनी क्विकली फॉरेंसिक एविडेंस गैदर कर सकती है, कितनी जल्दी डिजिटल इम्प्रिंट्स को देख सकती है, क्योंकि लीकेजेस तो अब डिजिटल माध्यम से हो रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सारा का सारा एग्जाम ऑनलाइन है, तो उससे क्या है, साइबर सिक्योरिटी चैलेंज है। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को ये सोचना होगा कि जो स्पेशल टास्क फोर्स गठित किया जाएगा ऐसे क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसमें आपको एक्सपर्ट्स भी कोऑप्ट करने पड़ेंगे। अब ये जो वक्त है, ये जो जमाना है, उसमें कन्वेंशनल पुलिसिंग मेथड से आप क्रिमिनल गैंग्स को नहीं हैंडल कर सकते। आपको बहुत हाई लेवल की एक्सपर्टीज हर सेक्टर में चाहिए।
1: यहाँ पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि इस दिशा में एनटीए क्या कर रही है और किस रूप में अपने आप को पेशेवर बनाने के लिए पेशेवर लोगों की सलाह लेने की योजना बना रही है।
0: इनफैक्ट परसों हमने देखा कि सरकार ने एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से नए पोस्ट्स घोषित किए हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। उन्होंने ये कहा है कि नियुक्ति के लिए अब 4 जनरल मैनेजर्स बुलाए जाएंगे। अभी क्या है, अभी जो स्ट्रक्चर है बहुत सेंट्रलाइज्ड है, जैसे सबसे ऊपर एक चेयरमैन है, उसके नीचे सीईओ है। तो लेकिन अब डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर बनाने की बात हो रही है। इसके साथ ही संघ लोक सेवा आयोग के जो प्रतिभा सेतु पोर्टल के माध्यम से 16 युवा पेशेवरों को भी भर्ती में शामिल किया जाएगा, उनकी भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। एनटीए ने एक बयान में ये भी कहा है कि ये उपाय एजेंसी के जो संस्थागत पुनर्निर्माण की दिशा है उसके लिए हेल्प करेंगे।
1: यदि श्रोताओं, कुल मिलाकर सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही है कि हमारी जो राष्ट्रीय परीक्षाएं हैं या राज्य स्तर की परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित की जाए, और इसके लिए जिस तरह तकनीक बदल रही है, तकनीक हावी हो रही है, उसके निदान के लिए जो हमारा वैधानिक ढांचा है उसमें वैसे ही दक्ष पेशेवरों की नियुक्ति की जाए। यहाँ पर अदिति जी, आपने कहा कि इसे वैधानिक स्वरूप दिया जाएगा, ढांचा तैयार किया जाएगा, किस रूप में परिवर्तन होता देख रही हैं आप वहाँ उस स्तर पर?
0: देखिए, परिवर्तन कितना हो पाएगा वो वक्त बताएगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव सिग्नल इस वक्त है वो ये है कि परिवर्तन की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। ये जो लड़ाई है मनोज जी, ये बहुत लंबी है, और ये जो पेपर लीक का मामला है, ये सिर्फ पेपर लीक का मामला चीटिंग से लिंक करके नहीं आप देख सकते। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है स्टूडेंट्स के माइंड पे, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट होता है। आप सब जानते हैं कि मिडिल क्लासेस बच्चा पैदा होते ही पैसा जमा करना शुरू कर देती हैं कि देश में अच्छे एजुकेशन में या अच्छे कॉलेज में अगर बच्चे की भर्ती करानी है तो उसे अच्छे स्कूल में भेजना है, उसकी एक कॉस्ट है, अच्छी कोचिंग दिलानी है, वो कितनी एक्सपेंसिव है हम सब जानते हैं। उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे को सीट मिलेगी। यही वजह होती है कि बच्चों की इमोशनल और साइकोलॉजिकल

0: वल्नरेबिलिटी पर ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप्स फीड करते हैं।
1: थोड़ा इसे और विस्तार देकर बताएं कि सिस्टम में बदलाव किस तरह का और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस रूप में।
0: मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो ये है कि एग्जामिनेशन सिस्टम तब फूल प्रूफ हो सकता है जब उसमें ग्रेडिंग हो, ये प्रामाणिक है। आप देखिए कौन कौन से एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हमारे देश में हैं, जिनमें या तो आप बिल्कुल नहीं सुनेंगे कि लीक हुए हैं या बहुत नेग्लिजिबल हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी का एग्जाम देखिए, वो कभी क्यों नहीं लीक होता।
1: बिल्कुल,
0: आप उस मसौदे को समझिए,
1: आर्म फोर्स हैं उनके
0: आर्म फोर्सेस के लीक नहीं होते। आप और भी समझिए, जब से आपने आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को ग्रेडेड बना दिया है, जैसे पहले क्या होता था कि एक ही एंट्रेंस एग्जाम होता था AIEEE। मुझे आज भी याद है 2011 में एक बहुत बड़ा पेपर लीक हुआ था जिससे बहुत सारे बच्चे बहुत त्रस्त हुए थे। उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा। आप जानते हैं पहले JEE मेन कंडक्ट होता है, उसमें एक पर्टिकुलर लेवल के बच्चे जो टॉप 25% आते हैं उनको मौका मिलता है IIT में जाने का। उससे होता क्या है, जब आप ग्रेडेड एग्जामिनेशन सिस्टम बनाते हैं कंपटीशन के लेवल पे, आप डिसइंसेंटिवाइज करते हैं कि बच्चे पैसा देके पेपर खरीदें। क्यों? क्योंकि पहले लेवल पर आप निकल जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। जब कोई गारंटी नहीं है तो कोई इंसेंटिव नहीं है पैसा देने का, तो आप डिमांड और सप्लाई के साइकिल को तोड़ सकते हैं ग्रेडेड सिस्टम में। सिमिलरली यूपीएससी में तीन लेवल्स हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि प्रिलिमिनरीज होते हैं, उसके बाद मेन्स होते हैं, उसके बाद इंटरव्यू होता है। किस किस लेवल पर कोई लीकेज के लिए पैसे देगा। सो ये एक सिंपल इजीली डूएबल एक फॉर्मूला है। जो AIPMT का एग्जाम भी पहले ग्रेडेड होता था, उस वक्त लीकेजेस मुझे लगता है कम होते थे। जब से आपने सिंगल एग्जाम बनाया है, ये जो NEET UG है, आपने जब से इसको सिंगल एग्जाम बनाया, 22 लाख बच्चे बैठते हैं। 500 सिटीज में होता है, जिसको कहते हैं बहुत बड़े स्केल पर ये एग्जाम होता है। 22 लाख बच्चों को एक साथ टेस्ट करना और उनको एक ही विंडो में MBBS की सीट देना, थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर हम ग्रेडेड एग्जाम करेंगे NEET UG को, जैसा कि पहले होता था दो लेवल्स पर, पहले स्क्रीनिंग और फिर सिलेक्शन, तो शायद ये लीकेजेस का इंटेंसिटी कम होगा। ये प्रामाणिकता से मैं इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है।
1: अच्छा, कुछ राज्यों की ओर से इस नीट परीक्षा प्रणाली को ही लेकर विरोध जताए जा रहे हैं, उस दिशा में कुछ सुधार की या एक रूपता लाने की कोई भूमिका बनती नजर आ रही है आपको?
0: बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु ने शुरुआत से NEET UG का विरोध किया है। उनका ये कहना था कि 12वीं कक्षा के एग्जामिनेशन के बेसिस पे हमारी स्टेट में एक MBBS की एडमिशन होती थी और वो चलती रहनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आज की डेट में अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन मॉडल स्टडी करेंगे, उसमें JEE मेन और JEE एडवांस्ड का मॉडल बहुत अच्छा है। IITs के टॉप डायरेक्टर्स ने मिलकर उसे बनाया है, उसमें बहुत लेवल हुई थी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन की, और उसमें 12वीं के रिजल्ट्स का भी एक पोर्शन काउंट होता है। फिर वही मैं कहूंगी कि NEET UG बहुत बार लीक हुआ है, तीन बार तो रिसेंट हिस्ट्री में हुआ है। तमाम मॉडल्स को स्टडी करने के बाद आप ये भी देखिए कि क्या कहीं NEET UG के स्ट्रक्चर को ही चेंज करने की जरूरत तो नहीं है।
1: यानी श्रोताओं, एक आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता परीक्षा प्रणाली को है ऐसा लग रहा। बस यहीं पर हम श्रोताओं आपकी ओर से अदिति जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे परीक्षा संचालन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार के ठोस कदमों पर चर्चा। इसमें भाग ले रही थी वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: सुर्खियों में
4: मीडियम वेव 462.96 मीटर यानी 648 किलो हर्ट्ज पर आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है आकाशवाणी का इंदौर केंद्र। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, उदित नारायण और साथियों की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत। फिल्म का नाम है दिल तो पागल है।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: इस समय आप हैं हमारे साथ।
3: जी हाँ, मालवा की शान आकाशवाणी इंदौर के साथ।
0: फाइनेंशियल इमरजेंसी
4: आकाशवाणी के इंदौर केंद्र से अब आप सुनिए अदनान सामी की आवाज में किसी दिन फिल्म का गीत, और संगीत है अदनान सामी का ही।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज में प्रीतम का संगीत और कुमार का गीत। फिल्म का नाम था दिल तो बच्चा है जी। इस गीत के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 8:45 होने को है। कुछ पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कांग्रेस जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की

0: बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सकें, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहलों के माध्यम से भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: श्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की मांग स्वीकार कर ली है।
2: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों तथा विनियमों के अनुरूप अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन वट एवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: परीक्षा सुधारों पर सीजेपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने यह बात कही।
3: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: श्री त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। नई दिल्ली में उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी विजेंद्र कुमार गुप्ता और उसके सहयोगी

0: इंद्रजीत विनय कुमार सिंह को भिवंडी की एक अदालत ने 30 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। दोनों को बिहार के समस्तीपुर से गिरफ्तार किया गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा कि पेपर लीक माफिया इन्हीं पार्टियों की देन है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त कानून ला रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं। यात्रा के अंतिम चरण में उन्होंने रोमानिया के राष्ट्रपति निकोशो डान के साथ व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा और संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से व्यापक चर्चा की। बुखारेस्ट में उन्होंने भारतीय समुदाय के सदस्यों के साथ बातचीत की। राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय को दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया।
1: भारतीय प्रवासी समुदाय एकजुट होकर रोमानिया में भारत की सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए। भारतीय आईटी इंजीनियरिंग स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स तथा विद्यार्थियों की नई पीढ़ी अब रोमानिया को अपना घर बना रहे हैं। रोमानिया की अर्थव्यवस्था और समाज में अपना योगदान तथा यहाँ भारतीय संस्कृति और मूल्यों के प्रसार के लिए आपके प्रयास आपको भारत का सच्चा प्रतिनिधि बनाते हैं।
0: विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के बीच कानूनी सहयोग मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सरकार नियमित संवाद और रचनात्मक परामर्श के माध्यम से कर्मचारी संगठनों के साथ जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध भारतीय डाक कर्मचारी संघ के 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत के दौरान ये बात कही। डॉ सिंह ने बताया कि लगभग 3 दशकों से लंबित कई पुरानी सेवा संबंधी शिकायतों का समाधान पारदर्शी और कर्मचारी केंद्रित संचालन के माध्यम से किया गया है। रसायन और उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा ने आज नई दिल्ली में लघु उद्योग भारती फार्मा कॉन्क्लेव 2026 का उद्घाटन किया। श्री नड्डा ने कहा कि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर राष्ट्र निर्माण का एक प्रमुख स्तंभ है, जो नवाचार को बढ़ावा देता है, रोजगार सृजित करता है और सस्ती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सारनाथ भारत की शाश्वत आध्यात्मिक और दार्शनिक विरासत का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया भर के लोग सारनाथ आने और भगवान बुद्ध के आदर्शों से जुड़ने के लिए प्रेरित होंगे। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सारनाथ मानवता के लिए भारतीय सभ्यता के गहन आध्यात्मिक और दार्शनिक योगदान को दर्शाता है। ओडिशा के पवित्र नगर पुरी में ग्रैंड रोड पर भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा देश विदेश से आए श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पुरी में ग्रैंड रोड पर अपने शानदार रथों पर विराजमान भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा आज पवित्र सोना वेश, स्वर्ण वेश में बेहद भव्य लग रहे हैं। उन्होंने बेहद खूबसूरती से बने मुकुट, हार, बाजूबंद, झुमके और अन्य पारंपरिक आभूषण पहने हैं। सालाना रथ यात्रा की सबसे भव्य रस्मों में से एक इस पवित्र स्वर्ण वेश के दर्शन के लिए आम लोगों को आधी रात तक का समय मिलने का उम्मीद है, जिससे लाखों भक्त इन तीनों पवित्र देव रूपियों की दिव्य भव्यता के दर्शन कर सकेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: लद्दाख में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह का पहला दिन आज शाम द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित शौर्य संध्या समारोह के साथ संपन्न हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्रास पहुंचे और समारोह में शामिल हुए। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री ने करगिल शहीदों के परिजनों को श्रद्धांजलि अर्पित कर ऑपरेशन विजय के वीर योद्धाओं के सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। आकाशवाणी कल करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत प्रसारित करेगा। कार्यक्रम का प्रसारण कल दोपहर 12:30 बजे 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी ने 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की खपत कम हुई है। इस रेलगाड़ी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई को जींद और सोनीपत के बीच रवाना किया था। यह परियोजना भारतीय रेलवे के नेतृत्व में एक स्वदेशी पहल है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने सोने की तस्करी करने वाले गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 27 किलो से अधिक विदेशी सोना जब्त किया है और 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस सप्ताह देशभर में खुफिया जानकारी के आधार पर कई अभियान चलाए गए। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कल अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में भी अगले दो दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कल तेज वर्षा होने की आशंका है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में सोमवार तक बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम में बाढ़ से हुई जानमाल की हानि और तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने इस आपदा से प्रभावित सभी लोगों की सुरक्षा और बचाव, राहत और पुनर्वास कार्यों में लगे सभी कर्मियों के कुशल मंगल की कामना की। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरा देश असम के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। और अब बात खेलों की। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। ईशान किशन ने शानदार 81 रन की पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तीन मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 की बढ़त बना ली है। अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में उनका सामना आज रात मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। कॉकरोच जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह के साथ बातचीत और सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना। उत्तर प्रदेश में सारनाथ के प्राचीन बौद्ध स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और हरारे में भारत ने दूसरे T20 क्रिकेट मैच में मेजबान जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं चित्रगीत और अब सुनिए शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत। संगीत है SD बर्मन का, आवाजें गीता दत्त और मोहम्मद रफी की हैं। फिल्म का नाम है काला बाजार।

0: उनके मत वाले काले बादलों का शोर
1: झूम झूम

0: इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बढ़ा सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म का नाम है श्री 420, आवाजें मुकेश और साथियों की।

0: जगत की बात करें तो ये महीना भारत के लिए उपलब्धियों से भरा रहा है। इन्हीं उपलब्धियों को कार्यक्रम में पिरोते हुए आज की पहली भेंट वार्ता में हम प्रोफेसर विनीत विश्नोई से जानेंगे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के बारे में। आज ही के कार्यक्रम में रेयर अर्थ मटेरियल के रहस्य को सुलझाएंगे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण। दोस्तों 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस मनाए जाने के अवसर पर IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता बताएंगी क्या होती है IVF तकनीक। इसी कार्यक्रम में आगे बाघों के संरक्षण के महत्व और नवीन तकनीकों की जानकारी देंगे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बड़ोला। कार्यक्रम के आखिरी छोर पर जानेंगे उत्तराखंड की नई विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति के बारे में यूकॉस्ट के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत से। और फिर अंत में जुलाई माह से जुड़े प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं की जानकारी देंगी रितिका बिंजोला। कार्यक्रम में ये सब कुछ होगा, लेकिन आइए पहले सुनते हैं रितिका बिंजोला से ताज़ा विज्ञान समाचार।
1: जुलाई 2026 को भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। हैदराबाद स्थित निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने आधुनिक विक्रम 1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। मिशन आगमन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 12 बजे उड़ान भरने वाले इस रॉकेट ने पेलोड्रस को सफलतापूर्वक 450 किलोमीटर लो अर्थ

0: ऑर्बिट में स्थापित कर दिया है। इस ऐतिहासिक लॉन्च के साथ भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके पास ऑर्बिटल क्षमता वाले रॉकेट लॉन्च करने वाली अपनी खुद की निजी कंपनी मौजूद है। 17 जुलाई 2026 को भारत ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन नमो ग्रीन रेल की शुरुआत की। हरियाणा के जींद से सोनीपत रूट पर रवाना की गई ये स्वदेशी ट्रेन पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त है क्योंकि ये पारंपरिक डीजल के बजाय हाइड्रोजन से चलती है और इसके इंजन से धुएं की जगह केवल जल वाष्प यानी वाटर वेपर निकलता है। हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज मिशन के तहत शुरू की गई इस तकनीक से भारत अब जर्मनी और चीन जैसे चुनिंदा देशों के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया है जो देश के नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को हासिल करने में मददगार साबित होगा। अब चलते हैं चीन की ओर। 17 जुलाई से शंघाई में आयोजित वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2026 में ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने सभी को हैरान कर दिया। यहाँ 400 से अधिक ह्यूमनॉइड यानी इंसानों जैसे रोबोट एक साथ प्रदर्शित किए गए। कोई लोगों का स्वागत कर रहा था, कोई सामान उठा रहा था तो कोई बातचीत कर रहा था। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में ऐसे रोबोट अस्पतालों, कारखानों, घरों और बुजुर्गों की देखभाल जैसे कई क्षेत्रों में हमारी मदद कर सकते हैं। 14 जुलाई 2026 को भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री डॉक्टर अनिल मेनन कजाकिस्तान से बैकोनूर कॉस्मोड्रोम से रूसी सोयुज M29 अंतरिक्ष यान के जरिए सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए। पेशे से आपातकालीन चिकित्सक डॉक्टर मेनन का ये पहला अंतरिक्ष मिशन है जिसके तहत वे करीब 8 महीनों तक ISS पर रहकर अंतरिक्ष में मानव स्वास्थ्य सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में चिकित्सा तकनीकों और वैज्ञानिक प्रयोगों पर शोध करेंगे। उनकी ये ऐतिहासिक उपलब्धि दुनिया भर के उन करोड़ों युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। 15 जुलाई 2026 को भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एक बड़ी तकनीकी क्रांति हुई जहां घरेलू स्टार्टअप वेमेग लैब्स ने देश की पहली वर्चुअल मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर का सफल अनावरण किया। इस अत्याधुनिक मोटर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बिना किसी महंगे रेयर अर्थ मैग्नेट दुर्लभ पृथ्वी चुंबकीय तत्वों के काम करती है जिससे विदेशों पर निर्भरता खत्म होती है। इसके बजाय ये स्वदेशी तकनीकी जैसे तांबे की कुंडलियां, कॉपर कॉइल जिसे हम कहते हैं, और एक स्मार्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है जो चुंबकीय प्रभाव को पैदा करता है जिससे ईवी उत्पादन लागत में भारी कमी आएगी। चलिए अब सीधे रुख करते हैं गहरे और अनसुलझे ब्रह्मांड की ओर। 21 जुलाई 2026 को खगोलविदों ने एक ऐसी खोज की है जिससे पता चला है कि अंतरिक्ष में एक विशाल जुपिटर यानी बृहस्पति के द्रव्यमान जितने बड़े ऑब्जेक्ट की खोज हुई है जिसे एक एक्सोसैटेलाइट या अनोखा चांद कहा जा रहा है। ये खोज ब्रह्मांड में ग्रहों, चंद्रमाओं और हमारी पुरानी परिभाषाओं को चुनौती दे रही है। 21 जुलाई 2026 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक अभूतपूर्व खोज करते हुए एक मामूली सिलिकॉन चिप को DNA राइटिंग मशीन में बदल दिया। ये आधुनिक चिप पानी और बिजली की मदद से एक साथ कई जटिल DNA सीक्वेंस लिख सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक से भविष्य में डेटा स्टोरेज की दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी जहां कंप्यूटर का डेटा किसी पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के बजाय सुरक्षित जैविक DNA में स्टोर किया जा सकेगा। वहीं 22 जुलाई 2026 को सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट नोबल और उनकी टीम ने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए इवोल्यूशनरी थ्योरी और मैथमेटिकल मॉडलिंग पर आधारित एक नई रणनीति विकसित की है जिसमें एडिटिव थेरेपी का उपयोग कर ट्यूमर को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। ये नई पद्धति पारंपरिक उपचार के विपरीत कैंसर कोशिकाओं में दवा प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदलकर ट्यूमर को लाचार बना देती है जिससे प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती ट्रायल में ही बेहद सकारात्मक परिणाम इनके सामने आए हैं। डॉक्टर नोबल की टीम ने ये साबित किया है कि अगर ट्यूमर को संभालने का मौका दिए बिना सही समय पर यानी थेरेपी के खिलाफ रेजिस्टेंस विकसित होने से पहले ही दवाओं को तेजी से बदल दिया जाए तो कैंसर कोशिकाएं पूरी तरह लाचार हो जाती हैं और हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं।
1: 18 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के इस उद्घोष के साथ भारत ने आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में एक बड़ी छलांग लगाई है।
2: आज ही हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन भी शुरू हुई है। क्लीन फ्यूल पर चलने वाली ये ट्रेन एक बहुत बड़ी शुरुआत है।
1: भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ये ट्रेन न सिर्फ ईंधन आयात की मुक्ति के सपने की ओर एक कदम है, बल्कि विज्ञान जगत में भारत की ओर से एक नए कीर्तिमान का भी प्रतीक है। आइए जानते हैं डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में रसायन विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विनीत विश्नोई से आसान भाषा में, आखिर ये हाइड्रोजन फ्यूल सेल है क्या?
3: हाइड्रोजन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल में, वो एक बेसिक केमिकल रिएक्शन पर आधारित है जिसमें कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाकर पानी बनता है। तो ये रिएक्शन एक सामान्य रासायनिक क्रिया है जिसका उपयोग हम करते हैं विद्युत ऊर्जा को बनाने में। अब यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल के अंदर में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, या कह लीजिए आप दो सिरे हैं। एक सिरे पे हम हाइड्रोजन देते हैं और दूसरे सिरे पे हम वातावरण से ऑक्सीजन लाकर देते हैं। दोनों का जब रिएक्शन होगा तो पानी बनेगा। कार्य करने का तरीका इसमें ऐसा है कि हाइड्रोजन को पहले जो है जिस इलेक्ट्रोड पर वो पहुंचती है वहां पे एक कैटलिस्ट दिया हुआ है प्लेटिनम, और जब प्लेटिनम के संपर्क में वो हाइड्रोजन गैस आती है तो उसका विखंडन होता है, वो मॉलिक्यूलर रूप से आयनिक रूप में प्रवेश करती है, और इस प्रक्रिया में उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद प्रोटॉन बन जाती है वो गैस, और प्रोटॉन जो है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर चलना शुरू कर देती है। यहां बीच में एक झिल्ली होती है जो विशेष रूप से इस क्रिया के लिए बनाई गई है जिससे पार होकर प्रोटॉन जा सकते हैं, मतलब इट इज सेलेक्टिवली फॉर द प्रोटॉन ट्रांसफर। तो प्रोटॉन इधर से निकलकर दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर वो ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़कर प्रोटॉन निकल के गया था, वो इलेक्ट्रॉन बाहरी तार से, जो दो इलेक्ट्रोड को जोड़ने के लिए हमने बाहर तार लगा रखा है जो हम सर्किट कहते हैं, उसमें हम कोई भी उपकरण लगा सकते हैं, उस तार में वो इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं और ये विद्युत का स्वरूप है, और इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। तो एक प्रकार से कह लीजिए एक छोटा सा एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जिसमें हम हाइड्रोजन का उपयोग करके बिजली पैदा कर रहे हैं।
1: इस ट्रेन को ग्रीन हाइड्रोजन से चलाया जा रहा है। कैसे बनता है ये ग्रीन हाइड्रोजन, इस पर प्रोफेसर विनीत कहते हैं,
3: जब हम किसी भी चीज को बनाते हैं तो उसमें हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ऊर्जा को पाने के लिए हम कोयला भी जला सकते हैं, ऊर्जा को पाने के लिए हम जैसा कि कच्चा तेल जलाते थे वो भी जला सकते हैं, किंतु अगर हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करने लगे, जो ऊर्जा हमको सीधे मिल रही है उसका इस्तेमाल करने लगे और उससे डायनेमो चलाने लगे, बिजली उत्पन्न करने लगे, दैट इज कॉल्ड ग्रीन एनर्जी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि सोलर एनर्जी को टैप कर रहे हैं, विंड एनर्जी को टैप कर रहे हैं, और उस एनर्जी का उपयोग करके जैसे कि जिंद में जब ये ट्रेन चली सोनीपत के लिए, तो वहां पर हमारे हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स जो है ट्रेन में लगे हैं, पर रिचार्जिंग स्टेशन भी तो चाहिए। उसके लिए जिंद में ही साइड में ही रेलवे स्टेशन के बगल में ही वहां पे स्टोरेज कंटेनर डेवलप किया गया है, टैंक्स डेवलप किए गए हैं हाइड्रोजन के लिए, 3000 kg उसकी क्षमता है, और वहां पे हाइड्रोजन को हाई प्रेशर में टैंक्स में भरकर रखा गया है, और उस हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, पानी का उपयोग किया है, और पानी को इलेक्ट्रोलाइज करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसमें से हाइड्रोजन अलग करने के लिए हमने जिस बिजली का इस्तेमाल किया है वो सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा के माध्यम से हमने पानी को तोड़ा और पानी में से हाइड्रोजन को निकाला और उसको हाइड्रोजन टैंक्स में एकत्रित कर लिया, वो हमारा हो गया सोर्स ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कहीं पर भी जो है हमने उत्सर्जन नहीं किया और प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत इस्तेमाल किया है जो कि सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, और फिर इस हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स ट्रेन में उनको रिफ्यूल करने में इस्तेमाल किया, और जब इसका उपयोग आगे चला तो इसमें एमिशंस भी जो है 100% कार्बन फ्री है, कहीं पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और वापस वो जो पानी विखंडित करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया और यहाँ पर उपयोग कर लिया इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, विद्युत बनाने में, तो बाद में वही हाइड्रोजन वापस प्रोटॉन के रूप में जब आ गए थे वो ऑक्सीजन से मिलकर वापस वो पानी बना गए, यानी पानी से आप शुरू हुए और पानी ही उत्सर्जित कर दिया, और जो ऊर्जा का उपयोग किया आपने उस हाइड्रोजन को उत्पन्न करने में वो है सौर ऊर्जा। एमिशंस कहीं इसके अलावा और कुछ हुए नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ना ग्लोबल वार्मिंग का खतरा, हम अपने वातावरण को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस स्वरूप में अगर देखा जाए तो इट इज 100% एनवायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल, और ये ग्रीन ईंधन के रूप में आप समझ सकते हैं।
1: दोस्तों, भारत में हाल फिलहाल में ही वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स का आविष्कार हुआ है, और इस आविष्कार ने एक बार फिर से रेयर अर्थ मटेरियल्स को चर्चा में ला दिया है। आईआईटी कानपुर में इसी क्षेत्र में पोस्ट डॉक कर रहे डॉक्टर नवनीत कुमार कर्ण समझाते हैं कि रेयर अर्थ मटेरियल्स आखिर है क्या और ये इतने खास क्यों है।
4: रेयर अर्थ मतलब दुर्लभ धातु है जो कि हम धरती पे बहुत कम पाए जाते हैं। कम इस सेंस में है कि ये हैं धरती में बहुत सारे, बट इनको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल है। 15 से 20 धातु ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, और ये स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ये मैग्नेटिक होते हैं जनरली, और इनका परमानेंट मैग्नेट के तौर पे बहुत इस्तेमाल होता है। तो आजकल जितने भी ड्रोन्स देखते हैं या रोबोट्स देखते हैं उसमें मोटर्स का बहुत फंडामेंटल यूज है। जहां भी मूवमेंट है तो मोटर से कंट्रोल होता है, तो मोटर जो चलता है वो बस मैग्नेट के बेसिस पे चलता है। तो आपका जितना अच्छा मैग्नेट होगा उतना बढ़िया एनर्जी कन्वर्जन होगा। तो उच्च क्वालिटी के जो मैग्नेट होते हैं वो इन रेयर अर्थ मटेरियल से बनता है।
1: आजकल मोटरों में इस्तेमाल होने वाली चुंबक यानी मैग्नेट्स का रेयर अर्थ खनिजों से क्या संबंध है, इस बारे में डॉक्टर नवनीत कहते हैं।
4: परमानेंट मैग्नेट जनरली फेरोमैग्नेटिक होते हैं। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में उस मैग्नेटिक मटेरियल को डालेंगे जो परमानेंट मैग्नेट है, तो उनका एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव से निगेटिव, फिर निगेटिव से वापस जीरो लाएंगे, तो एक हिस्टेरेसिस लूप बनता है उनके मैग्नेटाइजेशन का, कि उनमें कितना मैग्नेटिक इंड्यूस हो रहा है। तो उसके अंदर एक एरिया बनता है, तो वो एरिया जो है वो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो वो एरिया जितना बड़ा होगा, जितना ब्रॉड होगा, तो वो एनर्जी उतना एफिशिएंटली कन्वर्ट करने का, यूज करने का मैग्नेट बनता है।

0: परमानेंट मैग्नेट्स अकेले परमानेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स नहीं बनते हैं, उनके रेयर अर्थ एलिमेंट्स और कुछ एक जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं उन्हें, उनके मिश्रण के साथ बनाए जाते हैं। जैसे एनडी एफई बी बोरोन करके एक परमानेंट मैग्नेट है, बहुत फेमस कॉमन मैग्नेट है, तो एनडी जो है इसमें वो रेयर अर्थ एलिमेंट है। तो इस तरह से जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो एनडी की वजह से काफी ज्यादा होती है। परमानेंट मैग्नेट आप आयरन से भी बना सकते हैं लेकिन उसकी एफिशिएंसी उतनी ज्यादा अधिक नहीं होगी, बजाय की जब हम एनडी और एफई को मिला के बनाते। तो इस तरह से हमारे पास जो रेयर अर्थ वाले हैं वो एनर्जी एफिशिएंटली काम करते हैं। इनका एक और एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, जो हमारे हवाई जहाज के वो होते हैं ना मटेरियल जिनसे बनाया जाता है, तो उनके एलॉय में भी ये रेयर अर्थ वाले यूज होते हैं। स्कैंडियम और ये ट्रियम करके दो है रेयर अर्थ, उनके यूजेज होते हैं। तो वो एल्यूमिनियम के साथ एक ऐसा एलॉय बनाते हैं जो काफी मजबूत होते हैं।
1: डॉक्टर नवनीत बताते हैं कि आखिर रेयर अर्थ मटेरियल्स इतने रेयर क्यों होते हैं।
0: रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स हैं वो जनरली मतलब रिएक्टिव होते हैं काफी, कुछ एक हैं बहुत कम रिएक्टिव होते हैं और मोस्टली जो है वो काफी रिएक्टिव होते हैं। तो वो किसी न किसी फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि वो जैसे आयरन आपको मिल जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली, जितना आसानी से उतनी आसानी से आप रेयर अर्थ को निकाल सकते हैं, क्योंकि वो उन कंपाउंड में फॉर्म होते हैं तो उनको एक्सट्रैक्ट करना केमिकली थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो वो प्रोसेस अपने आप में एक बड़ा प्रोसेस है उनको एक्सट्रैक्ट करना, तो इस तरह से वो थोड़े डिफिकल्ट है। और साथ में उनकी अबंडेंस है लेकिन वो बहुत स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे मतलब एक होता ना कि आपके पास एक कोई खनिज है तो एक जगह काफी इकट्ठे हैं, तो वहां से आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो वहां से आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसमें आपको कॉस्ट भी कम पड़ेगा। अमाउंट है उनका ठीक ठाक लेकिन स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको फिर एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा बड़ा अमाउंट है उसमें से आपको थोड़ा कम अमाउंट का पदार्थ निकालना है, तो इस वजह से भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो इंडिया में ऐसा है, एक मोनाजाइट करके खनिज है जो कि आप केरल का बीच है, वो कोंकण वाला बीच जो है उसके अराउंड पाया जाता है, बहुत सारे खनिज है उसमें। फिर इंडिया में देखें तो गुजरात के साइड भी है।
1: भारत में हालिया वर्चुअल मैग्नेट मोटर्स के आविष्कार से बदले हुए समीकरणों पर डॉक्टर नवनीत कहते हैं,
0: तो भविष्य में ये है कि इंडिया ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। अगर हम टेक्नोलॉजिकली देखें तो जो मोटर डिस्कवर हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये एक तरीके से सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस सा दे रहा है, क्योंकि जो आज दुनिया में पूरे ग्लोबल लेवल पे रेयर अर्थ का जो सप्लाई है वो चाइना के पास है, तो वो इन चीजों को बहुत अच्छे से ग्लोबली कंट्रोल करता है। तो अगर हम इस संदर्भ में देखें इंडिया की डिस्कवरी, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि आप एक सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट मोटर बना रहे हैं जहां पे इस मटेरियल की बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो आप इससे इंडिपेंडेंस ले रहे हैं।
1: दोस्तों, स्टेम सेल और IVF तकनीक का विकास मानव इतिहास के सबसे बड़े अध्यायों में से तो एक माना ही जाता है, लेकिन इस तकनीक ने धरती पर मानवों को सबसे शक्तिशाली जीव के रूप में भी स्थापित किया है। 25 जुलाई को विश्व IVF दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं IVF विशेषज्ञ डॉक्टर आकृति गुप्ता से सरल नजरिए से IVF तकनीक क्या है।
2: तो बेसिकली जो IVF है उसका साइंटिफिक ये है कि कोई महिला बचपन से जूझ रही होती है तो उसमें रीजंस ढूंढे जाते हैं पहले, तो कि क्या रीजन है जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो रहा। तो ओव्यूलेशन फैक्टर होता है, ट्यूबल फैक्टर होता है, फिर उसके बाद ये दो मेजर फैक्टर्स होते हैं जो 60% का एक चंक बनाते हैं फीमेल्स में। उसी तरह मेल्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि क्वांटिटी, उनके मोटिलिटी स्पर्म की, उसकी शक्ल अपीयरेंस। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि देखा गया कि वो हेल्प नहीं हो पा रही है विद मेडिसिन या इंजेक्टेबल्स, की कंसीव नहीं कर पा रहे कपल्स नेचुरली, या विद स्मॉल प्रोसीजर्स लाइक IUI इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन, जो कि एक हेल्प होती है नेचुरल प्रोसेस में। उसके लिए फिर IVF का एक माध्यम डेवलप हुआ और इंडिया में वेस्ट बंगाल में फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुआ था, एंड ही वॉज अ साइंटिस्ट बेसिकली। तो जब उन्होंने दुर्गा के लिए, मतलब जो फर्स्ट बॉर्न बेबी इंडिया की है वो दुर्गा है, तो उनको लैब में ही उन्होंने क्यूरेट किया था। उस टाइम पे इसे अनएथिकल कहा गया, तो उस टाइम का कॉन्सेप्ट उनका विजन कोई समझ नहीं पाया। फिर प्रॉपरली जाके डॉक्टर हिंदुजा के बॉम्बे में एक ICMR की स्टडी हुई, रिक्रूट हुए पेशेंट्स, एंड देन आफ्टर अ फ्यू ईयर्स ऐसे करके प्लान हुआ। तो जो चीज उस टाइम पे अनएथिकल थी, अननेचुरल मानी जा रही थी, आज आप देखिए कितनी आम हो रही है और इसे एक बून माना जा रहा है उन लोगों के लिए जो कि बच्चा नहीं कर पा रहे नॉर्मल तरीके से। तो इसलिए ये एक टेक्निक थी जो लैब में डेवलप हुई थी हेल्प करने के लिए, जिसमें कि एग और स्पर्म यानी कि गेमीट, एक फीमेल और मेल गेमीट को हम फर्टिलाइज करते हैं, नीडल्स होती हैं, सुइयां होती हैं जो डॉक्टर्स मैन्युपुलेट करते हैं, उन्हें एम्ब्रियोलॉजिस्ट कहते हैं, वो उसको आपस में जोड़ते हैं। एक डिश है, डिश के अंदर हमने स्पर्म छोड़ दिए, तो उस प्रोसेस को IVF कहते हैं। लेकिन अगर हम नीडल द्वारा स्पर्म को इंजेक्ट कर रहे हैं एग के अंदर, तो उसे हम ICSI कहते हैं, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ये एक उसका एडवांस्ड प्रोसेस है। तो ये दो मेन टेक्निक्स हैं जो यूज होती हैं कॉमनली। तो ये साइंटिफिक इसका है कि अल्टीमेटली जब वो फर्टिलाइज होता है, फिर उसके बाद डे वन पे जाके 24 आवर्स के बाद हम फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं, फिर उसके बाद दो दिन बाद डे टू एम्ब्रियो चेक करते हैं, फिर डे थ्री होता है, फिर डे फोर होता है, फिर डे फाइव होता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो ये साइंटिफिकली जैसे हम पढ़ते हैं कि बच्चा जब बनता है फेलोपियन ट्यूब में तब जीरो डे है, और फिर स्लोली स्लोली पांचवें दिन तक एंडोमेट्री

0: यानी जो आपकी बच्चेदानी होती है उधर पहुंचता है और फिर चिपकता है, जिसे इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो हम जो बच्चा डालते हैं यानी कि ट्रांसफर करते हैं पांचवें दिन पे करते हैं मोस्टली, तो वो ब्लास्टोसिस बच्चे के चिपकने का चांस बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है उसे ही हम यूज कर रहे हैं।
1: दोस्तों IVF तकनीक को आए अब सालों हो चुके हैं, ऐसे में इस तकनीक के सुधारों पर और भविष्य की संभावनाओं पर डॉक्टर आकृति कहती हैं।
0: तो बहुत सी चीजें डेवलप हो चुकी हैं। आप देखिए टाइम लैप्स इमेजिंग डेवलप हो गई है, जहां कि पहले हम एम्ब्रियोस को देखते थे पांच दिन में दो बार, अभी एक मशीन आ गई है जो मशीन के अंदर हम उन्हें डालते हैं डिश के अंदर ही, सेम एनवायरनमेंट है बट वो कैमरा लगे हैं छोटे छोटे, वो फोटोज लेते हैं उसकी, तो फोटोज खींचते रहते हैं उनकी डेवलपमेंट्स की एट कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, एंड वो इमेजेस फिर स्टडी की जाती है, देखा जाता है कि ऐसी कौन सी डेवलपमेंट है, क्योंकि सब बच्चे चिपक नहीं पाते ना, सब एम्ब्रियोज अच्छी सक्सेस नहीं दे पाते। तो ये देखने के लिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो हम देख सकें इस माध्यम से और हम ये पता लगा सकें कि अच्छा अगर ये चीज दिख रही है तो इसका चांस ज्यादा है चिपकने का बच्चे का, तो यही डालते हैं रादर देन जिसमें वो चीज एब्सेंट है, तो फिर वो निगेट हो जाता है, नेगेटिवली आउट हो जाता है, एग्जिट हो जाता है बच्चा। तो इस सेंस में जो चांसेस हैं अटेम्प्ट्स हैं IVF के वो कम हो जाएंगे, पैसा का खर्चा कम हो जाएगा एंड सक्सेस का चांस बढ़ जाएगा। देन AI सिस्टम ऑफ विटनेसिंग आ गया है, तो मतलब आजकल लैब्स में AI विटनेसिंग हो गई है, ये याद करने की जरूरत नहीं, अगर चार मरीज हैं आज तो भाई ये इसका सैंपल है, वो AI के माध्यम से ही है कि ये इसका सैंपल इस नंबर वाले उसमें पड़ा है ये निकालिए, ताकि मिक्सिंग ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, पेशेंट सेफ रहे, डॉक्टर सेफ रहे।
1: दोस्तों 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है और भारत की बात करें तो बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती संख्या में भारत सबसे अग्रणी देश है, लेकिन बाघों का संरक्षण इतना महत्वपूर्ण है क्यों और विश्व बाघ दिवस की कहानी क्या है, आइए जानते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक डॉक्टर साकेत बडोला से।
2: बाघ एक ग्लोबल स्पीसीज है, इनफैक्ट इसको सबसे ज्यादा आइकॉनिक वाइल्ड लाइफ स्पीसीज के रूप में भी सामने आया है। जिस एरिया में बाघ पाए जाते थे उसमें बहुत कमी आई, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक ग्लोबल टाइगर समिट सेंट पीटर्सबर्ग वहाँ पर आयोजित की गई 2010 में। जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय था उसमें ये लिया गया कि हमको अगले 12 सालों में बाघों की संख्या को डबल करने और साथ में एक और चीज डिसाइड की गई कि 29 जुलाई को हर साल ग्लोबल टाइगर डे के रूप में मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य ये था कि इस दिन हम जो इसके बारे में अवेयरनेस जो जनरल पब्लिक है उनको बताया जाए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो उसमें भारत का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जहां तक कि बाघों के संरक्षण की बात, यानी ऐसे टाइगर जो कि जंगलों में पाए जाते हैं उनकी अगर संख्या देखें तो उसका करीब 70% भाग जो है वो भारत में पाया जाता। तो भारत उन गिने चुने देशों में से एक है, उसने अपने जो टाइगर नंबर थे जो कि हमारे 2006 में 1411 हो गए थे उनको डबल कर लिया। आज हमारे पास करीब 3,500 से 4,000 तक बाघ विचरित करते हुए पाए जाते। इसमें से भी जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो अपने आप में सिरमौर है बाघ संरक्षण। इस साल हम इसके 90 साल पूरे हो रहे हैं राष्ट्रीय उद्यान के, और 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई जिसमें 9 टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया, आज 58 टाइगर रिजर्व्स ऐसे हैं पूरे देश में जो कि इस परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इसका शुरुआत थी वो भी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से ही हुई, तो इसीलिए कॉर्बेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाघों की संख्या की बात करें तो आज कॉर्बेट में सबसे ज्यादा बाघ हैं, 260 से लेकर 270 बाघ आज यहाँ पर है।
1: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में तकनीक का बाघों के संरक्षण में क्या योगदान है, इसके बारे में डॉक्टर साकेत कहते हैं।
2: आज अगर हम देखें तो तकनीक का उपयोग जो वो बाघ संरक्षण या वन्यजीव संरक्षण के लगभग हर पहलू में किया जा रहा है। प्रोटेक्शन बात करें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्षेत्र में जो हमारी गश्त सुनिश्चित करना, इसके लिए हमने भारत सरकार ने और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और जो NTCA है जो कि पूरे देश में बाघ संरक्षण को देखता है, उन्होंने एक M-Stripe ऐप बनाया है। अगर हमारे कर्मचारियों ने कहीं पे उनको कोई भी घटना दिखती है वो M-Stripe ऐप में एंटर कर सकते। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका रोल है, हम स्पेशल कैमरा ट्रैप लगाते हैं जिनमें की फोटोग्राफ ऑटोमेटिकली जब बाघ उनके सामने से गुजरता है उसकी फोटोग्राफ कैप्चर कर ली जाती है, और हमें पता है कि जो बाघों की जो धारियां होती हैं जिनको हम स्ट्राइप पैटर्न कहते हैं वो हमारे फिंगरप्रिंट्स की तरह होती है, यानी हर बाघ की जो धारी का जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग होगा, यूनिक होगा। जब हमारे पास पूरे क्षेत्र से एक स्वचालित जो कैमरा ट्रैप है उनसे फोटोग्राफ प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा टेक्नोलॉजी का प्रयोग आता है मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए, कि जैसे हमने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की ऐसी बाउंड्री जहां पर गांव से लगती है, आबादी वाले क्षेत्र से लगती है, वहां पर हमने बहुत पावरफुल कैमरा लगाए हुए या वहाँ पर ऐसे हमारे सेंसर्स लगे हैं जो कि जब जानवर बाहर जाता है तो उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। साथ में अगर मैं पूरे क्षेत्र पे निगाह रखने की बात करूँ तो हमको ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उसका भी भरपूर प्रयोग किया जा रहा है पूरे क्षेत्र में जानकारी प्राप्त कर।
1: दोस्तों जुलाई 2026 में उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी यूकॉस ने राज्य की विज्ञान तकनीक और नवाचार नीति जारी की है। क्या है इस नीति का आधार, आइए जानते हैं यूकॉस के निदेशक डॉक्टर दुर्गेश पंत।

0: से।
1: देखिए, जब हम साइंस की बात करते हैं तो कोई हमारे दिमाग में एक चित्र आता है कि ये कहीं संस्थान है, ये कोई लैब है जहां कुछ लोग काम में लगे हुए हैं जिसके बारे में हमको नहीं मालूम होता क्या है। हम भी सोचते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाए। ऐसी टेक्नोलॉजी तो हम जानने लगे हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी चाहे मोबाइल की हो चाहे कुछ भी जो भी हम करते हैं वो सब टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन पार्ट है। नवाचार इसलिए जरूरी है क्योंकि नवाचार है, फ्रुगल नवाचार है, इसीलिए दुनिया में सारी की सारी चीजें चलती हैं। अब ये समझिए कि एक पॉलिसी के तहत ये साइंस टेक्नोलॉजी और इसको लैब से लैंड को ले जाने की यात्रा और उसमें नवाचार जोड़ना, एंटरप्रेन्योरशिप जोड़ना, आमजन से जोड़ना, जनता से जोड़ना, काश्तकार से जोड़ना, महिला से जोड़ना, गांव से जोड़ना, ये STI है। क्योंकि ये उन्हीं से पूछ के कि वो क्या चाहते हैं, वो पानी की बात हो, कृषि की बात हो, हॉर्टिकल्चर की बात हो, मैन एनिमल कंफ्लिक्ट की बात हो, टूरिज्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, वो सब में शोध होना चाहिए या शोध आधारित समाधान अगर हो तो स्थायी समाधान होते हैं, एडहॉक नहीं होते हैं। इसलिए STI इम्पोर्टेंट है और विभिन्न विभागों के सहयोग से बनाइए कि आप इसको विकसित करिए और एक साइंस टेक्नोलॉजी का विभाग अगर बनाएगा तो इसकी महत्ता भी होगी, समझ में भी आएगा। इसलिए इसको करीब 3 वर्ष की इसमें समय लगा बनाने में और अब ये बाहर आई है, इसलिए महत्वपूर्ण है।
2: लैब टू लैंड और साइंस फॉर सोसाइटी पर आधारित विज्ञान नीति क्यों जरूरी है, इस बारे में डॉक्टर पंत कहते हैं।
1: आप ये देखिए ना, अगर जो काश्तकार है या जो हमारा एग्रीकल्चर से जुड़ा है, अगर वो मिट्टी से ही नहीं जुड़ा, उसने मिट्टी से ही नहीं खेला, देखा, बात की, तो उस एग्रीकल्चर साइंस का क्या लाभ होगा जो लैब में हो रही है। इसी तरह से जो प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाएंगे तो गलतियां भी होंगी, फेल्योर्स होंगे, उससे सीखेगा व्यक्ति, वो थ्योरेटिकली नहीं होगी। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है, विज्ञान लगातार कर करके सीखने का नाम होता है कि हम कई चीजें करते हैं उसके बाद चीज निकल के आती है, तो वो एविडेंस बनती है। ये हमारे वहाँ का एक बेसिक गैप है जो हमारी विज्ञान की शिक्षा रही है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम कह रहे हैं कि इसको स्किल बेस्ड, इसलिए हमने स्टेम की बात करी है इस पॉलिसी में, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में थोड़े साइंटिफिक एटीट्यूड टेम्पर की बात कर रहे हैं कि इससे लोग जुड़े, बात करें, समझें, देखें, विचारें, सुनें, ये महत्वपूर्ण है, तब इससे समझा जा सकता है। इसलिए जो आप कह रही है बिल्कुल स्किल बेस्ड होना चाहिए, वही देश को बदलेगा, मेरी बात आप समझ, तभी देश में बदलाव आएगा जब वो काम करेगा हाथ से। जिसने बल्ब नहीं बदला है, अगर वो इलेक्ट्रिसिटी की बात करे कैसे होगा, जिसने कभी इस पूरे के पूरे जो हमारे पास कैमरा है उसी पे काम नहीं करा, वो कैसे बदलेगा, सोलर की जिसने लाइट नहीं बदली वो सोलर की। तो इस समय आवश्यकता है देश में फिटर का, ट्रेनर का, इनका, ये तमाम सारी चीजों की आवश्यकता है जिसकी हमने इसमें बात करी है कि विज्ञान ऐसा हो जिसको हाथ से किया हो, जिसको देखा हुआ हो, जिसको समझ के कर रहे हैं, ये हमारी जनरेशन को बदलेगा, देश को बदलेगा, हम और आपको बदलेगा।
2: दोस्तों, कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में आप रीतिका बिंजोला से सुनते हैं जुलाई माह के प्रमुख वैज्ञानिक और वैज्ञानिक घटनाओं के बारे में।
3: जुलाई का ये महीना सिर्फ मॉनसून की फुहारे लेकर नहीं आता, बल्कि ये महीना गवाह है इतिहास के उन महान वैज्ञानिकों के जन्म का जिन्होंने अपनी सोच से पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। शुरुआत करते हैं एक ऐसे इंसान से जिसने अंधेरी दुनिया को रोशनी से भर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 10 जुलाई 1856 को जन्मे महान आविष्कारक निकोला टेस्ला। आज हमारे घरों, स्कूलों, अस्पतालों और कारखानों तक जो बिजली पहुँचती है वो मुख्य रूप से इसी प्रणाली के कारण संभव हो पाती है। अगर केवल पुरानी DC प्रणाली होती तो बिजली को इतनी दूर तक पहुंचना बहुत कठिन पड़ता और महंगा होता। टेस्ला ने इंडक्शन मोटर भी बनाई जो आज पंखों, वॉशिंग मशीन, पानी की मोटर और उद्योगों की कई मशीनों में इस्तेमाल होती है। वायरलेस संचार और रेडियो से जुड़े उनके विचार भी अपने समय से बहुत आगे थे। अब बात करते हैं ग्रिगोर मेंडल की, जिनका जन्म 20 जुलाई 1822 को हुआ था। उन्होंने मटर के पौधों पर लगभग 8 वर्षों तक प्रयोग किए। इन प्रयोगों से उन्होंने बताया कि माता पिता के गुण बच्चों तक कैसे पहुंचते हैं। आज इसे हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। मेंडल की खोज की बदौलत आज वैज्ञानिक नई और अधिक उपज देने वाली फसलें विकसित कर रहे हैं, कई अनुवांशिक बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं और आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी लगातार आगे बढ़ रही है। इसीलिए उन्हें अनुवांशिकी का जनक यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब बात करते हैं 25 जुलाई 1920 को लंदन में जन्मी रोजलिन फ्रैंकलिन के बारे में, जिन्होंने महज 15 साल की उम्र में वैज्ञानिक बनने का फैसला कर लिया था। उनके द्वारा खींची गई ऐतिहासिक DNA की तस्वीर फोटो 51 और उनके रिसर्च डेटा की मदद से ही आगे चलकर जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने DNA का मशहूर डबल हेलिकल यानी घुमावदार CD जैसा मॉडल तैयार किया था। DNA के अलावा रोजलिन ने कोयले और कार्बन की आंतरिक संरचना को समझने का काम भी किया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बेहतर गैस मास्क बने। और आज जो हम वाटर फिल्टर या हवा साफ करने वाले एयर प्योरीफायर इस्तेमाल करते हैं, उनमें एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है। इसकी शुरुआत रोजलिन

रिसर्च से ही शुरू हुई थी। तंबाकू व पोलियो जैसे वायरस के सटीक आकार को खोजने में भी रोजालिंड ने क्रांतिकारी योगदान दिया, जिससे आगे चलकर वैक्सीन और दवाइयां बनाने में मदद मिली।

श्रोताओं, इसी के साथ विज्ञान भारती के आज के अंक को मुझे यानी संकल्प मिश्रा को संपन्न करने की अब दीजिए अनुमति। अगले अंक में विज्ञान जगत की नई हलचल के साथ एक बार फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। शिक्षा मंत्री
1: दिस इज आकाशवाणी। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल अवर लिसनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। इन टूडेज ब्रॉडकास्ट वी ब्रिंग टू यू अ डिलाइटफुल सेमी क्लासिकल वोकल रिसाइटल बाय आकाशवाणी से ए ग्रेड आर्टिस्ट श्रीमती अदिति बैनर्जी।
2: श्रीमती अदिति बैनर्जी ने अपनी प्रारंभिक संगीत शिक्षा स्वर्गीय श्री नील माधव सिन्हा जी से प्राप्त की। तत्पश्चात ग्वालियर घराने के प्रख्यात गायक पंडित लक्ष्मण कृष्णराव पंडित जी से उन्होंने ख्याल और टप्पा गायकी का गहन अभ्यास किया। उन्होंने पद्मभूषण श्रीमती शोभा गुरटू जी के सान्निध्य में लगभग 14 वर्ष तक ठुमरी, दादरा, होरी और कजरी की पूरब अंग गायकी का विशुद्ध प्रशिक्षण प्राप्त किया और उनके साथ अनेक मंचों पर प्रस्तुतियां भी दी। दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में एमए एवं एमफिल में स्वर्ण पदक प्राप्त करने के साथ साथ श्रीमती अदिति बैनर्जी को पद्म विभूषण गिरिजा देवी जी द्वारा पूरब अंग गायकी उत्सव में विशेष रूप से सम्मानित किया गया है।
1: श्रीमती अदिति बैनर्जी रिसीव्ड हर इनिशियल ट्रेनिंग इन म्यूजिक फ्रॉम लेट श्री नील माधव सिन्हा। सबसे

0: अभी आपने सुनी मिश्र तिलक का अमोद ठुमरी। अब श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत कर रही है राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं छाई घटा घनगोर।
1: दैट वॉज ठुमरी इन मिश्र तिलक का अमोद। नाउ श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र शिवरंजनी सेट टू कहरवा ताल। छाई घटा घनगोर।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र शिवरंजनी में बद्ध कजरी। अब अगली प्रस्तुति के रूप में श्रीमती अदिति बैनर्जी प्रस्तुत करने जा रही है राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी, जो दादरा ताल में निबद्ध है। इसके बोल है तरसत जियरा हमार।
1: दैट वॉज कजरी कम्पोज्ड इन राग मिश्र शिवरंजनी। श्रीमती अदिति बैनर्जी नाउ प्रेजेंट्स कजरी इन राग मिश्र गारा सेट टू दादरा ताल। लिरिक्स आर तरसत जियरा हमार।

0: अभी आपने सुनी राग मिश्र गारा में निबद्ध कजरी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राग मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा, जो कहरवा ताल में निबद्ध है। इसके बोल हैं परदेसी सैया हारे।
1: दैट वॉज कजरी इन राग मिश्र गारा बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी कंक्लूड्स द रिसाइटल विथ दादरा सेट इन राग मिश्र भैरवी रेंडर्ड इन कहरवा ताल। परदेसी सैया हारे।

0: अभी आपने सुना मिश्र भैरवी में बद्ध दादरा।
1: दैट वॉज दादरा सेट इन मिश्र भैरवी।
0: संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपने सुनी श्रीमती अदिति बैनर्जी के स्वर में उपशास्त्रीय संगीत की यह विशेष प्रस्तुति। उन्हें तबला संगत कर रहे थे श्री भरत कामत और हारमोनियम पर संगत कर रहे थे श्री सौमित्र क्षीरसागर। इसी के साथ आकाशवाणी का आज का यह संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम यही संपन्न होता है। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आकाशवाणी पुणे द्वारा की गई तथा इसका प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से किया गया।
1: इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक यू आर लिसनिंग टू रिसाइटल ऑफ सेमी क्लासिकल वोकल म्यूजिक बाय श्रीमती अदिति बैनर्जी। शी वॉज अकम्पनीड ऑन तबला बाय श्री भरत कामत एंड ऑन हारमोनियम बाय श्री सौमित्र क्षीरसागर। दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड अर्लियर एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी पुणे एंड ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति से वे व्यथित हैं। उन्होंने कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को त्याग पत्र सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी और सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री प्रधान का मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से मंजूर कर लिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी शिक्षा मंत्री होंगे। उपभोक्ता कार्य, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त भार सौंपा गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि श्री प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सफल कार्यान्वयन और अन्य पहल के द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी ने सरकार द्वारा मांगों को स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की तीसरे दौर की वार्ता के बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने लोगों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
1: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें पीसफुल।

0: अपने घर वापस जाएं और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
1: श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने की मांग स्वीकार कर ली है। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार नियमों अनुसार अधिकतम मुआवजा सुनिश्चित करेगी।
2: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
1: परीक्षा सुधारों पर सीजीपी के 5 सूत्री प्रस्ताव पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेगी। सरकार सोमवार को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षाएं अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सदन के सोमवार के कामकाज सूची में शामिल है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक पेश करेंगे। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक पल बताया है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने से देश का सांस्कृतिक गौरव और बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। हरारे में दूसरे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया है। जीत के लिए 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम 18वें ओवर में 129 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।